भूमि पर भी आकर और वास करके यदि राधा प्रेम न प्रकट हो, राधा नाम में प्रीति न हो, तो बड़ा ही मलिन हृदय है। ये साधन भूमि नहीं तो सिद्ध प्रेम भूमि है। लालजू की प्रेम वृत्ति को पहचान पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। ऐसा प्रेमी कोई नहीं जैसे लालजू है। सच्ची तुम्हें बताते हैं, मतलब बहुत ही चतुर शिरोमणि होते हुए बहुत ही भोरे हैं, बहुत ही लाडले हैं। देखो ना, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अपने भक्तों की लगोटी धोते पाए गए, क्या क्या। आज भी हमारी सबकी, हम कहलाते हैं उनके दास, लेकिन सही पूछो तो वही हमारी सेवा करते हैं। हम तो केवल नाम मात्र के दास हैं, वही हमारा भरण पोषण अंतर और बाहर से वही करते हैं। सखी श्री जी से जागीर की ऐसा प्रेमी हमने नहीं देखा। वो मानसरोवर के कुंजों में बैठ करके बिना हाथ में लेकर के अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा ऐसा मंत्र रट, ये परा मंत्र है, परा विद्या, इसीलिए आगम निगम पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये परा विद्या है राधा नाम। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी ये दुर्लभ नाम है। ये कृष्ण की आंतरिक हृदय वृत्ति में विराजमान ये राधा नाम है। श्री जी से कहने लाडली जू, वहां के जितने भी जीव जंतु हैं, खगमृग पशु पंछी, राधा नाम सुनकर सब मोहित हो रहे हैं और एकटक चकोर की भांति उसके मुख चंद्र की तरफ देख रहे। वो अशुभ प्रवाह करती हुई राधा राधा राधा राधा ऐसा वीणा वादन करते हुए गान कर रही लाडली जू।

आई के, और हमने देखा किसके बाद वो मानसरोवर में स्नान किया और इतना हृदय तक छाती तक जल में खड़े होकर राधा राधा राधा ऐसा जप कर रहे हैं, अर्थात राधा नाम का कीर्तन और राधा नाम का जप कर रहे हैं। फिर लाडली जी हमने देखा कि वो आपकी स्वर्ण श्री विग्रह की प्रतिमा को साथ लिए हुए

जो हमारी स्वामी जी की कैसे प्राप्ति होती है। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर गुवार स्वयं लाल जी महाराज और गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम श्री लाल जी का राधा आराधन तत्पर प्रतिपल किशोरी जी की आराधना करते रहते हैं। राधा आराधन तत्पर तत्पर है श्री स्वामी जी की आज कैसे कोई जानेगा राधा तत्व। जिन श्री कृष्ण तत्व को वेद भी नेति नेति कहते हैं वो राधा तत्व का क्या वर्णन कर पाएंगे। लाल जी के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जी महाराज प्रेम अनिर्वचनीय है कोई नहीं वर्णन कर सकता। फिर सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी का कोई वर्णन कैसे करे। सखियां जो आचार्य रूप से होते तो वो भी कह रही जो को कोटि कल्प लग जीवे रसना कोटि को पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत नावे। लाडली जू वो आपकी स्वर्ण प्रतिमा को स्वर्ण श्री विग्रह को स्नान करा रही है और चरणोदक लेकर पान करके अपने माथे पे चरणोदक और हृदय से उस प्रतिमा को लगाकर ध्यानस्थ हो जाती है।

हे लाडली जी, वो आपकी प्रतिमा का श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर केसर, चंदन, कर्पूर, इस मिलित चंदन से पत्रावली की रचना।

आराधना उस स्वर्ण प्रतिमा में करते हैं, सुंदर पोशाक धारण कराते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, जल पवाते हैं, फिर आचमन करा करके मुख पोछ कर पान की बीड़ी और फिर आपके चरणारविंद में प्रणाम करके प्रसाद पाते हैं जो भोग लगाया।

पड़ा वही। स्वामी जी सुंदर सुंदर फूलों को चयन करके शैया की रचना कर निकुंज में फूल बंगला बना दी और आपकी प्रतिमा को विराजमान करके सुंदर सुंदर पद गान करते हैं, आपको रिझा रहे। यह है उपासना महारानी जी को प्रसन्न करने की। जानन गानन तानन प्राणन सोही के, आहा वो बड़ी जानकार है। ऐसे सुंदर सुंदर रागों का गान करके प्राण मोहित हो रहे हैं उनकी गान। समस्त आचार्यों के आचार्य हैं लालजी महाराज, जगत गुरु है, नृत्य गान वाद्याद सबके आचार्य हैं, यही इन्हीं से सब प्रकट हुआ है। जानन गानन तानन प्राणन सोही के, और लाडली जू एक छोटी सी प्रतिमा और आपका नाम कंठी में पहने हमने उनको देखा। तेरी प्रतिमा पहिरे कंठी में पोही के, तुलसी की कंठी और उसमें आपका राधा नाम और आपका रूप दोनों विराजमान किए हुए हैं। कंठ सुघर संगीत सबे स्वर गावहीं, राग रागिनियां तो मानो मूर्तिमान होकर उनके कंठ में विराजमान हो ऐसे गान कर। और एक आश्चर्य की बात, वो अपने आधरों पे मुरली रख के वैसे ही बजाती जैसे लालजू बजा रहे। मुरली धर जो मुरी के मुरली जो बजाओ वही, बंशी इतनी प्रेम मई है कि लालजू जब अधरों में धरते हैं तो उसका वजन नहीं सह पाते, ग्रीवा टेढ़ी हो जाती है, कमर भी टेढ़ी हो जाती, ललित त्रिभंगी तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं। रसमई वंशी का भार अधरों पे पड़ा तो महाराज ललित त्रिभंगी वो रूप और कहीं नहीं मिलेगा। ये वृंदावन का रूप है, कहीं नहीं मिलेगा, द्वारिका में नहीं मिलेगा, मथुरा में नहीं मिलेगा, विग्रह विराजमान उन्हीं के सब है। लेकिन ये रूप यहां बंशी, ये है बंशी का क्षेत्र वृंदावन, सुदर्शन का द्वारिका मथुरा में, वहां भी देखा गया हूं। यहां कभी सुदर्शन जी का प्रवेश ही नहीं, कभी ब्रज 84 कोष में कौमोद की गदा पांच जन्म शंख भगवान की दिव्य पार्षदों का भी प्रवेश नहीं, यहां तो कर कमल में श्री मुरली जी विराजमान है। लाडली जू जब वो मुरली में राधा

धुनी भावई, ऐसा बंशी का नाद कि यमुना का प्रवाह बंद हो गया। यमुना गमना ना करे, यमुना जी का प्रवाह बंद हो गया। मृगवाहन चंद्रमा भी चलना रुक गया, थकित हो गया। चंद गति मंद भई, निरख छवि काम गई।

वही लाडली जू, बिल्कुल जैसे नंद नंदन बंसी बजाते हुए वो सखी वैसे ही बंसी बजा रही। उनकी बंसी ध्वनि सुनकर वर मोर चकोर किशोर मरालन मंडली, कहीं मोर मंडली, कहीं है हंस मंडली, सुख सारिका को ये पक्षियों के झुंड के झुंड उनको आसपास घेरे हुए, मानो मुनि व्रत धरे कपोती कोकिला कीर, मानो मौन व्रत धारण करने वाले सब परम हंस विराजमान हो, ऐसे चकोर की भांति देखते हुए सब पक्षियों की मंडली विराजमान, और वो अपने अधरों में बंशी बजा रहे। हमें तो देख के ठीक ऐसा अनुमान होता है जैसे नंद नंदन ही हो। वैसे किशोर उन्हार श्री नंद किशोर की, क्योंकि अखियां बड़ी सुख देनी पैनी कोर की, बिल्कुल नंद नंदन जैसी आंखें हैं वैसे ही उनकी चलन चितवन, वैसे ही बंसी और वैसा ही प्रेम। हमारी प्रार्थना है कि आप चल के खुद देख लो कैसी वो आपकी आराधना करते, समझ पाए। सखी श्री जी को प्रेरित करती पधारो लाडली जी, वो आपके, वो हमारा परिचय, हमको लाडली जी का परिचय, हमारा लाडली जी को परिचय, ये काम ये गुरुदेव रूपी सहचरी आचार्य रूपी सहचरी करती। श्री जी से हमारी स्मृति, वो एक है आपका, उनको हमारी तरफ आकर हमारे चित्त को लाडली जी की तरफ, इसीलिए रे मन रसकन संग बिन रंचना उपजे, कहो कृपा उपजे के भांति बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। श्री जी से कहा कि हमारी प्रार्थना है आप चल के खुद देख लीजिए।

कीजिए, अगर आप चलेंगी ना तो उसे बहुत नेत्रों में सुख मिलेगा, क्योंकि आपको प्रतिमा के यहां जब आपको साक्षात देखेंगे तो कैसा लगेगा, और आपको भी सुख मिलेगा क्योंकि वो आपके विशेष प्रेम में मत वाली है। जब आप देखोगी तो आपको सुख मिलेगा, और जब आपको वो देखेगी तो उनको सुख मिलेगा। चलो प्रिया जी, बड़ी कोमल चित लाडली जी, बहुत लाडली जी, लाडली बस कोई है ही नहीं, कोई नहीं, प्रभु भी नहीं आप। इसीलिए तो पता नहीं कौन सा तत्व सी किशोरी जो है, किसी के परिचय का नहीं है। आज तक लाल जो परिचय नहीं जान पाए हमारे, आप ऋषि मुनियों की तो बात जाने, दुआ दिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी कह रहे कि प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, तैसो भ्रम होत देखो न कबहूरी। आज तक पहचान नहीं हो पाई, कैसे कोई जानेगा इस महा युगल सरकार प्रेमी को, की आज तक पहचान नहीं हो पाई प्रिया प्रीतम में। आज तक दुआ दिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। प्रतिपल ये नए प्रेमी है, अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, इनको नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम ब्रशुभान किशोर। प्रतिपल नवीन नव किशोर, श्री जी इतनी कोमल चित्त है, बस उसी कोमल चित्त की वृत्ति को गुरु कृपा से समझ के ऐसे कहे, भगवत प्राप्ति तुम अगर करोड़ों बार होनी होती तो भी सस्ती थी यार, हमारी महारानी जी के दरबार से सुनो तो भगवत प्राप्ति तुम्हारे घर की जेब की बात है। ये केवल महारानी जी के ही बल पर है, किसी साधन बल पर ऐसा नहीं। अगर साधन बल पर सुनना है तो भगवान विश्वनाथ जी के रंग में रंगे हुए वेदांत दर्शन से सुनो तो कांप जाओगे कि क्या किसे कहते हैं मोक्ष, किसे कहते हैं अखंडानंद, कांप जाओगे भैया हम नहीं चल पाएंगे। और यहां ऐसे लगे चलने की बात कि हम तो दौड़ के चले जाएंगे श्री जी के पास पक्का, क्योंकि जैसे हरिवंश परम कोमल चित, परम कोमल, जेव ही ये कहा श्री जी को क्या हुआ, रोमांच हो गया, कोई हमें इतना प्यार करता है, राधा राधा बोल, श्री जी के अश्रु चल रहे, श्री जी के कैसे तुम्हें बताए कितना हो, अरे प्रेम मूर्ति है लाड, कोई राधा राधा बोल रहा है, कोई हमारी प्रतिमा की सेवा कर रहा है। ये जो आप लोग भोग लगाते हैं, नाचते हैं, आरती करते हैं, निहाल हो गए महारानी जी के सामने, मैं किसी और की नहीं सुनना है, श्री जी देख रहे हैं, एक एक पल देख रहे हैं। बात सुने रोमांच किशोरी के भयो, इतनी प्रेम विवशता हुई कि पास में खड़ी सखियों ने संभाल लिया, गले का हार जैसे ऐसे सब सखियां प्यारी जी को बहुत प्यार करती हैं, सखियां प्यारी जी को बहुत, पलकन को जैसे अधिक पुतरिन सोमति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभाल, अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार। ये वृंदावन है, ये वृंदावन का प्रेम है, सखियों ने संभाला, किस बात में, कोई राधा राधा कह रहा है, कोई हमारी प्रतिमा का पूजन कर रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, श्री जी कैसे, श्री जी

जन प्यारी जी के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं, जैसे मानो मोतियों की वर्षा। कोई राधा नाम ले रहा, मेरे को पुकार रहा है। परम कोमल चित लाड़ी, परम मदन टेर के बाबा का जो चरित्र आता है, तो उन्होंने तो यही कहा ना कि लाड़ली लाल के संग में आप भी कठोर हो। वो तो ऐसे ही बोल रहे थे, इतने वर्ष हो गए वृंदावन वास करते, आंखों से अंधा हो, पूरा जीवन हो गया आपके चरणों में, आज तक आपको करुणा नहीं आई, मुझ दीन पर दया नहीं आई, आपके दरवाजे में पड़ा राधा राधा पुकार रहा हूं। उनको क्या पता कि सामने युगल सरकार प्रतिपल रहते हैं। लाडली जो नहीं रोक पाए, नजदीक जाके कहा, बाबा ये तू कैसे कह रहे हो कि लाडली जो कठोर हो गए। तो उनका संग दोष चढ़ता है ना, लाल जो कठोर हृदय के हैं, इसलिए संग दोष से कठोर हो, ऐसे तो पड़ी कोमल। नहीं नहीं मैं कठोर ना है। लाल जी का भेद ही खोल दिया, हम तो केवल दूर से रसा लाडली जी। वैसे लाडली जी ने बाबा के नेत्र छुए, दिव्य ने देखा दर्शन चरणों में। लाडली जी से कहा, पहला कार्य करो मेरे को अंधा करो, आंखें खुली तो आपको देखा और देखना नहीं, बस अब और तुरंत हमारी आंखें हटाओ, बस यही रूप में पधारे श्री जी का। बड़ी करुणामयी सरकार, देखो कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, मेरी सेवा कर रहा है। तो देखो प्रेम चले भरी नयन मैन रस में, स्वामिनी जी के आंखों से अश्रु टपक रहा है और कुंजों में जैसे मोती बिखेरते हुए जा रहे हो, ऐसे अश्रु गिरते जा रहे हैं। और चपल चली शीघ्रता, ऐसा हम सबके प्रति उनका प्यार है, ऐसा आपको समझना। बस एक ही कमी है कि हम अपनी ममता को अपने स्नेह को बांटे हुए नहीं। तो जिस दिन मुड़ोगे आप इधर ना, आप खुद देख लेना कि श्री जी का प्यार क्या है। उन्हीं के प्यार से कहीं कुछ प्यार दिखाई दे तो उन्हीं के प्यार का अंश है।

गजगामिनी गजगामिनी प्रिया जो मत वाली चाल से सखी के कांधे पर अपनी भुजा पधराए हुए हंस गति से चल रही, आगे आगे सखियां लताएं निवारती जा रही, जो वृंदावन के पशु पक्षी दर्शन के लिए भाग की मंडली से ही तारे उनसे रास्ता कराते। वाम करें इतमाम लिए छवि की छड़ी, फूलों की छड़ी ली हुई हटाती जा रही है। लताएं देख रही प्रिया जो आ रही तो ऐसे वो नृत्य करती कि सब फूल बिछ जाते हैं, मानो लताएं अपने पुष्पों से श्री लाडली जी के चरणों में पावड़े बिछा रही। महारानी जी गजगामिनी जी पधार रही हंस गति से।

सभी पहुंची उधर सेवा परायण नूपुरों की ध्वनि सुन करके देखा हो जिनकी प्रतिमा वही स्वामी जी पधार नेत्र लाडली जी के नेत्र दो चकोर दो चंद्रमा धूवल पंकज दो सखियों ने देखा

नेत्रों को देखकर युगल सरकार की उस पर सखियां गुलाल उड़ा रही हैं। सी लाडली जो देख के उनके इस अनुराग को ऐसे प्रेम में विथकित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। कीरत की बिटिया विथकी छवि देख के सखी अखियन की पुतरी पुतरी भई पेख गए। आप ध्यान से सुनिए, आप जो भोग लगाते हैं उसमें जो आप प्यार प्रकट करते हैं ना, प्यारी जू बोलिए, प्यारी सीधे प्यारी जू पा रहे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये बस अंदर से आप श्री जी की सेवा में हैं, बस ध्यान रखो। ये जो महल रचना करते हो कुंज की, जो भोग रचना करके भोग पवाते हो, जो आरती करते हो, जो दुलार करते हो, ये लाडले देख रहे हैं। बस इनका देखना ही हमारे लिए काफी है।

कि श्री जी ने कहा कि सखी हमारे कोई बहुत पुण्य होंगे जिससे हम तुम्हारी जैसी उपासिका का दर्शन कुंजों में पाया। ऐसा प्रेम राधा नाम से, ऐसा प्रेम राधा रूप से। तुम्हारा नाम क्या है?

क्या नाम है आपका, किस गांव से आई हो और मेरी इस मानसरोवर की कुंज में क्या कामना रखती हो जो ऐसी उपासना कर रहे हो? श्री लाल जी महाराज जो सहचरी बप्पू है, उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा जू है। श्यामा जू तो मेरा नाम है, ये श्यामा जू तो। और नंद गांव से आए हो, आप जानते हो नंद गांव? श्री जी कहा जानते, पर पूरे ब्रज में श्यामा जू तो मेरा ही नाम है। तो ये ऐसे ही हैं, इनमें पता ही नहीं, खुद को पता नहीं कि इनमें कौन श्यामा जू कौन श्याम जू है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, जैसे दो शीश हृदय ऐसी दो देह केवल है, वही एक परम रस है। तो कभी प्रिया जू पुकारने लगती हैं, हा प्यारी जू आप कैसे रुस गई मान कर गए, तो लालजू को लगता है ये तो हमारी बात बोल रहे हैं। अब प्रिया जू भाव में प्रीतम के हैं, बुला रहे हा प्रिया। कभी कभी लालजू कहते हे प्रीतम हे प्यार। सखिया ये नहीं समझ पाती कि लाड़िलो के हृदय में चल क्या रहा है। बड़ा एकांतिक प्रेम है। उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा, मैं नंदगांव की हूं और आपकी अनन्य भक्त हूं। ये शब्द बहुत प्यारा शब्द है, आपकी अनन्य, बस इससे सब कुछ हो जाएगा। मान लीजिए बस एक ठसक ले आइए हमारी भोरी सखी के लिए, लाडली जी के लिए, मैं आपकी हूं बस। देखो ना महाप्रभु कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, मुझे कोई परवाह नहीं, नर्क भेज दो या कहीं भी जन्म दे दो, बस महारानी जो आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में स्फुरित रहो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। क्या फर्क पड़ता है, जहां प्यारी जो वहां निकुंज, ये कहीं भी भेज दो, नर्क स्वर्ग अपवर गया आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख राशि, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपकी अनन्य भक्त हूं। अब सब कुछ छुप सकते हैं, चितवन प्रेमी की बचाई नहीं जा सकती, वो अपनी पहचान बता ही देती है चितवन। जैसे श्री सेवक जी महाराज जब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए आए, तो बनचंद महाप्रभु ने पहले आदेश कर दिया था जिस दिन सेवक जी वृंदावन में आएंगे सब भंडारा लुटा देंगे राधा वल्लभ लाल का, ऐसे महाप्रेमी के आगमन पर। सेवक जी को लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, श्री जी की सेवा की सौंध नहीं लुटानी चाहिए, तो छुप करके ऐसे वेश ढक करके आए, और जब नेत्र मिलाए तो राधा वल्लभ लाल जी के नेत्र चंचल हो गए। महाप्रभु गोस्वामी श्री बनचंद जी सेवा में थे, उन्होंने कहा श्री जी के नेत्र चंचल हो गए, कोई ऐसा प्रेमी आ गया। तो नीचे जब देखा तुम ऐसे वस्त्रों से ढके हुए, बोले सेवक जी ही होंगे। जब निज जनों को भेजा कि आप दामोदर दास सेवक जी है, महाप्रभु आनंद, नेत्र से पता चल जाता है कोई है, निज जन है कोई। प्रेम उशासन लेत मिले दो प्रेम शो, मानहु श्याम चुनी सुबनी खचिहेम सो।

आनंद को। तुम राधा नाम जपक, राधा रूप उपासक, ऐसा प्रेम आओ हमारे हृदय से लोगो, लाडली जी ने अपने हृदय से लगा। अब हृदय से लगने पर थोड़ी छुपाया जा सकता है, क्योंकि हृदय की गति प्रेमियों की अलग होती है। ये धड़कन तो बेकार धड़क रही है, जैसे हृदय मशलता रहता है प्रतिपल, कोई मशले, ऐसे प्रेम की पीड़ा उत्पन्न होती रहती प्रेमियों, और जब उनके हृदय मिलते हैं तो वही हृदय जानता, दूसरा नहीं जानता। लालजू का हृदय से लगाना और नेत्र में नेत्र मिलना, सखियों से श्री जी ने कहा और कोई नहीं, ये तो प्रीतम है, ये प्रीतम ही हम समझ गए, इतना तो अनन्य धर्म का पालन प्रीतम ही कर सकते हैं।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे। दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के विचार।
1: आप में से कितने हैं जो अभी किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सब लोग आप किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इनका ये कहना है कि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर आप एक इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्यों एंटर कर रहे हो जहां पर कि पहले तो एंट्रेंस को क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में अच्छी जगह पर जॉब मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में उस जॉब को रिटेन करना भी आने वाले टाइम में और मुश्किल होने वाला है। व्हाई आर यू डूइंग दैट? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। कोई है आप में से जो बोलना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा?
2: रिस्क नहीं होता बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो रिस्क जहां पे आ जाता है ना, तो वो चीज उसमें भी काफी वो हर्ट जाता है। और अगर जिस चीज में रिस्क ना हो उसमें सब सपोर्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं सब सपोर्ट ही कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, इस यहाँ पे जा रहे हैं तो हम।
1: इन्होंने कहा कि हम एंट्रेंस के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उस पाथ पर कोई रिस्क नहीं होता है। क्या ये सच है झूठ है? कितने एग्री करते हैं इनकी बात से? तो जब रिस्क है और बहुत रिस्क है, क्योंकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ का होता है, ये बात हमको पता है, तो फिर क्यों इस पाथ को आप चुनते हो जब यहाँ पे रिस्क भी है और कोई श्योरिटी भी नहीं है? क्यों इस पाथ को चुनते हो, क्यों कुछ और एक्सप्लोर नहीं करते हो?
3: सर पैसे की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, तो जितना बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई में लग जाता है।
1: कितना लग जाता होगा, आप में से कोई बताएगा? जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है?
4: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है सर।
1: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है?
4: जी सर, फिर जी मैं सर 6-7 ले लेते।
1: नहीं नहीं, 6-7 लाख थोड़ी होती है।
4: यस सर,
1: मुझे आइडिया नहीं है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मतलब एवरेज फीस क्या होती है कोचिंग की एक साल की?
4: 2-3 लाख सर।
1: 2-3 लाख रुपए साल की, तो मतलब 2 साल की हो गई 5-6 लाख रुपए। तो 6 लाख लगाने के बाद में होने की क्या पॉसिबिलिटी है और नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है?
4: 99% है कि तो नहीं होगा सर।
1: 99% है कि नहीं होगा?
4: यस सर।
1: तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर बॉस, ये तो बहुत ज्यादा है। सब एग्री कर रहे हैं इनसे कि 99% है? या अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी देखा जाए तो 90% है कि नहीं होगा, 10% है कि हो जाएगा, अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें जो बच्चे सीरियस हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा जो कोचिंग ले रहा है वो सीरियस भी हो पढ़ाई को लेकर के। तो मैं कह रहा हूं वो बच्चे जो ब्रिलियंट हैं, एफर्ट भी पूरा कर रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं, तब भी जो पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन होने की अच्छी जगह पर, वो 10% है। 90% है कि नहीं होगा? और जब नहीं होगा तो क्या होगा? व्हाट इज योर बैकअप प्लान?
4: प्राइवेट कॉलेज सर।
1: तो वहां भी पैसा लगेगा या वहां पे फ्री में पढ़ाई है?
3: पैसा लगेगा।
1: कितना पैसा लगता है 4 साल का? नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? 20 लाख रुपए। अच्छा मेडिकल का तो 80-90 लाख है, बट अगर इंजीनियरिंग की भी बात करी जाए तो 20 लाख रुपए तो मान के ही चलो। तो नियर अबाउट आपने 20-25 लाख रुपए तो लगा दिए अपने घर वालों का। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो, मेजोरिटी ऑफ यू। आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास से हैं? हाथ ऊपर करिए। मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप लोगों ने?
3: यस सर, यस सर देखा।
1: अगर वो देखा होता तो अभी हाथ ऊपर नहीं करते। मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो आप में से कितने हैं जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल की 12 लाख से ज्यादा है? अब हाथ ऊपर करो। इसको मैं दूसरी तरीके से पूछता हूँ, आप में से कितने हैं जिनके घर वालों के पास में 20-30 लाख रुपए स्पेयर है, मतलब अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? हाथ ऊपर करो। इसका मतलब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे ये निकल करके आया है कि 50-60% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं दे आर अनएम्प्लॉयबल, मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके, यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है। या तो उनको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो 25 लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे?
3: 9-10 years।
1: 25 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 25 लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा।
3: yes.
1: और जोड़ करके विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा।
3: इंटरेस्ट भी देना है क्या?
1: इंटरेस्ट भी देना। नियर अबाउट हम मान करके चलते हैं, इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 20 साल लगेंगे 25 लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापस करने के लिए। मतलब 40 की एज तक जा करके तो आप वो पैसा वापस करोगे, तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है। और ये सिनेरियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में। ये भी हो सकता है कि जॉब ना लगे तो क्या करोगे? अ सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन।
5: 25-30 लाख देने के लिए भी पेरेंट्स ही मोटिवेट करता है। उनकी ही जिद होती है कि हमें ये करना चाहिए। वही कहते हैं यूपीएससी निकालो, वही कहते हैं नीट निकालो, वही आईआईटी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उनकी ही जिद होती है और सोसाइटी की और रिलेटिव्स की जिद होती है कि हम चाहेंगे तो वो हम ही है करोड़ों में से एक। तो इट्स लाइक हमारी विश तब भी नहीं होती है।
1: ये और ज्यादा गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को ये होता कि आपके अंदर से होता कि मुझे ये क्रैक करना है, फिर आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते तैयारी करने के लिए, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने फोर्स करके या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपको भेज दिया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके क्रैक करने की? अब तो आपका मन ही नहीं है वो काम करने का, करना पड़ रहा है। एक है कि आप खुद अपने अंदर से मोटिवेटेड हो, बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, तब फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी हो उसको क्रैक करने की। लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वहां जाकर के क्या करोगे? बहाने ढूंढोगे क्लास बंक करने के, टाइम पास करने के तरीके ढूंढोगे, रात को बैठ करके वीडियो गेम्स खेलोगे या क्या करोगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में, आपकी हंसी से पता लग रहा है। घर वालों को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या कर जाएगा, अगला सुंदर पिचाई यही है, हमारे घर में ही पैदा हुआ है। लेकिन आपको तो पता है ना अंदर से आप क्या हो, तो इसका मतलब क्या है? वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। बड़ा नुकसान किसका है? आपके पेरेंट्स का या आपका? क्यों, आपका क्यों है? जवाब दो।
6: सर हमारे लिए टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है पैसों से भी, क्योंकि अगर हमारा पैसे हम पेरेंट्स ने लगा दिए और हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया, बट हमारा जो टाइम चला गया वो टाइम अब नहीं आने वाला।
1: तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दैट इज वन। टू, फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जा करके आपको कोई भी जॉब होगी, कैसी भी जॉब होगी,
6: लेनी पड़ जाएगी,
1: करनी पड़ेगी, इतना प्रेशर आ जाएगा पीछे से। तो नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ पूरी लाइफ के लिए?
6: हमारा ही होगा।
1: आपके पेरेंट्स का तो पैसों का नुकसान हुआ, आपकी तो लाइफ ही खराब हो गई। तो अब बताओ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, लगाओ दिमाग। और अभी तो मैंने एआई के बारे में तो बात ही नहीं करी है कि एआई का एजुकेशन के ऊपर क्या असर आने वाला है और जॉब मार्केट पे क्या असर आने वाला है, उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी।
7: सर इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, मुझे जो लगता है हर जगह आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं खुद बताऊं तो मैं 10 ईयर्स जब था 10 साल का, तब मैं YouTube ट्राई किया, फिर मैं गेमिंग में एंटर किया, फिर मैंने ई-स्पोर्ट्स भी खेला, फिर मैं एक सर प्रोफेशनल लेवल अंडर 16 क्रिकेट करियर भी चूज किया था मैंने, वहां पर सर ड्यू टू फिजिकल इश्यूज वहां पर मैं नहीं कर पाया। बाकी सर अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में, यहाँ पर सर 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया, जिससे कि मेनली मेरा 50-1 लाख रुपीज महीने का जनरेट होता है।
1: अभी आपकी एज कितनी है?
7: 15.5 ऑलमोस्ट लाइक 16 राउंड फिगर।
1: 16 साल?
7: यस सर।
1: तो आपके घर वाले खुश है?
7: बिल्कुल खुश होंगे सर, 16 साल का लड़का घर में सर 1 लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे।
1: लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है, प्लीज डोंट माइंड इट, कि अभी ये जो क्विक आपको सक्सेस मिली है ना, इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये मत समझने लग जाना कि मैं 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। आज आप कमा रहे हो, कल कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ऑलवेज कीप योर फीट ऑन ग्राउंड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर All kinds of situations. जो आप कर रहे हो वो सही है।
7: सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैंने टारगेट लिया कि मुझे मंथली का 1 लाख करना है, तो वो मैंने एक बार दो बार टारगेट को अचीव कर लिया, बट सर जब मैं नेक्स्ट अब टारगेट को अपना बड़ा करता हूँ, जब उसको इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, तो सर वो कम्फर्ट जोन वाली फीलिंग आने लगती है। मन में ये होता है कि अरे पहले भी तो किया है, अब भी कर लेंगे, तो उस चीज को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ सर?
1: आप कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ पे बाकी लोग उल्टी कर देंगे, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा, क्या बोल रहे हो आप? ये बेचारे अभी अपना पता नहीं कितने साल कितनी तैयारी करने वाले हैं, उसके बाद जाकर के कोई पैकेज लगने वाला है, और आप कह रहे हो कि सर 1 लाख रुपए में मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। सर सर कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं ना 2 लाख रुपए अचीव कर जाऊं। बस भाई बस, इतना लालच नहीं करते, बहुत है अभी इस एज के हिसाब से। आगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी अपने आप ही रास्ते खुलेंगे, प्लीज हैव अ सीट। बट ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ये जो टेम्पररी सक्सेस है इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, गड़बड़ हो जाएगी।
7: Sure,
1: तो एक सोल्यूशन हमको दिखा यहाँ पर, अब ये सोल्यूशन कितना जेन्युइन है कितना नहीं है आई कांट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे, बट मैं ये कह सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस एंड विद माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड कि ये पॉसिबल तो है। इनके साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा है आई एम नॉट श्योर, बट ये पॉसिबल तो है।
6: मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क के बारे में जो भी बताया, ठीक है कई बार ऐसा होता है कि हम भी ट्राई करना चाहते हैं कि चलो हम भी चलते, इतना अच्छा पैसा है, जाते हैं वो कुछ पैसे लेते हैं हमसे वही 1-2 हजार कि हाँ हम आपको सिखाएंगे ये करेंगे वो, फिर हमें वो 3-4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें ना कई लोगों को नहीं पता चलता, बट वो ना पूरे माइंड को हमारे इधर से उधर कर देते हैं। हमें बहुत सारा पैसा दिखाते हैं कि इतना पैसा है, क्या करोगे बताओ, बंगला खरीदोगे, क्या खरीदोगे, जबकि खुद उनके पास कुछ नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा एक मोटरसाइकिल होती है बस, उसमें
1: वो भी आप ही के पैसों से खरीदी होती है।
6: हाँ, और कहते हैं कि देखो मैंने ये टारगेट बनाया, मैंने ये अचीव करा, आप क्यों नहीं कर सकते हो, बस एक साल दे के देखो, ये करके देखो, ऐसे करते हैं। और एक बार जब इंसान इस चीज में जाता है तो फिर उसको तो फ्रॉड ही लगता है सब चीज की। हाँ, फ्रॉड है।
1: आपने कभी ऐसा ट्राई किया?
6: हाँ, मैंने किया है।
1: आपने कितने पैसे दिए थे?
6: मैंने दिए थे 500 रुपए। उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग होगी, सब वापस हो जाएगा अगर ये सब हुआ तो। मैंने कहा चलो सही है, कौन सा ज्यादा ही लग रहे हैं। फिर उन्होंने फोर्थ डे बताया कि आपको 50,000 की शॉपिंग करनी है, फिर आप एक लेवल पे आओगे, उसके बाद आपको लोगों को पकड़ने। अब लोग कहाँ से पकड़े वो भी सिखा रहे हैं कि अपने दोस्तों को कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करो। मैंने कहा लोगों को तो मैसेज करेंगे, अब कौन कैसा है हमें क्या पता। फिर कहेंगे आप ऑटो से जाते हो, वहाँ पे हाय हेलो करो, उनसे रिलेशन बनाओ और उनको उसमें घुसाओ।
1: ये जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, उसमें से 100 में से 99 फ्रॉड है, इस बात को लिख करके रख लो। तो चैलेंज ये नहीं है कि पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता है, चैलेंज ये है कि जेन्युइन कौन है और फ्रॉड कौन है। पहले तो एक बात को मेरी अच्छे से समझ लो कि जो आने वाले 10 साल हैं उसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ है। और जहां तक आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं या आप खुद हो, जहां तक नहीं देख पा रहे हो, एआई की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। डेली कुछ नया हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब्स जो आज की डेट में है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी, इस बात को समझ लो अगर समझ सकते हो तो। अब मैं बताता हूं मैं फ्यूचर को किस तरीके से देख रहा हूं, या फिर अगर मैं आप लोगों की जगह हूं तो मैं क्या करूंगा। नंबर वन, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना आप लोगों का, ये सबसे प्रेशियस है पूरी लाइफ में। अभी आपका दिमाग खुला हुआ है, आप कुछ भी नया बड़ी जल्दी सीख सकते हो। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके लिए कुछ भी नया सीखना, या नया सीखना तो बहुत दूर की बात है, नए आइडियाज को एंटरटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो जाकर के अपने पेरेंट्स को देख लो, उनसे जाकर के किसी भी नई चीज के बारे में बात करो, वो एकदम से घबरा जाएंगे इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार होता है, बिना समझे। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कितने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, डोंट वेस्ट इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि पास में जैसा होता आया है कि मैं ये डिग्री लूंगा या लूंगी, उसके बाद में मेरी यहां पर जॉब लग जाएगी, उसके बाद में लाइफ सेट है, तो इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। आने वाले टाइम में जो मीडियोक्रिटी है उसके लिए जगह नहीं बचने वाली है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। कौन होंगे वो लोग? जो मीडियोकर है इन द सेंस कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ साथ में, कि 5-10 साल पहले बस कॉलेज से एक डिग्री ले ली है, अब जॉब लग गई है, अब वो कहते हैं लाइफ सेट है। ये जिनकी लाइफ सेट है ना, उनकी लाइफ ऐसी हिलने वाली है कि उन्हें खुद भी नहीं समझ आएगा कि हुआ क्या है।

10,000 लोग कर सकते हैं तो मैं बाकी 90,000 का क्या करूंगा, निकाल दूंगा, तो 90,000 लोगों का क्या होगा? या तो अपनी स्किल्स को उनको अपग्रेड करना पड़ेगा या अपनी लाइन को चेंज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं देखो मेरी इस बात को ना गांठ बांध लो, आने वाले टाइम में मीडियोक्रिटी नहीं चलने वाली है, मशीन्स का जमाना आने वाला है और जिसको मशीन्स को यूज करना आता होगा उसका जो आउटपुट है वो और लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा और वो इंसान कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो, अगर बिजनेस करते हैं तब भी अगर आपको मशीन्स को यूज करना आता है तो आपके पास में एक एज होगा इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते, ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं क्या करूंगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, अपने टाइम को कहां यूटिलाइज करूंगा, जो भी कुछ नया हो रहा है एआई की दुनिया में वो सब कुछ सीखने के लिए वहां पर अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखूंगा। डेली कुछ नया आ रहा है, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं एग्जिस्टिंग जो एआई एप्लीकेशंस हैं उनमें, और डेली नए नए ऐप्स आ रही हैं, तो यू नीड टू बी अपडेटेड। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी नया डिसरप्शन आ रहा है मार्केट के अंदर, आप फटाफट से उसको सीख जाओ और फटाफट से अपने आप को अडैप्ट कर लो उसके अकॉर्डिंग। जरूरत पड़े तो जब इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज होगी तो आप अपने आप को बदल दो। अगर ये कर सकते हो, यानी कि अगर आप इन टूल्स को यूज करना जानते हो तो आप सर्वाइव करोगे फ्यूचर में, अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत आने वाली है। तो अपनी जो स्पीड है सीखने की कि इस दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सीखो, टाइम वेस्ट मत करो फालतू का कंटेंट देखने में, इधर उधर टाइम पास करने में। आप में से कोई ऐसा है जो ये बता सके टॉप 10 एआई टूल्स के नाम, कोई है जो बता सकता है? यू हैव नो आइडिया, नो क्लू। तो ये आइदर और के चक्कर से बाहर निकल आओ कि सर हम पढ़ाई करें या बिजनेस करें, दोनों करना पड़ेगा। पढ़ाई इसलिए करनी पड़ेगी ताकि एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो तो आपके पास में एज आ जाएगा, कल को जॉब मार्केट में जाओगे तो एटलीस्ट कुछ तो हो दिखाने के लिए अगर आपको जॉब ही करनी है तो। लेकिन साथ साथ में बिजनेस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है, कुछ क्रिएट करना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, यानी पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको बोल दिया जाए सर्वाइव करो, क्या कर सकते हो सर्वाइव? अगर कर सकते हो तो कह सकते हैं कि हाँ अब आप अंदर से एक एंटरप्रेन्योर हो, अब चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप एक क्रिएटर हो। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब क्रिएटर्स, आई एम सेइंग समवन हु कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक लाइव्स बेटर ऑफ अदर पीपल इन सम वे, जिसके लिए वो लोग पैसा देने को तैयार हो जाए, उसको एक क्रिएटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपकी एज में हूं, यानी मेरी एज है मान लो 18 साल, अब मेरे आगे एक चैलेंज है, मैं क्या करूं, जॉब की भी तैयारी करनी है तो क्या उसको छोड़ दूं? अब वो मेरी अपनी कॉल है कि मैं छोड़ूंगा या करूंगा, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा छोड़ने के लिए, नंबर वन। बट एक बात पक्की है कि मैं साथ साथ में कुछ ना कुछ तो और करूंगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया। जो एजुकेशन की पूरी जो डेफिनेशन है वो चेंज होने वाली आने वाले टाइम में। एजुकेशन मतलब क्या, कि कुछ आपने सीख लिया है, अपने माइंड के अंदर भर दिया है और कुछ कर रहे हो, आने वाले टाइम में वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन वो लोग होंगे जो बचेंगे आने वाले टाइम में और कौन वो लोग हैं जो नहीं बचेंगे। इफ यू कैन कनेक्ट दी डॉट्स, यानी अलग अलग चीजों को देख करके आप किसी तरीके से कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जहां से आप पैसा कमा सकते हो और सर्वाइव कर सकते हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली अपने बेस पर, तो फ्यूचर आपके लिए है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं तो सिर्फ इस डिग्री के बेस पर सर्वाइव कर सकता हूं, तो आने वाले टाइम में उस डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी, स्किल की वैल्यू होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यानी कि कुछ अलग अलग हो, उसको जोड़ दिया जाए और कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि जहां से पैसा कमाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आज हर दूसरा इंसान यूट्यूबर बनने के बारे में सोच रहा है, तो यूट्यूब में जो सबसे हाई पेइंग जो सेक्टर है वो है BFSI सेक्टर, यानी बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे टूल्स ढूंढूंगा जहां पर मैं ऑटोमेटिकली कुछ सेकेंड्स के अंदर अंदर कुछ वीडियोज बना सकूं, और पहले मैं YouTube पे जाकर के देखूंगा कि कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जिसके ऊपर बहुत व्यूज आ रहे हैं या जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है Google पे और YouTube पे, क्योंकि अगर Google पे ज्यादा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि YouTube पे भी ज्यादा होगी। अब मेरी इस थॉट प्रोसेस को समझना, आइडिया को मत पकड़ना, गड़बड़ हो जाएगी। आइडिया को पकड़ोगे फिर वही बंद दिमाग की तरह कॉपी करने लग जाओगे, लेकिन अगर थॉट प्रोसेस को समझोगे तो कुछ भी कर जाओगे। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं,
एक वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ

tori.ai जहां पे आप टेक्स्ट इनपुट करोगे और वो उसको वीडियोस में कन्वर्ट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर। ये काम करने में यूजुअली 2 से 4 दिन लगते हैं। तो क्या यहां से आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कह सकते हैं कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप एक क्रिएटर हो, आप क्रिएटिव हो। तो एक दिन में कितनी वीडियोस बन सकती हैं? बहुत सारी। लेकिन वीडियोस बनाने से पहले मुझे यह समझना होगा कौन सी वीडियोस ऐसी हैं जिसके वायरल होने के चांसेस हैं। तो पहले मैं ये स्टडी करूंगा।

इतनी अच्छी नहीं है। मान लो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी पे जा करके लिख दूंगा व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, तो चैट जीपीटी पूरा का पूरा मेरे को टेक्स्ट दे देगा। उस टेक्स्ट को मैं रन करूंगा पायरेसी के लिए कि कहीं किसी तरीके से किसी के राइट्स वॉयलेट तो नहीं हो रहे, ऐसी भी कुछ वेबसाइट्स हैं। तो जब मैंने चेक कर लिया और मुझे ये श्योरिटी आ गई कि किसी के राइट्स वॉयलेट नहीं हो रहे हैं, उस टेक्स्ट को ले जा करके मैं एंटर करूंगा पिक्टोरी में, वो एक पूरी की पूरी वीडियो जनरेट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर, जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूं। लेकिन यूट्यूब अब क्या कर रहा है, वो भी मैंने पढ़ा कि वो जो एआई वॉइसेस हैं, जैसे ही यूट्यूब पकड़ लेता है कि इसमें एआई की वॉइस है, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको या तो ब्लॉक कर देता है या इतना तेजी से प्रमोट नहीं करता है। तो मुझे इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी में जाकर के जो यूट्यूब का कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है वो निकाल करके उसके बैकग्राउंड में उसको लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, अलग अलग जगह से अलग अलग टूल्स को यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो बहुत ही कमाल का है और जिसकी मार्केट में नीड है। अब अगर मैं खुद बैठ करके वीडियोस बनाऊं तो पहले तो मुझे वो स्किल्स एक्वायर करने में कई महीने लगेंगे, कई साल लगेंगे। उसके बाद एक एक वीडियो को बना के डालने में 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन लग जाएंगे। अब यहां पर एक दिन में मैं 10 वीडियोस जनरेट कर सकता हूं, यानी यूट्यूब पर मैं 10 अलग अलग चैनल्स ओपन कर सकता हूं। और अगर मैं कंसिस्टेंटली इस काम को पार्ट टाइम बेसिस पे करता हूं अगले एक साल तक, ये नहीं कि 2-4-5 दिन किया, 10 दिन किया, रिजल्ट नहीं आया तो उसको छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई में ऐसे करते हो क्या कि कहीं गए किसी कॉलेज में, 2-4 दिन को समझ नहीं आया, बेकार है, छोड़ दो, ऐसे नहीं करते ना। 4 साल पता है ना कि वहां पे लगाना है, तो इस काम में भी टाइम लगाना पड़ेगा। तो एक साल तक अगर मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने 10 चैनल्स पे, तो एक साल में मैंने कितनी वीडियो अपलोड कर दी, 365 × 10 यानी कि 3650 वीडियोस। उसको करने में टाइम कितना लगा, मैक्सिमम 1 से 2 घंटा डेली। इतना तो आप टाइम कहां खराब कर देते हो, आपको खुद भी पता नहीं होगा। बट इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, या तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिल गई तो बहुत बढ़िया है, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है कि अब मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं, 1,00,000 रुपए कमा रहा हूं। क्योंकि ये भी हो सकता है कल को यूट्यूब एक नई पॉलिसी ले आए और कहे कि ये जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं इसको हम डीमोनेटाइज कर देंगे, तो कहां गया आपका वो 1,00,000 रुपए महीना, गायब हो गया ना। तो एक्साइटेड नहीं होना, उस पैसे को जोड़ना है और उसको यूज करना है और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने के लिए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि यहां से पैसा आएगा, तो उस पैसे को उड़ाना नहीं है, एक्साइटेड नहीं होना है, घर वालों को ये नहीं बोलना है कि अब मैं 1,00,000 रुपए महीने का कमा रहा हूं, मेरे को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पैर जमीन पर रखने हैं, उस पैसे को जोड़ना है और दिमाग लगाना है कि उसमें रिस्क क्या है, कल को अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे, वैसा होता है तो क्या करोगे, वो होता है तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ लेता है एआई जनरेटेड साउंड्स को, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो वहां से बना ली, कॉन्टेंट चैट जीपीटी से मिल गया, पायरेसी चेक कहीं और से हो गया, कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए कैसी नहीं वो आपने और जो सॉफ्टवेयर है वहां से पता कर लिया, सर्च वॉल्यूम किसका है किसका नहीं है, प्लस साउंड के लिए आपने क्या किया, 10 मिनट का एक ऑडियो सैंपल अपलोड करना होगा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, वो सीख जाएगा कि आपकी साउंड क्या है। तो अगर आपने ये कर लिया तो अब वो आपकी साउंड है, म्यूजिक यूट्यूब का है, कंटेंट रॉयल्टी फ्री है, अब इन वीडियोस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर इस तरह से सोच पा रहे हो तो फ्यूचर में आपके लिए जगह है। इसको एक्चुअल में स्किल्स बोलते हैं कि आपने कुछ ऐसी स्किल्स एक्वायर कर ली जो वैल्यूएबल है, हो सकता है आज इमीडिएटली नहीं है लेकिन फ्यूचर में आप कहीं जाओ और वो आपसे पूछे कि अच्छा आप में से कौन है जिसको ये काम आता है, आप कहोगे मुझे आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। मतलब आने वाले टाइम में वो लोग सरवाइव करेंगे दुनिया में जो कुछ भी कर सकते हैं, जो सिर्फ एक काम कर सकता है, वो पास्ट में रेलेवेंट थे फ्यूचर में नहीं होंगे, क्योंकि वो एक काम आज नहीं तो कल मशीन कर लेगी, फिर आप क्या करोगे। लेकिन वो इंसान जो कुछ भी कर सकता है उसकी वैल्यू क्या होगी। आई होप आज के सेशन से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ नया समझ में आया है, कुछ नया सीखा है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, थैंक यू सो मच।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: इमोशनल डिपेंडेंस वर्सेस इमोशनल इंडिपेंडेंसी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे रिलेशनशिप डिसीजंस और मेंटल पीस को डीपली अफेक्ट करता है। कब किसी का सपोर्ट जरूरत बन जाता है और कब वो इमोशनल डिपेंडेंसी में बदल जाता है, आज हम इसी डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बी के सुधा जी, जो कि एक साइको न्यूरोथेरेपिस्ट है और इनका इस फील्ड में 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बी के प्रिया जी, वेलकम मैम।
1: शांति, थैंक यू,
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
0: ओके प्रिया जी, आज के समय में हम इमोशनल सपोर्ट के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं
1: जी।
0: क्या ये नेचुरल है या कहीं ना कहीं हम अपनी इनर पावर भूल रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी?
1: नेचुरल किसी के ऊपर डिपेंड होना ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी का डिपेंडेंसी आप एनिमल्स में भी अगर आप देखते हो तो कोई भी किसी पर भी इस तरीके से इमोशनली डिपेंड नहीं होता है
0: जी।
1: ऑल आर स्ट्रेंथ
0: जी,
1: और हैविंग देयर ओन स्ट्रेंथ। तो इंसानों को भी परमात्मा ने, हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे जितनी जो इमोशनली फिजिकली मेंटली और फाइनेंशियली सोशली हम जितने स्ट्रांग रहे हैं उतना कोई भी इस पूरी कायनात में नहीं रहा है
0: जी।
1: तो आज अगर हम डिपेंड हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कहा कि हम अंदर से इमोशनली बहुत वीक हो रहे हैं
0: जी।
1: इनफैक्ट बिल्कुल ही जीरो होते चले जा रहे हैं, जो आज का हम सर्कमस्टांसेस या जो भी हम देखते हैं हालात, खास जो यंगस्टर्स हैं जिनको हम जेंजी कहते हैं, स्पेशली हमने उनमें देखा है कि उनको बहुत ही ज्यादा इमोशनली वो वीक है
0: जी।
1: वो बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं।
0: हाँ जी।
1: कोई भी बात होती है तो वो पहले सबसे पहले अपनी ईगो लेवल को आगे ले आते हैं, जो कि उनको नहीं पता चलता, दे डोंट फील इट एज अ ईगो, लेकिन उनको बस हर्ट हो जाता है। और ये बहुत बड़ा एक सकते हैं कि हर्टिंग इज द मेन एलिमेंट ऑफ ईगो ओनली।
0: एग्जैक्टली।
1: अगर मुझे चोट लग रही है अंदर तो वो ईगो एक सबसे बड़ा पहला कारण होता है
0: जी।
1: किसी ने मजाक किया मुझे वो बुरा लग गया, मैंने भी उसके साथ ऐसा मजाक कर दिया ताकि उसको बुरा लगे, तो मैं क्या कर रही हूँ, बदला ले रही हूँ
0: जी।
1: तो ये नेचर मेरा बढ़ता चला जा रहा है कि मुझे चोट लगी है तो आपको भी मैं एहसास दिलाऊं कि चोट क्या होता है।
0: बिल्कुल।
1: एक है कि सामने वाला व्यक्ति ही एक तरह डंब है तो हम उसे एहसास दिला रहे हैं, लेकिन एक है कि मेरे अंदर सहन करने की क्षमता खत्म है, मेरे अंदर उसको समाने की क्षमता खत्म है, तो मैं उसको एहसास दिला रही हूँ
0: जी।
1: तो यानी मेरे अंदर कमी आ रही है तभी मैं बाहर रिएक्ट कर रही हूँ या बाहर डिपेंड हो रही हूँ
0: जी।
1: तो आज मेरी डिपेंडेंसी हर पॉइंट पे आती है, हर पॉइंट पे। अगर मैं हंस रही हूँ तो डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने आप से खुश रहना भूल चुकी हूँ।
0: बिल्कुल।
1: आज अगर हम चार लोग बिठाते हैं हॉल में और उन्हें कहें कि चुप रहना है तो वो चुप रह कर के भी चुप नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: वो आपस में बात नहीं कर रहे लेकिन अंदर खलबली है
0: जी।
1: अगर आपको भी 2 मिनट हम कहीं बिठाते हैं, कहीं कोई इंसान को बिठाते हैं और उन्हें कहें कि बस आपको खाली बैठना है,
0: बिल्कुल
1: वो नहीं बैठ सकते हैं। उन्हें अगर मोबाइल दे दें तो वो पूरे दिन बैठ सकते हैं। इसका मतलब एक इंसान अपने से बात करने में आज असमर्थ है, तभी तो वो अपने साथ नहीं बैठना चाह रहा। खाली बैठना यानी किसके साथ बैठे हो आप
0: जी?
1: आप अपने साथ बैठे हो, लेकिन आज कोई इंसान इस रीति से खाली नहीं होना चाहता
0: जी।
1: या उन्हें कोई नेचर में लेकर जाए, एनिमल्स के बीच ले जाए, लाफ्टर चैलेंज में ले जाए, या किसी गेम में ले जाए, मोबाइल दे दे, लोगों के बीच हो, पार्टी हो, लेकिन खाली नहीं बैठ सकते। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मैं अपनी अंदर की पावर को खोता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को भी नहीं जानता हूँ। और जब मैं अपने आप के बारे में अध्ययन शुरू करूंगा, अपने आप को टाइम दूंगा, अपने आप से बात करना स्टार्ट करूंगा, तो मेरा ये इमोशनल जो पावर है, स्ट्रेंथ है, ये बढ़ना स्टार्ट होता है।
0: बिल्कुल सही बात।
1: और जब मैं अंदर से भरपूर होऊंगा तो मेरी बाहर की जो डिपेंडेंसी है वो नेचुरली एंड ऑब्वियसली कम होती जाएगी। और एक दिन लोगों को मैं साथ दे पाऊंगा, सहारा दे पाऊंगा, बजाय उनके ऊपर डिपेंड होने के।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

हर बारिश को चीरते हुए पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 एफएम की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम।

ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके सुधा जी और बीके प्रिया जी। मेरा अगला सवाल सुधा जी आपसे है कि बीके के पर्सपेक्टिव से इमोशनल डिपेंडेंस और इमोशनल

0: इंडिपेंडेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
1: जैसे ये शब्द आया है इमोशनल डिपेंडेंस और इमोशनल इंडिपेंडेंस, तो पहले हम इमोशन को अगर समझ लें तो हमें क्लियर होगा. एक्चुअली इमोशंस में वो एनर्जी होती है जो हमें मोशन में लाती है.
0: बिल्कुल.
1: हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो अगर उसमें जब तक हम इमोशन नहीं फील करते हम नहीं करते. हमें जैसे पेरेंट्स कहते हैं कर लो, लेकिन जब तक हम अंदर से दिल से उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें करना चाहिए, तब तक हम अपनी पूरी ताकत उसके अंदर नहीं लगाते. अब किसी भी कार्य के लिए हम जो ऊर्जा लगा रहे हैं उसे एक्चुअली इमोशन कहते हैं, लेकिन लोगों ने इमोशन को ना लव से कहीं जोड़ दिया है.
0: बिल्कुल.
1: प्रेम से जोड़ दिया. वो सोचते हैं कि अगर किसी इंसान को किसी इंसान के प्रति अगर डिपेंडेंसी है तो इमोशनल डिपेंडेंसी है. ये डिपेंडेंसी केवल व्यक्ति के प्रति ही नहीं होती, किसी भी चीज के लिए. आजकल जैसे बताया सिस्टर प्रिया ने कि फोन के प्रति डिपेंडेंट है, किसी को ये है कि मुझे उससे अच्छी कार ही ले दी और वो इतना ज्यादा जुनून में आ चुका है कि उसे उससे उस कार के प्रति इतना इमोशन है. तो हम इमोशनली डिपेंड हैं जब हम ये चाहते हैं कि बाहर से कोई चीज मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा.
0: जी.
1: और हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं जो हम बाहर से किसी भी प्रतिक्रिया के बिना ही खुश हैं. कोई हमारी तारीफ कर रहा है नहीं कर रहा है, हम अपने में इतना सेल्फ सफिशिएंट हैं कि हमें जरूरत नहीं है. तो वो जो एनर्जी इन मोशन है वो हमें बाहर क्यों लेके जा रही है जबकि उसे अंदर से हमें फुलफिल करना था और हमने ही एक्चुअली उसे बाहर जाने दिया है.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को हमने ना बाहर से जोड़ लिया है. दूसरे हमें तारीफ कर दे तो हम खुश हैं वरना हम नहीं है. तो इमोशनल डिपेंडेंसी तब खत्म हो सकती है जब अपने आप को हम अच्छे से जान पाएंगे. अपने आप को जानने का मतलब अपनी ऊर्जा को हम बाहर बहने से रोकते हुए अंदर जब लेकर आएंगे.
0: जी जी बिल्कुल सही बात है. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे. शो चल रहा है नया नजरिया.

0: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
1: अरे आगे भी बोलना।
0: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके प्रिया जी और बीके सुधा जी। मेरा अगला सवाल आप दोनों से ये है कि बहुत बार हम इमोशनल डिपेंडेंस को प्यार समझ लेते हैं, तो हम कैसे पहचाने कि ये प्यार है या ये अटैचमेंट है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे पहले भी कहा था कि हम इमोशनली किसी पर डिपेंड होते हैं तो उसे हम प्यार समझ लेते हैं।
0: जी,
1: प्रश्न पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ, बहुत अच्छा चुना है आपने। जब हम किसी व्यक्ति को ये महसूस करते हैं कि उसके बिना हम नहीं रह सकते, मैं फिर से कह रही हूँ केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वस्तु विशेष के लिए भी है, अगर वो चीज सामने से हट जाती है और हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं तो हम डिपेंड थे। उसके हिल जाने के बाद भी अगर हम अंदर से अपने आप को वीक फील नहीं कर रहे तो हम डिपेंड नहीं है। तो प्यार वास्तव में ना देने की चीज है। लव इज द ओनली डोनर थिंग, वो देने वाली ही चीज है, लेकिन लोगों ने उसे रिसीविंग बना लिया है। हर कोई प्यार का भिखारी है, तुम मुझे मुझसे प्यार से बोलो, तुम मुझसे प्यार से चलो, बाहर से मांगा जा रहा है, जबकि कुदरत ने ये बाय डिफॉल्ट हमें ना हमें भरकर भेजा हुआ था। हम अपने सत्य को भूल गए, इस वजह से हम बाहर से मांग रहे हैं। तो इमोशनल डिपेंडेंसी को जो प्यार समझ लेते हैं ये बिल्कुल ही गलत है। इमोशनल डिपेंडेंसी का मतलब ये कि आप अपने इमोशंस को पहचान कर उनके बल पर किसी के प्यार को, बल्कि मैं तो कहूँगी मांगे नहीं देने में विश्वास करें।
0: बिल्कुल प्रिया जी, आप क्या कहेंगी?
2: जी बिल्कुल, जैसा सुधा जी ने कहा, एग्री विद हर। लेकिन और भी जो बातें हैं कि जैसे प्यार जहाँ है वहाँ हम बांधते नहीं है, जबकि अटैचमेंट में बंधते भी हैं और उससे ज्यादा कहीं बांधते भी हैं।
0: बिल्कुल।
2: और प्यार में एक खुल्लम खुल्ला है, खुल्लम खुल्ला माना ऐसा कोई बंधन नहीं फील होता, वहाँ ग्रोथ फील होती है कि मैं भी बढ़ रही हूँ और सामने वाला भी बढ़ रहा है।
0: जी।
2: जबकि अटैचमेंट में बंधन है, कहीं ना कहीं वो चीज एक ईगो का भी बीच में रास्ता आ जाता है, वो ढूंढता है किसी और के साथ तो कहीं वो व्यक्ति ना जुड़ गया हो, या अगर किसी चीज से प्यार है तो ये चीज कहीं और किसी के पास ना चली जाए। अगर मोबाइल से बहुत अटैचमेंट है तो उसे कोई हाथ लगा ले तो हमें दिक्कत है।
0: जी,
2: तरह से ये क्लियर हो जाता है कि प्यार है या अटैचमेंट है। मैं किसी व्यक्ति से अटैच्ड हूं तो वो अगर मेरे से ज्यादा किसी और को समय देता है तो मुझे क्लियर हो सकता है कि ये अटैचमेंट है, कि मुझे दिक्कत हो रही है। फिर जहां प्यार होता है, जैसे मैंने कहा, वहां ग्रोथ है, वहां कनेक्टिविटी रहती है, वहां बराबरी रहती है। और जबकि अटैचमेंट में हमेशा ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ बजाय आपके, मैं आपकी ज्यादा केयर करती हूँ बजाय आपके, मैं आपके लिए ज्यादा करती हूँ बजाय आपके। जबकि प्यार में ये सब चीजें नहीं होती है। एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उसको कैलकुलेट करके ऑलवेज नहीं देती है। जबकि वहां पर अगर एक दोस्ताना बिहेवियर में ये चीज आती है तो वो दोस्ती फिर एंड के कगार पे पहुंच जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है।
2: तो अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं अटैच्ड हूँ, और अगर मैं कैलकुलेशन में नहीं हूँ तो ये प्यार है।
0: जी बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: जॉनी जॉनी,
1: यस पापा।
0: बाइक चलाना है?
1: यस पापा।
0: हेलमेट पहनना है?
1: ओके पापा।
0: हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे?
1: नो पापा।
0: यू आर वेरी गुड बच्चा। हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
4: सुन भाई सुरेंद्र।
5: हाँ भाई सुरेंद्र।
4: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
5: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके प्रिया जी और बीके सुधा जी। प्रिया जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कैसे हम अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रांग बना लें कि हम किसी पर डिपेंड ना फील करें।
1: इसके लिए जैसे कि पहले ही प्रश्न में था कि पहले मुझे अपने आप को इतना स्ट्रांग अगर बनाना है तो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी खुद का स्वॉट एनालिसिस कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो हमारे थ्रेट्स क्या है। ये सारी चीजें जब मैं अपनी कैलकुलेट कर लेती हूँ तो मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ
0: जी।
1: और अगर मुझे अपने आप को वाकई में आगे बढ़ाना है तो मुझे अपने को टाइम देना है और अपने को देखना है। अगर मुझे कोई उंगली उठाकर कह देता है कि आप इसमें वीक हैं
0: जी
1: और मैं रिएक्ट कर देती हूँ तो इसका मतलब मैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाना चाह रही, सिर्फ बचाना चाह रही
0: जी।
1: और वाकई में मुझे अपने आप को बचाना नहीं है, मुझे अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि लोगों के छोटे पत्थरों से मुझे कोई फर्क ना पड़े।
0: क्या बात है,
1: मेरे किले पे उनके पत्थरों से मुझे क्या फर्क पड़ सकता है अगर मैंने अपना किला बनाया है।
0: सही बात है।
1: तो इसलिए किला बनाए, किला बनाने के लिए अपने आप को इंटरनली मजबूत करना होगा, जिसके लिए मेडिटेशन कैन बी अ वे टुवर्ड्स द स्ट्रेंथ। कि अगर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी इंटरनल जो पावर्स हैं, जो हमें दिखती भी नहीं है पर हैं, तो हम उनको जान भी पाते हैं, पहचान पाते हैं और उनको इंक्रीज कर पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: फॉर एग्जाम्पल, हम सबके पास प्यार है
0: जी।
1: हम दूसरे को देखकर शुरू में नफरत किसी से भी नहीं करते
0: जी।
1: हम पहला जो हमारा नजर जाती है वो सबके लिए ही प्यार की, रहम की भावना की जाती है, लेकिन जब उसके अंदर की बातें जानते हैं तो हम चेंज हो जाते हैं।
0: सही बात है।
1: लेकिन मेरे लेवल, मेरे अंदर वो प्यार स्नेह जो है वो किस लेवल पे है, कितना परसेंटेज है, मुझे बढ़ाने की जरूरत है और कहां मुझे कम करने की जरूरत है, उस चीज को जानना, उस चीज की रिसर्च करना ही अपने आप को जानना है। तो जब हम इस चीज को डिग करते हैं, अपने आप की पूरी चीजों को समझ पाते हैं, तो हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और उसके लिए जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन हम जब करते हैं तो मुझे रियलाइज होता है कि वेयर आई वॉज रॉन्ग एंड वेयर आई वॉज राइट। तो मुझे जहाँ रॉन्ग है मुझे अपने को चेंज करना है, और उस चेंजिंग पीरियड में अगर मुझे कोई पॉइंट आउट कर देता है तो मुझे अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी किला बना रही हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो अपना किला बनाएं और अपने किले को इतना शानदार बनाएं कि लोगों के बड़े पत्थरों से भी आपको कोई फर्क ना पड़े, तो आप सुरक्षित हैं। और उस पल पे जब आप बिल्कुल टॉप पे पहुंचे होंगे, यानी आपका किला बिल्कुल बन चुका होगा, तब आपको लोगों की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके प्रिया जी और बीके सुधा जी। सुधा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, लाइक लेट रिप्लाई देना, वो रूड बात कर रहा है या वो बात ही नहीं कर रहा है, तो इसको स्पिरिचुअली कैसे हैंडल कर सकते हैं?
1: एक्चुअली जैसे जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें एक एस्पेक्ट आता है इमोशनल हेल्थ
0: जी।
1: तो अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो हम सीधी तरह समझ सकते हैं कि वो इमोशनली बीमार है
0: जी।
1: और जब किसी चीज में, जैसे कहते हैं कि कैल्शियम की कमी से ये बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से ये बीमारी होती है, तो सेल्फ लव की कमी से ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। हम अपने को अपने प्रति प्रेम को नहीं समझते हैं, स्वयं को हम अपनी इतने ऊंचे नजरिए से नहीं देखते हैं, नहीं मान के वैसा चलते हैं, बस दूसरे हमें कैसे आंकते हैं उससे ही अपने आप को जज करते हैं। तो जब हमारी आंखें बाहर से हटकर अपने प्रति आ जाती हैं, हम अपने सेल्फ लव को बढ़ाते हैं, हम डिपेंडेंसी को खत्म करते जाते हैं, तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं
0: जी।
1: अब लोग डिस्टर्ब हैं बाहर से, भाई मेरी बात का अभी के अभी ही जवाब दो, मैं जो चाह रही हूँ वैसा का वैसा ही करो, तो इसका सीधा सा मतलब है आपको अपने खुद से प्यार तब होगा जब आप दूसरों को कंट्रोल करोगे। प्रेम कंट्रोल नहीं सिखाता, और ये जो नाराजगी है वो इसीलिए कि अपने आप से एक सवाल है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो अगर कंट्रोल बाहर कर रहे हैं तो निश्चित ये सारे लक्षण आएंगे। हमें कंट्रोल अपने पर करना है, अपनी भावनाओं पर करना है कि वो बाहर न ढूंढे, वो अपने जो मजबूती है उसको अंदर से ही पैदा करें। तो जब ये बीमारी जो सेल्फ लव की है अपने को भरपूर करते जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे जो लक्षण आप बता रहे हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके प्रिया जी और बीके सुधा जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि क्या इमोशनल डिपेंडेंसी एक हैबिट बन जाती है जो हमें कंट्रोल करने लगती है और हमें इस चीज का रियलाइजेशन भी नहीं होता, तो इस पे आप दोनों क्या कहेंगे?
1: आपका प्रश्न ही जवाब है और आपने जो कहा ये सत्य है, आज के समय में बिल्कुल यही देखा जा रहा है
0: जी।
1: और मैं आपको बताऊं, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो लोग इतने ज़्यादा ड्रेन हो चुके होंगे इस ऊर्जा से कि हम कहेंगे कि वो ज़माना कहाँ चला गया जब हम ये कहते थे कि इंसानों में इतना प्यार था। एक जगह पर शेर और गाय भी अगर इकट्ठे हो जाएं हमारी ऊर्जा के प्रभाव से, वो भी प्यार से रहते थे
0: जी।
1: वो चीज़ खत्म हो, वैसे भी खत्म होती जा रही है। अब तो ये जैसे कहते हैं ना कि घर घर में ही झगड़े होते चले जा रहे हैं, वो कारण उसका कहीं ना कहीं यही है। तो इसका अगर आप पूछें कि इसका हल क्या है, तो हम अपने अनुभव से सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जितना आप अपने प्रति प्रेम को बढ़ाएंगे, क्योंकि एक लाइन कही जाती है इमोशंस हाइजैक्स इंटेलेक्ट।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, और वो स्वस्थ होने के लिए द ओनली वे जो हम समझते हैं वो अपनी अवेयरनेस है, जिसमें प्रेम बाय डिफॉल्ट शामिल है। प्रेम के बिना इस दुनिया में किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। तो जैसे जैसे आप स्वयं से जुड़ेंगे आपका प्रेम निकलेगा, सोल की जो रियल लाइट है, लव इज़ द लाइट ऑफ सोल। तो अगर हम अपनी लाइट में रहेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें अट्रैक्ट होंगी हमारी ओर।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्रिया जी आप क्या कहेंगे?
2: जैसे कि वर्ड है डिपेंडेंस, यानी आदि, या मैं निर्भर हूँ। तो जब मैं किसी चीज के ऊपर आदि हो जाती हूँ तो आदि वर्ड ही तब लगता है जब आदत बन गई है
0: जी।
2: और जब ये अगर आदत बन गई है तो ये वर्ड अपने आप में बहुत नेगेटिव है, डिपेंडेंस
0: जी।
2: तो जब हम डिपेंडेंट थे इस, चाहे वो किसी भी रूप में, तो वो चीज किसी को भी नहीं अच्छी लगती।
0: बिल्कुल।
2: और अगर ये आदत बन जाती है तो वाकई में एक ऐसा स्टेज आता है कि हमें पता ही नहीं चलता और ये चीजें होने लग जाती है, जिसको फिर आज के डेट में लोगों ने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वर्ड दिया है। ये उसी का एक रूप है
0: जी,
2: कि मैं डिपेंड हो गया और वो चीज अब मुझे नहीं मिल रही है तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और उस प्रॉब्लम का नाम दे दिया है स्ट्रेस। इसलिए इस चीज को पहचाने, डिपेंडेंसी इज ऑलवेज रॉन्ग। Dependency on God is always right. Dependency on anybody is always wrong. इसलिए जैसे कि कहा कि आपकी मति मारी जाती है अगर आप depend होते हैं
0: जी।
2: तो इसलिए इस dependency को आप जितनी जल्दी पहचानेंगे और इससे बाहर निकल आएंगे तो आप feel करेंगे कि आपका stress, anxiety, depression ये सब जा चुका है। इसलिए come out of this, इससे बाहर आ जाइए, come out of this और अपने आप को heal करें। और खुद पे depend होना, या independent word जो लगा है उस पे, इंडिपेंडेंट का मतलब ही है आई एम डिपेंडेंट, कि मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट हूँ
0: जी।
2: और अपने ऊपर डिपेंडेंट होना यानी परमात्मा के साथ जुड़ना, और वो सबसे बढ़िया है।
0: बिल्कुल सही बात है। हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सुधा जी आप बताइए।
1: हमारे बड़ों ने एक दोहा कहा, आम पब्लिक ने बहुत सुना होगा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। अगर आप प्रेम के सत्य स्वरूप को पढ़ेंगे तो लव इज अ डिवाइन एनर्जी। ये वो नहीं है जो आजकल हम सुन रहे हैं कि दो लोगों के बीच में लाके उसे सड़ा दिया गया है। ये इतनी दिव्य ऊर्जा है कि कण कण उस प्रकाश से भरा हुआ है
0: जी।
2: और मेरा मानना ये है कि आज का इंसान इतना डेवलप्ड है, वो मेंटली, फिजिकली, हर तरह से डेवलप्ड है, लेकिन एक और जो डी डिपेंडेंसी आ गई है, उस चीज को हमें अब खत्म करने की आवश्यकता है। हमें डिपेंड नहीं होना है, हमें साथ चलना है
0: जी।
2: हमें सबको साथ लेकर चलना है। ये भावना अगर आ जाएगी तो ना सिर्फ मैं, मेरा घर, मेरा समाज, मेरा देश, इनफैक्ट पूरा विश्व जो है वो उन्नति करेगा।
0: बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच आप दोनों का यहाँ पे आने के लिए।
2: ओम शांति। थैंक यू,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
3: आज की डिस्कशन से एक बात समझ आती है, इमोशनली कनेक्टेड रहना जरूरी है, लेकिन इमोशनली डिपेंडेंट हो जाना नहीं। जब हम इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं तो रिलेशनशिप भी ज्यादा हेल्थी और बैलेंस्ड बनते हैं। डॉक्टर बी के सुधा जी और बी के प्रिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वैल्यूएबल कन्वर्सेशन के लिए। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे नया नजरिया, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझे

हकीकत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हो है?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है 3 यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विदा जय मोनिका।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं और कहानी का सफर आ गया है वीकेंड में आपको और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए। मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी कुछ हटके। तो आप सोच रहे होंगे कि कुछ हटके सीरीज आया करती थी इस वक्त पर और कैसे संघर्ष की कहानी आ गई। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस शो का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पहले था कुछ हटके सीरीज, तो उसे अब चेंज करके संघर्ष की कहानी कुछ हटके कर दिया गया है। तो मैं उसी मोटिवेशन और नई नई कहानियों के साथ आपके साथ वापस आ गई हूँ कुछ ऐसी कहानियां लेकर के जो आप तक अभी नहीं पहुंची है पर आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ऐसी कहानियों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। तो आज की हमारी कहानी है एक 12 साल की लड़की की जिसकी लाइफ में जेलसी बहुत मैटर करती है। वो किसी से जेलस नहीं होती है पर वो बहुत ज्यादा बचपन में खूबसूरत दिखती थी, बहुत अच्छी दिखती थी, इसीलिए रिश्तेदारों ने जेलसी में आकर के उसके फेस पर एसिड फेंक दिया। 12 साल में जब हम सही से ग्रो भी नहीं कर पाते, हमारा बचपन खेलने कूदने का होता है, तब उसकी 36 सर्जरी हुई और उसे बहुत सारा पेन झेलना पड़ा। लगभग 6 साल तक वो बेड से उठ नहीं पाई और जिस सिचुएशन में बड़े बड़े लोगों का दम टूट जाता है उस सिचुएशन का उसने सामना किया और साथ ही साथ उससे उभर कर निकल के भी आई। तो आज की कहानी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है और कैसे उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और कैसे पद्मश्री तक का सफर तय किया, ये सारी चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, मोटिवेशन का पिटारा खुल चुका है और साथ ही साथ एक नई कहानी भी आपके साथ जुड़ चुकी है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिए संघर्ष की कहानी मोनिका की जुबानी।

save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: या कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल में दम।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का संघर्ष की कहानी में। मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। और आज संघर्ष की कहानी में बहुत ही बेहतरीन कहानी चल रही है, तो अब टाइम है उस नाम से मिलने का जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। उनका नाम है प्रोफेसर मंगला कपूर। 1965 की बात है, करीब 12 साल की एक लड़की जिसे म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद था, बेहद खूबसूरत बेबी डॉल, लेकिन फिर फैमिली जेलेसी की वजह से रिश्तेदारों ने उस छोटी सी बच्ची पर एसिड अटैक कर दिया। और ऑनेस्टली ये दिल दहला देने वाला मामला उस दौर में हुआ जब एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए ना अवेयरनेस थी और ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम। लोग हीलिंग कम बल्कि घूरना ज्यादा जानते थे। कहा जाता है कि उस हादसे के बाद उन्होंने लगभग 6 साल हॉस्पिटल में बिताए और 36 से ज्यादा उनकी सर्जरी की गई। और जहाँ पर एक सर्जरी मेंटली ड्रेन कर देती है एक इंसान को, वहीं एक छोटी सी लड़की सालों तक पेन ट्रीटमेंट बैंडेजेस एंड रिकवरी के बीच अपनी जिंदगी देख रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती गाइस, क्योंकि उस फेज में धीरे धीरे म्यूजिक उनकी जिंदगी में वापस आ रहा था, वो कॉन्फिडेंस उनकी जिंदगी में वापस आ रहा था जो कहीं ना कहीं एसिड अटैक ने उनसे छीन लिया था। जब लोग उन्हें देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते थे, तब सुर ने उन्हें एक्सेप्ट किया जैसे वो थी वैसे ही, और शायद इसी वजह से उन्होंने खुद को म्यूजिक में पूरी तरह ढाल दिया। और तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे म्यूजिक सीखना चाहिए। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ग्वालियर घराने में उन्होंने रियाज स्टार्ट किया, इतना गहरा कि बाद में उन्हें उसी से पहचान मिली। ये वही लड़की है जिसके बारे में सोसाइटी बहुत सारी बातें करती, पर इस छोटी सी लड़की की कहानी यहीं पर अभी खत्म नहीं होती। अभी तो म्यूजिक का सफर स्टार्ट हुआ था, उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे इस म्यूजिक को आगे बढ़ाया और कैसे लोगों की जिंदगी में अपनी धुन को डाला, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको संघर्ष की कहानी में। तो बढ़ते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, तब तक एंजॉय करिए आप ये प्यारे प्यारे से गाने।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: अब जब लोग प्यार में पहाड़ तोड़ सकते हैं, पैट्स बना सकते हैं, तो क्या मैं अपने लिसनर्स के लिए प्यारे प्यारे गाने भी नहीं चला सकती? तो अनामिका मिश्रा की खास फरमाइश पर आप सभी के लिए

0: दांतों में ब्रश घुमाते समय जिगजैग करें, ना कि सड़क पर बाइक घुमाते समय।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: इस इलाके में नए आए हो साहब, क्योंकि हेलमेट पहन के राइड करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल में दम।
0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: वेलकम बैक रेडियो लवर्स, मैं आ चुकी हूँ वापस उसी जज्बे उसी हौसले और उसी वाइब के साथ। कहानी चल रही है प्रोफेसर मंगला कपूर की और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ओनली ऑन रेडियो महारानी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी सर्जरी इतनी सारी पेन के बाद जब उन्होंने म्यूजिक को अपनी दुनिया में ऐड किया तब उनकी जिंदगी लगभग पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने ग्वालियर घराने को अपनाया, उन्होंने संगीत को सीखा। अब जहाँ बहुत सारे लोग इतना सा फेस करने के बाद खुद को दुनिया से कट ऑफ कर लेते हैं, वहीं मंगला कपूर ने डिसाइड किया कि अब उनकी पहचान उनका दर्द नहीं बल्कि उनका टैलेंट होगा। और यहीं से शुरू हुआ उनका रियल कमबैक। अब वो बच्ची नहीं रही थी, अब वो बड़ी हो गई थी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने म्यूजिक को एक टैलेंट के रूप में पेश करने के लिए एकदम तैयार। धीरे धीरे उन्होंने खुद को म्यूजिक में पूरी तरह डाल दिया। बहुत घंटों का रियाज, क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग, ग्वालियर घराने से जुड़ना, फिर उसी म्यूजिक को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना। ऑनेस्टली यही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट था मंगला कपूर की लाइफ का। आगे चलकर इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में म्यूजिक प्रोफेसर के तौर पर काम किया। और सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं, उनकी आवाज इतनी ज्यादा पसंद की गई कि लोग इन्हें काशी की लता भी कहने लगे। अब ये टाइटल किसी को इतना इजीली तो नहीं मिलता, मतलब जिस सोसाइटी ने कभी उन्हें अलग नजरों से देखा उसी सोसाइटी ने बाद में इनकी आवाज को रिस्पेक्ट दिया। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी जो है जीत है प्रोफेसर मंगला कपूर जी की। उन्होंने खुद को सिर्फ सर्वाइवर बनकर नहीं रहने दिया बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वुमन की तरह उन्होंने खुद को पेश किया, एक योद्धा की तरह उन्होंने खुद को पेश किया। और प्रोफेसर मंगला कपूर ने अपने इस टैलेंट को सिर्फ अपने तक नहीं रहने दिया बल्कि बच्चों तक भी पहुंचाया। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को फ्री में म्यूजिक सिखाया और साथ ही साथ उन्होंने दूसरों के हौसले को बढ़ाने के लिए अपनी ऑटोबायोग्राफी सीरत भी लिखी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी लाइफ पर एक मूवी भी बनी है। तो कौन सी है वो मूवी और इनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को किसने पेश किया, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिलते हैं और तब तक एंजॉय करिए इनका।

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: ए भाई दर्द देख के चलो।
3: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
2: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
3: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
2: जाने कहां गए वो दिन।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी, आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 एफएम।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: वेलकम बैक जनता, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। और रेडियो महारानी पर आज अभी फिलहाल कहानी चल रही है मंगला कपूर जी की संघर्ष की कहानी चैप्टर में। और ये कहानी वहाँ से शुरू हुई थी जब 12 साल की लड़की पर एसिड अटैक हो जाता है, 6 साल तक हॉस्पिटलाइज रहती है, 36 से ज्यादा इनकी सर्जरीज होती है और फिर वही लड़की आगे चलकर अपनी आवाज से लोगों के दिलों तक पहुँचती है। और ये अपने आप में ही कुछ अनरियल सा साउंड करता है, लेकिन शायद इसीलिए इनकी जर्नी इतनी पावरफुल लगती है क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी को एक ट्रेजेडी बना करके नहीं जिया, उन्होंने इसे ट्रांसफॉर्मेशन बना दिया। आगे चलकर उन्हें काशी की लता भी कहा गया, रोल मॉडल अवार्ड मिला, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी सीरत लिखी और उनकी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग बनी कि उस पर मंगला नाम की मराठी बायोपिक भी बनी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस फिल्म में एक्ट्रेस शिवाली ने मंगला कपूर का रोल प्ले किया था। मतलब इमेजिन कीजिए, जिस लड़की को कभी सोसाइटी सिंपैथी से देखती थी, एक दिन उसी की लाइफ बड़े पर्दे पर दिखाई जाने लगी और फिर 2026 में इन्हें मिला पद्मश्री। लेकिन सच बताऊं तो कुछ अवार्ड्स जो हैं वो अचीवमेंट के लिए नहीं मिलते, कुछ अवार्ड्स करेज के लिए मिलते हैं जो इंसान को हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुराना सिखाते हैं। और आज अगर मॉर्निंग में आप भी किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो बस इतना याद रखिए कि लाइफ कभी कभी बहुत टफ चैप्टर्स लिखती है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि इस लाइफ के ऑथर आप खुद हो। तो ये थी प्रोफेसर मंगला कपूर की एक मोटिवेशनल स्टोरी जिन्होंने हमें सिखाया कि लाइफ में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं जब आप बिल्कुल टूट जाते हो, पर अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ फिर से शुरू करना है तो अपने अंदर मजबूती लानी पड़ेगी, खुद को कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा और खुद पर बिलीव करना पड़ेगा। तो अभी वक्त हो गया है मेरा आप सभी से विदा लेने का, टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं या कुछ विशेष हैं जो शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर है हमारा 9654896896। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बाहर वाली गर्मी भी इस वक्त किसी विलेन एंट्री से कम नहीं चल रही है, तो प्लीज हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए, ORS जूस फ्रूट्स लेते रहिए और अननेसेसरी हीट अवॉइड कीजिए। मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे थे रेडियो महारानी 89.6 FM पर संघर्ष की कहानी। तो अब लेती हूँ आपसे विदा, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का बहुत ध्यान रखिए और बुजुर्गों को और बच्चों को इस टाइम बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, तो उनका ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक टाटा।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: टाउन पार्क मॉल ऑफ फरीदाबाद और बटखल लेक की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
2: Point 6 FM. Good check.

0: गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी के रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला। पोषण की पाठशाला जहाँ हम बात करते हैं माँ और बच्चे की सेहत और पोषण के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी कई नई माओं के लिए ये जर्नी बेहद मुश्किल हो जाती है। कब शुरू करें ब्रेस्ट फीड देना, कैसे ब्रेस्ट फीड दे अपने बच्चे को, कितनी बार ब्रेस्ट फीड करें, ऐसे कई सवाल और डाउट अक्सर मन में आते हैं। आज के एपिसोड में हम ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े हर जरूरी पहलू पर बात करेंगे, ताकि हर माँ को मिले सही गाइडेंस और कॉन्फिडेंस। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृति, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल फरीदाबाद, जो आज हमें ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स, कॉमन प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस पर अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कृति आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, आज पोषण की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो सबसे पहले ये बताइए, ब्रेस्ट फीडिंग को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है, माँ और बच्चे दोनों के लिए? और अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग की, तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बेबी के लिए फायदेमंद है या माँ की हेल्थ पर भी इसका असर होता है?
1: थैंक यू मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर कृति, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में लगभग 3 साल से काम कर रही हूँ। हम वहाँ पे सुबह शाम ओपीडीज चलाते हैं और 24 घंटे इमरजेंसी में अवेलेबल रहते हैं, और हर तरीके की ऑब्जो गायने की सुविधा वहाँ पे अवेलेबल है। तो आज का क्वेश्चन कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इतना जरूरी है, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, इवन माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ब्रेस्ट और ओवरीज को आगे आने वाले कैंसर से भी बचाता है। प्लस ब्रेस्ट में फैट्स, प्रोटीन्स, सारे एंटीबॉडीज एडिक्वेट मात्रा में होते हैं जो बच्चे को चाहिए। शुरुआत में जो दूध आता है वो पतला आता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स और इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज चले जाएं, और एंड में फैट ज्यादा थिक हो जाता है, जिससे बच्चे का पेट जल्दी भरे, जो कि फॉर्मूला मिल्क में उतना बेटर प्रोपोर्शन में नहीं होता।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि आपने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, ये केवल बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि माँ के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट बच्चे के साथ साथ माँ को भी मिलते हैं। बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, उन्हें इन्फेक्शन से बचाना, ये सब फायदे ब्रेस्ट फीड के बाद मिलते हैं। तो जितने भी न्यू मॉम्स आज हमें सुन रही हैं, आज का एपिसोड खास आपके लिए है। इस एपिसोड से आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कुछ ही देर में। तब तक एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक जो है खास आपके लिए।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आज अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ हम बात कर रहे हैं आज ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग की, डिलीवरी के बाद पहले एक घंटे में ब्रेस्ट फीड करना क्यों इतना ज्यादा जरूरी होता है? साथ ही आज हमें ये भी बताइए कि क्लोस्ट्रम क्या होता है और कई लोग इसे वेस्ट क्यों कर देते हैं। अगर क्लोस्ट्रम न्यूबॉर्न बेबी को फीड ना कराया जाए तो कितना नुकसानदेह हो सकता है?
1: पहले घंटे में बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर आप इमीडिएटली लैच करते हो, बच्चा लैच बहुत अच्छे से करता है, प्लस माँ और बच्चे की बॉन्ड बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश होती है और आगे ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर रहती है एंड सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट सही रहता है, आपका सप्लाई अच्छा रहता है। जरूरी नहीं कि पहली बार में ही जब आप लैच करो तो मिल्क बहुत अच्छे से आए, स्टार्टिंग में मिल्क थोड़ा कम ही आता है, बट जैसे जैसे बच्चा सक करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिससे बेटर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और लैचिंग होता है। कोलेस्ट्रम पहले 2 से 3 दिन का मिल्क जो होता है उसे बोलते हैं, ये गाढ़ा पीला होता है, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं और बहुत ज्यादा फैट एंड न्यूट्रिएंट रिच होता है। ये देखने में तो सब पीला गंदा लगता है तो इसलिए बहुत लोग इसे डिस्कार्ड करते हैं, बट ये आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, आगे आने वाले इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, तो इसे कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना है, बच्चे को जरूर पिलाना है, इससे बच्चे को कोई गैस कोई कब्जी कुछ नहीं होगी।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि डॉक्टर ने बताया क्लोस्ट्रम की अगर बात करें तो ये डिलीवरी के बाद पहले 2 से 3 दिन वाला मिल्क होता है जो कि एक न्यूबॉर्न के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे उन्हें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है क्लोस्ट्रम मिल्क की वजह से। इसलिए हमेशा डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि बेबी को फीड कराना बेहद जरूरी है सो दैट कि वो आगे आने वाली बीमारियों से लड़ सके बिना किसी परेशानी के। ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े और भी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

पोषण की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं रेडियो महारानी पर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, जहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात करें सी सेक्शन डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, साथ ही सही ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन कौन सी होती है ताकि माँ को दर्द भी ना हो और बेबी को सफिशियंट मिल्क मिल सके।

0: ले सकते हैं, साइड में करवट लेके बच्चे को पकड़ के फीड करा सकते हैं। और एक दिन बाद जब आपको बैठना अलाउड है तो पिलो जरूर यूज करें, स्पेशली डोनट शेप्ड ब्रेस्ट फीडिंग पिलोस। उससे आपके स्टिचेस पे प्रेशर कम आएगा और फीड कराने में हेल्प होगी, लैचिंग अच्छी होगी तो बेबी फीड आराम से कर लेगा आपका।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, एंड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आजकल काउंसलिंग भी दी जाती है तो उस काउंसलिंग की भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया फुटबॉल पोजीशन, आप उस पोजीशन में बैठकर बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर ने बताया डोनट शेप पिलो लेकर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हेल्प करेंगी। ऐसी चीजों का ख्याल रखिए, इन चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में और ब्रेस्ट फीडिंग जैसी जर्नी को इजी बनाइए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि, आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल, जो आज हमें बता रही हैं ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी होता है, किस तरह से ब्रेस्ट फीड कराया जाए, कितना बेनिफिट हो सकता है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए ब्रेस्ट फीड करना। डॉक्टर, अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान निप्पल पेन या फिर क्रैक्स की, जो अक्सर एक न्यू मदर फेस करती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए? साथ ही अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कैसे पता लगाएं कि बेबी को इनफ मिल्क मिल रहा है या बच्चा अभी भूखा है?
1: अगर क्रैक्स हो जाते हैं, जो बहुत सारी महिलाओं को होते हैं, वो ज्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे ने अच्छे से लैच नहीं किया है, निप्पल उसके पूरे मुंह में नहीं है, तो बाइटिंग या स्ट्रेचिंग की वजह से हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल नहीं बंद करनी, आप कोई भी क्रीम, लेनोलिन्स क्रीम आती है वो लगा के ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इनफ ब्रेस्ट फीडिंग हमें ऐसे पता चलती है कि आपका बेबी 6 to 8 टाइम्स यूरिन कर रहा है अच्छे से, उसका वेट गिर नहीं रहा। आपके बच्चे का पैदा होने के बाद 10% वेट गिरता है, बट उसके बाद बढ़ना चाहिए। साथ ही बच्चे रोते नहीं है ब्रेस्ट फीड के बाद, कम से कम पेट भरा हुआ लगता है। अगर ब्रेस्ट फीड कराते ही आपका बच्चा क्रैंकी हो रहा है तो फिर आपको

0: देखना पड़ेगा कि कहीं फीडिंग अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर, इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो मायानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजी अंशी आपके साथ और शो लेकर आई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। तो डॉक्टर, अब बात करते हैं कॉमन मिथ्स के बारे में। बहुत सी ऐसी मदर्स हैं जिन्हें लगता है कि उनका मिल्क प्रोडक्शन कम है, क्या ये सच होता है या सिर्फ एक मिथ है? साथ ही अगर बात करें फॉर्मूला मिल्क और मदर्स मिल्क में, क्या फर्क होता है इन दोनों में? और जितनी भी वर्किंग मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती, उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं?
1: ये बहुत ज्यादा कॉमन अनसर्टेनिटी रहती है माओ में कि हमें अच्छे से दूध नहीं बन रहा, बच्चा बार बार भूखा हो रहा है। ब्रेस्ट मिल्क बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है, उसके बाद बच्चे को 1.5 से 2 घंटे में फिर से भूख लग जाती है। फॉर्मूला मिल्क हैवी होता है तो जनरली काफी देर तक बच्चे को भूख नहीं लगती, 3 घंटे तक, इसलिए हमें लगता है कि बच्चा फॉर्मूला मिल्क पे अच्छे से पेट भर रहा है और ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं। बट ऐसा नहीं है, अगर आपका ब्रेस्ट हैवी रहता है एंड आप आराम से फीड करा पा रहे हैं 2 घंटे में, तो मिल्क सफिशिएंट है। प्लस जैसे मैंने पहले कहा कि अगर बेबी का वेट मॉनिटर कर रहे हैं और बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली 6 से 7 महीने ऑफ बेबी आप का बच्चा 2-3 घंटे में फीड करेगा ही करेगा। बच्चे क्योंकि बाहर आते हैं तो जनरली क्रैंकी रहते हैं, बहुत टाइम ये होता है कि बच्चा बार बार रो रहा है तो हमें लग रहा है पेट नहीं भर रहा, भले मिल्क प्रोडक्शन पूरा है। तो बच्चे के रोने पे हमेशा ना जाएं, आप खुद देखिए कि क्या आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, वेट, डायपर चेंज, इन सब पे ध्यान दीजिए। फॉर्मूला मिल्क और मदर मिल्क में ये अंतर है, फॉर्मूला मिल्क में सिर्फ न्यूट्रिशन मिल रहा है आपको, मदर मिल्क में लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी आपको टीके लगे हैं या जो भी आज तक आपको इन्फेक्शन हुए हैं उसकी एंटीबॉडीज हैं आपके पास, जो माँ के दूध से बच्चे में जाती है और उस इन्फेक्शन को फाइट करने में मदद करती है। फॉर्मूला मिल्क में आपके बच्चे को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती, तो ब्रेस्ट मिल्क इज ऑलवेज बेटर देन फॉर्मूला मिल्क। अब वर्किंग मदर्स, आजकल हम सब काम करते हैं तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो मिक्स कर सकते हैं आप। यू कैन डू सम ब्रेस्ट फीडिंग एंड सम फॉर्मूला मिल्क, जिससे इम्यूनिटी भी जाए। फिर या तो आप पंप करके रख सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट मिल्क को बहुत स्पेसिफिक तरीके से प्रिजर्व किया जाता है एंड हीट भी आप काउ के दूध की तरह उसे नहीं कर सकते। डायरेक्ट हीट ब्रेस्ट मिल्क को अगर हम करते हैं तो लाइव ऑर्गेनिज्म उसके मर जाते हैं, तो आपको हमेशा पानी गर्म करना है और उसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क को गर्म करना है इनडायरेक्ट हीट से। तो आप प्रिजर्व कर लीजिए अपना ब्रेस्ट मिल्क, आप मिक्स फीडिंग दे दीजिए। अगर दोनों पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ ऑफ अ वर्किंग मॉम इज बेटर।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि डॉक्टर ने बताया, ब्रेस्ट मिल्क इज बेटर देन फॉर्मूला मिल्क। अगर सिर्फ फॉर्मूला मिल्क की बात की जाए तो कहा गया है कि यहाँ पर बेबी को न्यूट्रिशन उतने नहीं मिलते जितने रिक्वायर्ड होते हैं। एंड जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि मदर मिल्क में लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके बच्चे को इम्यूनिटी देते हैं, आपके बच्चे को स्ट्रांग रखते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। जितने भी टीके, जितने भी वैक्सीन एक मदर को लगती है, वो सब मिलती है एक मदर मिल्क में बच्चे को। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ज्यादा कराएं, फॉर्मूला मिल्क पर डिपेंड ना रहे। और जितने भी वर्किंग मदर हैं, उन्हें गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने ये भी बताया है आज कि आप किस तरह से अपना ब्रेस्ट फीड प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सो दैट कि आपका बेबी जब भी भूखा हो उस मिल्क को कंज्यूम कर सके। इसी के साथ और भी सारे मिथ हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ईशान और सुरेख के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात करें मदर्स न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल की, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर को अपनी डाइट में किन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए? अगर एक न्यू मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो क्या इसका असर मिल्क सप्लाई में पड़ता है?
1: माँ का न्यूट्रिशन डायरेक्टली लिंक्ड होता है मिल्क प्रोडक्शन से, तो माँ का न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे घरों में ये होता है कि पहले 6 दिन माँ को कुछ नहीं दिया जाता, कम बस दाल का पानी, लाइट, जिससे बच्चे को दिक्कत ना हो, उससे मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। माँ को प्रॉपर कैल्शियम आयरन रिच खाना खाना जरूरी है, क्योंकि अगर कैल्शियम देना है बच्चे को तो माँ का इंटेक बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूर दें, प्रोटीन रिच होना चाहिए। अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे, दूध, पनीर, ये मिथ है कि दूध टांके खराब करता है, दूध जरूरी है। हरी सब्जियां, सारे फ्रूट्स, फल सब दीजिए। मेंटल स्ट्रेस, नींद कम होना, सब मिल्क प्रोडक्शन इफेक्ट करता है। अगर आप रात को सोते नहीं हैं, आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन कम बनता है, जिससे दूध कम बनता है, तो मेंटल पीस ऑफ अ मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आरजी अंजली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहां आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन की, डॉक्टर अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एनक्रोचमेंट, ब्लॉक डक या फिर मैस्टाइटिस जैसे इश्यूज में, साथ ही अगर बेबी लैच नहीं कर रहा हो तो मदर को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस स्टेज पर आकर एक लैक्टेशन एक्सपर्ट से मिलना बेहद जरूरी हो जाता है।
1: अगर आपके ब्रेस्ट में सूजन आ रही है, डक्ट बंद हो गई है, दर्द हो रहा है, लाल हो रहा है, तो तुरंत सिकाई करें, पहले गर्म फिर ठंडे की, उससे डक्ट्स खुलेंगी, और फिर ब्रेस्ट फीड कराएं। जिस ब्रेस्ट में सूजन है उससे ज्यादा ब्रेस्ट फीड कराना है, क्योंकि वो सूजन दूध के इकट्ठे होने से हो रही है। अगर उसे आप खाली कर दोगे तो सूजन ठीक हो जाएगी, अगर आप उसे नहीं निकालेंगे, ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगे, तो उसमें थोड़े टाइम में पस बन जाएगा और चीरा लगाने की भी जरूरत पड़ जाती है। सूजन में बहुत लोगों को लगता है कि हमें वहाँ से दूध नहीं पिलाना और दूध फेंक देना, ऐसा कुछ नहीं है, दूध ठीक है, जरूर पिलाएं उसमें से दूध और उसे खाली करें। अगर बच्चा लैच नहीं कर रहा तो आप उसे स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखिए। जब बच्चे की चमड़ी और आपकी चमड़ी मिलती है तो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है आप में और बच्चे में, और उसकी लैचिंग कैपेसिटी बेटर होती है। ध्यान दीजिए कि लैच अच्छे से कर रहा है या बच्चा या नहीं, अगर अच्छे से करेगा तो हो सकता है फिर आपको हेल्प हो। अब किस स्टेज पर आपको लैक्टेशन एक्सपर्ट से मिलना है, वो तब है अगर पस निकलने लग जाए आपके ब्रेस्ट से, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है जो सिकाई के बाद भी कम नहीं हो रहा, बच्चे ने दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया है और आपको बुखार आना शुरू हो गया है, इस केस में जरूर डॉक्टर को दिखाएं।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया है कि ब्रेस्ट फीडिंग आखिर होती क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है और मदर और बेबी को इससे क्या फायदे मिलते हैं, साथ ही डॉक्टर ने ये भी बताया है किस तरह की मिथ हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, और डॉक्टर ने टिप्स भी दिए हैं कि किन टिप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के दौरान। अगर हम बात करें लैक्टेशन एक्सपर्ट से मिलने की, तो डॉक्टर ने बताया कि जब भी आपको ये लगे कि आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, आपका बेबी लैच नहीं कर रहा है, आपको पेन फील हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, तो अगर इस तरह के डाउट आपके मन में आ रहे हैं तो प्लीज जाकर एक लैक्टेशन एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करें। इवन आप अपनी गायनी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको सही गाइडेंस देंगे, बस उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए एंड फिर देखिएगा कि ये जर्नी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में आपको पेशेंस से काम लेना है, हिम्मत से काम लेना है, और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। बाकी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए खास ट्रैक जो है आपके लिए।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि, आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात की जाए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की, तो पहले ये बताइए कि क्या मतलब होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, एंड साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक होनी चाहिए, और अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की तो कब से स्टार्ट करनी चाहिए, साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग बंद करते वक्त विनिंग क्या गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए।
1: एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पहले 6 महीने होती है, इसका मतलब है आप कोई पानी हनी कुछ भी नहीं देते। इंडियंस बहुत ज्यादा घुट्टी में बिलीव करते हैं या शहद चटाने में बिलीव करते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है। बच्चे में कोई इम्यूनिटी नहीं होती, वो पेट के अंदर था, उसको किसी भी एंटीजन का एक्सपोजर नहीं है। आप कुछ भी देंगे जो बाहर का है, उससे इन्फेक्शन रिएक्शन होने के बहुत चांस होते हैं। हनी में तो बल्कि एक बॉटुलिज्म टॉक्सिन होता है जो डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ब्रेस्ट फीड के अलावा 6 महीने तक आपको पानी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा इवन फॉर्मूला मिल्क में पानी मिलाया जाता है जो कि उबला हुआ होता है, और ब्रेस्ट फीड मिल्क जो होता है स्टार्टिंग का उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी होता है। तो कुछ नहीं देना पहले 6 महीने तक, उसके बाद आप धीरे धीरे सेमी सॉलिड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बनाना की प्यूरी, चावल का पानी थिक करके, दाल बिल्कुल पतली करके सूप की तरह, ये सब धीरे धीरे ऐड करिए। इसे हम वीनिंग बोलते हैं जो 6 महीने के बाद शुरू होती है, और अगर पॉसिबल है तो वीनिंग के साथ साथ 2 साल तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखिए।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शानदार सुरक्षा के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग की, तो ये बताइए कि ब्रेस्ट फीडिंग का माँ के मेंटल हेल्थ और बॉन्डिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? साथ ही अगर एक न्यू मॉम ये गिल्ट फील करे कि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप?
1: हम ब्रेस्ट फीडिंग को एक माँ बनने के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। जब माँ अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती, तो बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे कौन से माँ हो जो दूध नहीं पिला पा रही, या फिर तुम अपने बच्चे को प्यार नहीं करती इसलिए दूध नहीं आ रहा। बट ये सच नहीं है, क्योंकि ये

0: एक चीज जो ध्यान रखनी है, गाय के दूध पे नहीं जाना है, आपको पाउडर फॉर्मूला मिल्क ही देना है। गाय के दूध में बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं है जो इनिशियल इयर्स में आपके बच्चे को चाहिए, तो फॉर्मूला मिल्क दीजिए। प्लस गाय का दूध एलर्जी वगैरह भी स्टार्टिंग में कर सकता है, तो वो आप एक साल बाद शुरू कर सकते हैं। तो हमेशा मदर्स को सपोर्ट करिए, क्योंकि हैप्पी मदर ही हैप्पी बेबी को लीड करेगी। थैंक यू
1: सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। एंड दोस्तों, उम्मीद है आज का एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल और रीअश्योरिंग रहा होगा। ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चे का पहला पोषण नहीं, बल्कि माँ और बच्चे के बीच एक गहरा रिश्ता भी बनाता है। और आज हमने जाना कि सही टेक्निक, पेशेंस और गाइडेंस के साथ ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को आसान बनाया जा सकता है। और आज इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रही डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अपने वैल्यूएबल गाइडेंस एंड सिंपल टिप्स हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और ढेर सारे टिप्स के साथ। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत

0: होता था, जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है, वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास

0: हम और करेंगे सर अभी, एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है, और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद, और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में

शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले

वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है।

कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की

नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक

साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण

की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उर्वशी दुआ। मैम, ओवरथिंकिंग भी आजकल बहुत कॉमन इशू बन चुका है, सो ओवरथिंकिंग और एक्सपेक्टेशंस का क्या कनेक्शन है?
1: ओवरथिंकिंग और एक्सपेक्टेशंस का बहुत ही मेजर और गहरा कनेक्शन होता है कि जब किसी सिचुएशन में एक इंसान किसी से ज्यादा एक्सपेक्ट करता है तो दिमाग बार बार उसी के बारे में सोचता है, जैसे अगर ऐसा हुआ तो, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, आज उसने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। इस थॉट को जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो ऐसे थॉट, रिपीटेटिव थॉट्स को हम ओवरथिंकिंग बोलते हैं।
0: जी,
1: आप ओवरथिंकिंग आप जितना करोगे उतनी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगी, जितनी आप एक्सपेक्टेशंस आपकी ज्यादा होंगी उतना ही इट लीड्स टू ओवरथिंकिंग।
0: जी,
1: अब और ओवरथिंकिंग होगा तो उससे परेशानियां बढ़ेंगी, दैट गिव्स यू डिस्कम्फर्ट,
0: जी,
1: दैट गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ वरी,
0: जी,
1: धीरे धीरे एंग्जाइटी बढ़ेगी और इससे आपको मेजर

0: हेल्थ इश्यूज के साथ साथ इमोशनल और मेंटल इश्यूज भी होने के चांसेस हैं।
1: बिल्कुल सही बात है मैम। अगर हम एक्सपेक्टेशंस को कम्प्लीटली छोड़ दें तो क्या हमारी लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी?
0: एक्सपेक्टेशन हमें छोड़नी ही क्यों है? पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है
1: जी
0: कि जब तक हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे लाइफ में तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे
1: जी।
0: तो एक्सपेक्टेशंस लाइफ को एक्साइटिंग बनाती हैं। जैसे छोटी सी चीज है, मुझे मूवी के लिए जाना है, दैट इज वन एक्सपेक्टेशन। मुझे कॉफी पीने जाना है, दैट इज वन मोर एक्सपेक्टेशन। मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है। तो ये छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस हैं जो लाइफ में रखनी ही चाहिए
1: जी।
0: एक पार्ट है लाइफ का जो होना ही चाहिए। अब एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो लाइफ तो बोरिंग हो ही जाएगी ना।
1: बिल्कुल सही बात है। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिल रहा है आज के डिस्कशन से। एक और शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे एक सिंपल डेली प्रैक्टिस जो एक्सपेक्टेशंस और एक्सेप्टेंस के बीच बेटर बैलेंस क्रिएट कर सके।

0: मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
1: वाह वाह,
0: अरे मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
2: और आगे
0: याद रखिए, हेलमेट पहनने वालों का कभी चलान नहीं कटता।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैम, शो एंड करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोई छोटी सी डेली प्रैक्टिस या थॉट जो लिसनर्स एडॉप्ट कर सकते हैं ताकि वो एक्सपेक्टेशंस और एक्सेप्टेंस के बीच बेटर बैलेंस क्रिएट कर पाए।
1: एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, तो इसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस जो आप डेली स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज एक्नॉलेज रियलिटी विदाउट एनी जजमेंट। तो बहुत इजी है, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसको जज मत करिए, आप अपने आप को जज मत करिए, और जितना भी आप जजमेंटल होंगे तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल मैम, आप हमारे लिसनर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: एक दो मैं छोटे से सजेशंस देना चाहूंगी। रियलिटी में जो भी कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, किसी को जज मत कीजिए, और दूसरा, जो भी आपकी लाइफ में है उसके लिए थैंकफुल रहिए, उसको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करेंगे तो इससे आपकी लाइफ में इमोशनल और मेंटल बैलेंस बना रहेगा।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये थी आज की मीनिंगफुल डिस्कशन बैलेंसिंग एक्सपेक्टेशंस वर्सेस एक्सेप्टेंस पर डॉक्टर उर्वशी दुआ के साथ। आज की कॉन्वर्सेशन से एक बात जरूर समझ आती है कि एक्सपेक्टेशंस रखना गलत नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस के बिना इनर पीस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ इतनी इंसाइटफुल बातें शेयर करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग।
0: मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे थे नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

हर बारिश को चीरते हुए पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 FM की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बॉटल।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: खिलाना।
1: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
2: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
1: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
3: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
1: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
3: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
1: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कभी कभी एक सिंपल स्माइल पूरी कंट्री को याद रह जाती है, और यामी गौतम की कहानी वही स्माइल से शुरू होती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल क्रश यामी गौतम की। हिमाचल की एक सीधी सादी लड़की, ना लाउड लॉन्च ना सुपरस्टार सरनेम, बस एक काम फेस, नेचुरल ब्यूटी और कैमरा फ्रेंडली इनोसेंस। शुरुआत हुई टीवी सीरियल से, स्मॉल स्क्रीन स्मॉल रोल्स, लेकिन फिर एक एड आई और पूरा इंडिया सडनली पूछने लगा ये लड़की है कौन। फेयरनेस क्रीम का वो एड यामी गौतम को घर घर फेमस कर गया। आयरनी देखो, इंडस्ट्री ने उन्हें पहले ब्यूटी के लिए नोटिस किया, लेकिन आगे जाके वही लड़की अपनी एक्टिंग से सबको सरप्राइज करने वाली थी। यामी गौतम पहले स्क्रीन पर पिटी लगी, फिर धीरे धीरे पावरफुल लगने लगी, और कैसे हुई उनकी एक परफेक्ट बिगिनिंग करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
1: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
0: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नीतू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी। ओ तेन

बॉलीवुड में डेब्यू सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग पहली फिल्म में ही फ्रेश एयर जैसे फील होते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। साल था 2012, फिल्म आई विक्की डोनर। आयुष्मान खुराना के अपोजिट एक सिंपल बंगाली गर्ल आशिमा रॉय। नो ओवर एक्टिंग, नो ड्रामेटिक हीरोइन एनर्जी, बस नेचुरल परफॉर्मेंस, और ऑडियंस को वही पसंद आया। यामी उस एरा की टिपिकल ग्लैमरस हीरोइन नहीं लग रही थी, वो रियल लग रही थी। सॉफ्ट वॉइस, सिंपल एक्सप्रेशंस और एक वॉर्म्थ। फिल्म हिट हुई, क्रिटिक्स ने नोटिस किया, सबको लगा बॉलीवुड को एक फ्रेश एक्ट्रेस मिल गई है। उन्होंने एंट्री ग्लैमरस नहीं ली, कंफर्ट से मारी थी। और फिर कैसे मिला उनको प्रिटी फेस का लेबल, करेंगे इसके बारे में आगे भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है।

बॉलीवुड की सबसे डेंजरस हैबिट है, और वो है कि अगर एक्ट्रेस खूबसूरत हो तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि बस इसकी खूबसूरती इसका टैलेंट है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं यामी गौतम की। यामी गौतम के साथ भी सेम यही हुआ, उन्हें रिपीटेडली ब्यूटीफुल हीरोइन कैटेगरी में डाल दिया गया। फिल्म आई, सॉन्ग्स हिट हुए, लेकिन उनके रोल्स ऑफन लिमिटेड रहे, कभी लव इंटरेस्ट, कभी सपोर्टिंग प्रेजेंस, और लोग उनकी एक्टिंग की जगह उनकी अपीयरेंस की बात ज़्यादा करने लगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, यामी कभी डेस्परेट नहीं दिखी, ना अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सी, ना अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, वो क्वाइटली काम करती रही और शायद अंदर ही अंदर वेट कर रही थी एक ऐसे रोल का जहां वो सिर्फ प्रिटी नहीं परफॉर्मर भी प्रूव हो सके। इंडस्ट्री उन्हें ब्यूटीफुल बोलती रही और वो साइलेंटली बेटर एक्ट्रेस बनती रही। और कैसे आया उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

बॉलीवुड में हर एक्टर के करियर में एक मोमेंट आता है जहां ऑडियंस सडनली रियलाइज करती है, ओह ये तो सीरियसली एक्टिंग कर सकती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं यामी गौतम की। और यामी गौतम के लिए भी ये मोमेंट आया था, और ये मोमेंट था फ्रॉम द मूवी अ थर्सडे। नो ग्लैमरस हीरोइन रोल, नो डांसिंग सॉन्ग्स, बस एक इंटेंस वुमेन होल्डिंग अ सिटी हॉस्टेज। और यामी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म थी, वॉइस, एक्सप्रेशंस, स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ अलग था। ऑडियंस शॉक हो गई थी, ये वही यामी गौतम है? सबके मन में यही सवाल था। और वही एक्टर की बिगेस्ट विक्ट्री होती है जब ऑडियंस आपको दोबारा डिस्कवर करे। उसके बाद आर्टिकल 370 जैसी फिल्म्स ने भी प्रूव किया कि यामी सिर्फ स्क्रीन डेकोरेशन नहीं है, वो पूरी की पूरी फिल्म कैरी कर सकती है। उन्होंने लाउड कमबैक नहीं किया, उन्होंने परसेप्शन चेंज कर दिया। और इसीलिए कभी कभार ऐसा लगता है कि यामी गौतम डिफरेंट है, और वो डिफरेंट क्यों है करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आज के टाइम में जहां हर सेलिब्रिटी कॉन्स्टेंटली विजिबल रहना चाहता है, यामी गौतम का काम रहना ही उनकी इंडिविजुअलिटी बन गई। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं यामी गौतम की। यामी गौतम ने इंडस्ट्री को चेज नहीं किया, उन्होंने बस कंसिस्टेंटली काम किया और धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कभी कभी साइलेंस भी स्पॉटलाइट बन सकती है। वो उन एक्ट्रेसेस में से नहीं है जो हर वक्त हेडलाइंस में ही रहना चाहती हैं, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आती हैं ऑडियंस उन्हें सीरियसली लेती है, और यही पहचान होती है एक अच्छे एक्टर की। ना डेली ड्रामा, ना फेक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, उनकी वाइब ही अलग है। वो अप्रोचेबल लगती हैं, ग्राउंडेड लगती है, और स्क्रीन पर भी वो ओवर परफॉर्म नहीं करती, इसीलिए उनके इमोशनल सीन्स बिलीवेबल लगते हैं। यामी गौतम का करियर एक इंटरेस्टिंग रिमाइंडर है, कभी कभी स्लो ग्रोथ भी पावरफुल होती है। हर एक्टर को ओवरनाइट स्टारडम नहीं मिलता, कुछ लोग ग्रेजुअली ऑडियंस का रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, और यामी उन्हीं एक्टर्स में से एक हैं। आज जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो सिर्फ प्रिटी नहीं लगती, कॉन्फिडेंट लगती हैं, कंट्रोल्ड लगती हैं, कंप्लीट एक्ट्रेस लगती हैं। यामी गौतम ने इंडस्ट्री को चेज नहीं किया, उन्होंने बस कंसिस्टेंटली काम किया और धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज कर दिया कि कभी कभी साइलेंस भी स्पॉटलाइट बन जाता है। तो ये थी कहानी यामी गौतम की। आपको ये पूरी की पूरी कामयाबी की उड़ान की कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से दोबारा 5 से 8 सोमवार से शुक्रवार शाम को अपने शो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियां लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आप सबने हमारे इस कार्यक्रम में अंगदान, उतक दान और देहदान से जुड़े लोगों के अनुभवों को सुना है तथा इन विषयों से जुड़े डॉक्टर्स के द्वारा दी गई जानकारी ली है। हमारे देश में उतक दान की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आई डोनेशन और स्किन डोनेशन के बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो उतक दान से जुड़ी जानकारी देंगे, तो सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: एक बार फिर आप सभी का ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। आज हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा है और वो बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से, जो हमें स्किन डोनेशन से जुड़ी खास जानकारी देंगे। तो चलिए उनके पास चलकर बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, हम हमेशा आपसे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात करते हैं और उनके विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम खास तौर पे स्किन यानी कि त्वचा के प्रत्यारोपण के बारे में लेके आए हैं। दोस्तों, हमने अपने पहले के कई कार्यक्रमों में टिश्यू डोनेशन यानी कि ऊतक दान के बारे में बताया है और स्किन डोनेशन भी एक तरह का ऊतक दान ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी, जो कि बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं और भोपाल शहर के जाने माने विशेषज्ञों में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर राठौर, मैं सभी दर्शकों और ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ बांट सकूं और ऑर्गन इंडिया के इस ऑर्गन डोनेशन अभियान का हिस्सा बन सकूं, मुझे बहुत खुशी है।
1: डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि स्किन डोनेशन क्या होता है, स्किन ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग किस तरह के मरीजों के काम में आती है।
2: हाँ देखिए, जिस तरह आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसी तरह स्किन ट्रांसप्लांट होता है। स्किन ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी और व्यक्ति की स्किन को यदि मरीज में दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो उस चीज को हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो एक अलग है। स्किन ग्राफ्टिंग में पेशेंट की ही स्किन पेशेंट के घाव भरने के लिए लगाई जाती है और स्किन ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन को पेशेंट में लगाया जाता है तो उसे हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्किन ट्रांसप्लांट बहुत ही कारगर मेथड है, स्पेशली बर्न वाले पेशेंट्स में, जिनमें जो है अधिक डिग्री का और अधिक मात्रा में बर्न होता है। जैसे कि आप समझिए कि यदि किसी को 60-70% का बर्न है तो उसके पास इतनी अवेलेबल स्किन नहीं है कि हम उस घाव को जो कि उस बर्न के बाद हुआ है उसको स्किन से भर पाए, तो उन कंडीशंस में हमें स्किन डोनर्स की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत एक्सटेंसिव ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो है स्किन डोनर की हमें जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि एसिड विक्टिम्स जो

0: आफ्टर डेथ, दोनों तरीके से स्किन डोनेट किया जा सकता है। लाइफ डोनर का मतलब है कि कोई भी जिंदा आदमी, चाहे वो उस पेशेंट का रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो स्किन डोनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, कोई भी 18 साल का व्यक्ति जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है स्किन को डोनेट कर सकता है। दूसरी बात आती है कि किस किस तरह से हम और कहां कहां से स्किन ले सकते हैं। जनरली हम बॉडी के हिडन पार्ट मतलब छुपे हुए भागों से स्किन लेते हैं, जैसे कि थाइज हो गई या फिर बटक्स वाले रीजंस हो गए, ताकि आपको स्किन हार्वेस्ट करने के बाद भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो डिफॉर्मिटी है वो आपके कपड़ों में ढकी हुई रहती है। कोई बहुत मेजर विकृति इसमें नहीं बनती है क्योंकि इसमें स्किन का सुपरफिशियल जो पार्ट है वो लिया जाता है। स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस का आधा भाग लिया जाता है, तो वो नीचे जो थाइस पे आपके घाव बनता है वो अपने आप 21 डेज में ऑटोमेटिकली हील अप हो जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ विद इन 6 आवर्स जो है हम स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्किन को हार्वेस्ट हम दोनों लेग से करते हैं, दोनों अपर लिम्स मतलब ऊपर के दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया पे ड्रेसिंग कर दी जाती है, तो आपको बॉडी भी बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड कंडीशन में नहीं दिखती है, ताकि आपके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट नहीं होंगे।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और थोड़ी ही देर में हम वापस आके अपनी इस बात को कंटिन्यू करेंगे।

save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ही इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम बात कर रहे हैं भोपाल शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील राठौर जी से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम जिंदा रहते हुए और मरने के बाद दोनों तरह से स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो आपने बताया कि स्किन में जो दो लेयर्स होती हैं उसमें से सिर्फ हम ऊपरी लेयर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरफिशियल लेयर लेते हैं। तो जब हम जिंदा रहते हुए अगर अपने और स्किन को डोनेट करते हैं जहाँ से हम स्किन ले रहे हैं, तो उस पार्ट पे जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो चीज़ें नहीं दिखती क्या?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्किन है उसका ऊपरी लेयर लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी जो है, स्किन जो है वो बॉडी का आउटर कवरेज है, तो स्किन की ऊपरी जब हम लेयर लेते हैं तो उसमें अंदर का कोई भी मांसपेशी या ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता और स्किन एज ए बॉडी कवर यूज किया जाता है या बॉडी कवर यूज होता है। इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन यदि आप स्कारिंग और डिफॉर्मिटी की बात करें कि वो गंदा दिखेगा, सुपरफिशियल लेयर लेने की वजह से वहां पे कोई सिग्निफिकेंट स्कार भी नहीं आता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम बॉडी के जो है हिडन पार्ट से लेते हैं, तो आपको इस बारे में कि कोई शारीरिक कमजोरी होगी, कोई मेजर डिफॉर्मिटी होगी या कोई बहुत भद्दा सा स्कार आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम मरने के बाद भी अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो मरने के बाद हम कितनी देर के अंदर, आपने बताया कि 6 घंटे के अंदर हम स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो उन 6 घंटों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, अगर ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहें?
2: स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इवन मरने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा कुछ एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि जिस पेशेंट की आप स्किन हार्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर जो डोनर आपके पास अवेलेबल हो, वो किसी भी तरह से कुछ इन्फेक्शंस जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोई स्किन का इन्फेक्शन, कोई स्किन का ट्यूमर या फिर कोई स्किन की गंभीर बीमारी उस पेशेंट को ना हो। यदि उस पेशेंट को इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं है तो 6 घंटे के अंदर हम किन्हीं भी कंडीशंस में स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेशल प्रिकॉशन।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर जिसको हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनसे हमारा ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैच होना जरूरी है, HLA मैच होना जरूरी है, तभी हम अपना कोई ऑर्गन रेसिपिएंट को दे सकते हैं। तो क्या स्किन डोनेशन के टाइम पर भी ब्लड ग्रुप का मैच होना या टिश्यू मैच का होना बहुत जरूरी है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। स्किन ट्रांसप्लांट या स्किन डोनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही है कि स्किन डोनेशन के लिए किसी भी तरह का टिश्यू मैच या HLA मैचिंग करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पेशेंट्स आफ्टर डेथ स्किन को डोनेट कर सकता है, तो आपको किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुपिंग या किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट स्किन डोनेशन में नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि कॉर्निया और दूसरे टिश्यूज को हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो क्या हम स्किन को भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कितने समय के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जैसे आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे के बाद स्टोर नहीं कर सकते हैं उनको। आपको कोई ना कोई इमीडिएट रिसिपिएंट की जरूरत होती है उसके ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन स्किन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्किन में हम स्किन बैंक में स्किन को 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं, इवन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 21 डेज के लिए जो है स्किन को स्टोर कर सकते हैं। तो स्किन डोनेशन में ये जरूरी नहीं कि जब आप डोनेट करने जा रहे हैं या आपका पेशेंट स्किन को डोनेट करने जा रहा है तो इमीडिएट रिसिपिएंट की नीड हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस स्किन को 5 साल तक किसी भी और मरीज के लिए यूज किया जा सकता है, इमीडिएट रिसिपिएंट की इसमें नीड नहीं।
1: डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से, और कुछ ही समय में हम वापस आएंगे और अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेहे की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नहीं की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नहीं की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है। मैं हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौड़ जी से जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। सर, जब हम लोगों से इस बारे में बात करते हैं स्किन डोनेशन के बारे में, तो हमारे सामने इससे जुड़े कई गलत तथ्य और भ्रांतियां सामने आती हैं, तो मैं चाहता हूं कि

0: विशेषज्ञ के तौर पर आप इनके बारे में सही जानकारी हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहला जो मिथ आता है वो सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन डोनेट करने पे हमारी बॉडी या हमारी उस बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट विक्षिप्त हो जाता है, म्यूटिलेटेड हो जाता है, तो क्या ये सही है?
1: देखिए, ये मिथ जो है, ये भ्रम जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्किन डोनेशन में जो स्किन ली जाती है उसकी ऊपरी परत ली जाती है, उसको परत लेने के बाद जो शरीर का जो घाव रहता है वो 2 से 3 हफ्ते में बॉडी उसको अपने आप हील कर लेती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, हल्का फुल्का निशान जरूर रह सकता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जनरली स्किन डोनेशन के टाइम हम ट्राई करते हैं कि बॉडी के हिडन पार्ट से स्किन ली जाए, जैसे आपके थाइस के पीछे का एस्पेक्ट जो आपके कपड़ों के बाहर जो है जनरली दिखाई नहीं देता, और स्किन अकेले लेने की वजह से उनके अंदर के जो मांसपेशियां या फिर जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होता। तो आपका ये कहना कि बॉडी म्यूटिलेटेड हो जाती है या फिर कोई शारीरिक कमजोरी डेवलप होगी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। इस तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती।
0: जी, एक दूसरा भ्रम भी है जो अंग भंग को लेकर है कि हमारी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफी इसके आड़े आते हैं। जैसे कि हिंदू मिथोलॉजी में ये कहा जाता है कि अंग भंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसे दुनिया में आए थे आप वैसे ही दुनिया से जाने चाहिए, अदरवाइज आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये अंग भंग का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप इसके बारे में।
1: देखिए, स्किन डोनेशन में ये चीज अच्छी है कि किसी भी तरह का कोई भी अंग भंग जो है आपको मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जो है वो सिर्फ स्किन का जो है हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जो है ड्रेसिंग कर दी जाती है। तो किसी भी तरह का जैसा हाथ या पैर का कटना, उस तरह का कटना जो है स्किन डोनेशन में नहीं किया जाता है, कोई भी हाथ या पैर नहीं निकाला जाता है। मृत शरीर के बॉडी पार्ट्स सारे अटैच होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के ही जो हिस्से रहते हैं उनसे स्किन की ऊपरी लेयर निकाल दी जाती है। तो आपका ये कहना कि स्किन डोनेशन के बाद जो आपको बॉडी मिलेगी किसी तरह का उसमें अंग भंग रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी किसी भी तरह का बॉडी म्यूटिलेशन या अंग भंग आपके मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा।
0: एक और भ्रांति है कि अगर मेरी स्किन पर कोई टैटू है या स्टिकर है तो मैं स्किन डोनेट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं।
1: नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके स्किन पर टैटू है या फिर कोई मार्क है तो आप स्किन डोनेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके शरीर पर टैटू हो या नहीं हो, किसी भी पार्ट की बॉडी की स्किन ली जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि उस टैटू वाले पार्ट की यदि स्किन को लेंगे तो सामने वाले जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें भी वो टैटू ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दें और बाकी जो नॉर्मल स्किन है वहां से स्किन हार्वेस्ट की जाती है। हाँ, ये यदि है कि आपके होल बॉडी पे आपने टैटू करवा के रखा है फिर भी और कोई डोनर अवेलेबल नहीं है, तो लाइफ सेविंग सिचुएशन में हम उस टैटू वाले व्यक्ति की स्किन भी एज ए डोनेशन ले सकते।
0: जी, और जब हम कोई स्किन लेते हैं और जब हम उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो रिसिपिएंट होता है उसके बॉडी पर वही स्किन मौजूद रहती है या फिर सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। स्किन ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो स्किन है, दूसरे पेशेंट की जो स्किन ली जाती है वो एक टेम्परेरी कवर प्रोवाइड करती है। शुरुआती दौर में 4 से 5 दिन में जो घाव है उसके ऊपर स्किन अटैच हो जाती है, उस अटैच होने की वजह से उस घाव को वो कवर कर देती है, और उस दौरान का जो संक्रमण है और बॉडी के जो पोषक तत्व उस घाव से बह रहे हैं वो रुक जाते हैं, उसके रुकने की वजह से जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाता है और मरीज की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन 25 से 30 दिन बाद, लगभग 1 महीने के बाद, धीरे धीरे करके वो स्किन जो है वो झड़ने लगती है, लेकिन जो घाव है वो सिकुड़ने लगते हैं, पेशेंट रिकवर करने लगता है, और पर्टिकुलर घाव यदि उस स्किन के झड़ने के बाद जो बचते हैं उन पे जो स्किन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है, और उस कम रिक्वायरमेंट को हम जो पेशेंट की अवेलेबल स्किन है उस स्किन से कवर कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी बायोलॉजिकल कवर है। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये एक बेस्ट बायोलॉजिकल कवर है, किसी भी ड्रेसिंग या किसी भी दवाई से अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का एक पार्ट यदि उस घाव पे रखा जाता है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक नेचुरल वे में कन्वर्ट हो जाता है, और मरीज के बचने की संभावना है, स्पेशली एक्सटेंसिव बर्न जो बहुत ज्यादा जले हुए रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े ट्रॉमा वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें उनकी जान को बचाने में ये तरीका बहुत कारगर है।
0: डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार सुना है कि फेस ट्रांसप्लांट भी इस दुनिया में हुआ है, तो इस तरह की कोई चीज में भी ये चीज काम आती है, स्किन डोनेशन?
1: नहीं, स्किन डोनेशन और फेस ट्रांसप्लांट दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। स्किन डोनेशन में हम स्किन की एक पतली लेयर को जो है मृत शरीर या किसी जिंदा आदमी से जले हुए मरीज में लगाते हैं उसकी जान को बचाने के लिए। फेस ट्रांसप्लांट टोटली डिफरेंट है, उसमें किसी मृत शरीर के 6 घंटे के अंदर जो है उसके पूरी चेहरे और गर्दन के स्किन को छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के साथ निकाला जाता है,
0: पूरी मोटाई के साथ
1: निकाला जाता है, और उसमें रक्त की नलियां होती हैं जिनको हम दूसरे पेशेंट में, स्पेशली बर्न विक्टिम्स जो रहते हैं जिनमें एक्सटेंसिव बर्न है, जिनमें कोई और प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं फेस को सुधारने के लिए, तो उन कंडीशंस में उस पूरी मोटी स्किन को जो है पूरे फेस के स्किन को दूसरे पेशेंट के फेस पे लगाया जाता है और छोटी छोटी रक्त नलिकाओं को जोड़ा जाता है, तो जो उनका जो नेचुरल ब्लड है वो ब्लड जो है उस ट्रांसप्लांटेड स्किन में सप्लाई होता है और ऑलमोस्ट नेचुरल एक्सेप्टेबल लुक देता है। आजकल एडवांस प्लास्टिक सर्जरी के इस दौर में फेस ट्रांसप्लांट भी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, स्पेशली बर्न विक्टिम्स और ज्यादा जले हुए मरीजों में जिनमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाता है। लगभग काफी कुछ फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 5 से 10 साल में इस जो विधा है उसमें गति आएगी।
0: बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि किन किन परिस्थितियों में हम स्किन डोनेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी, स्किन डोनर को सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। सबसे पहला रहता है इन्फेक्शन। ये आपको एश्योर होना चाहिए कि जिस पेशेंट को या जिस मृत शरीर को आप एज ए डोनर यूज कर रहे हैं, यानी कि जो डोनेट करने के लिए रेडी है, उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई इन्फेक्शन ना, कोई स्किन का कैंसर ना हो, कोई स्किन की और इन्फेक्शियस गंभीर बीमारी ना हो, कोई और बॉडी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन ना रहा हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उस पेशेंट को ना रही हो। यदि ये सारी चीजें उस पेशेंट्स में नहीं होती हैं या पेशेंट या किसी व्यक्ति में जो लाइव डोनर है, तो उसके स्किन हम जरूर डोनेट करवा के एक जो है पेशेंट में ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी हमने स्किन डोनेशन से जुड़ी हुई जानकारी और तथ्य डॉक्टर साहब के माध्यम से जाने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डोनेशन के माध्यम से नई जिंदगी मिली है। कल अगर आपको किसी भी समय ये लगता है कि हमें भी स्किन डोनेट करनी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाके प्लेज फॉर्म यानी कि संकल्प पत्र भर सकते हैं, या अधिक जानकारी के लिए हमें हमारी हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी तरफ से, और आपके मंगल भविष्य की भी हम कामना करेंगे, और ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।
1: नमस्कार,
0: धन्यवाद।
2: तो ये थी आज की खास बात। मैं ऑर्गन इंडिया और उनकी टीम की प्रयासों की बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ कि वो जनता के भविष्य और उनकी सेहत के लिए इतनी जटिल जानकारी जुटा के लाते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे इन प्रयासों से बहुत से मरीजों को और उनके परिवारों को फायदा हो रहा होगा, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा होगा। दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेते हैं और जल्द वापस आएंगे नई जानकारियों के साथ, नई कहानियों के साथ। आप सभी हमेशा सलामत रहें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

गाना है फ्रॉम द मूवी लव आजकल और इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ गीत। और आज फिर से एक और कहानी लेकर आई हूँ, एक बिजनेस टाइकून की कहानी जहाँ सक्सेस की चमक के पीछे छुपी होती है एक लंबी थका देने वाली कहानी। सोचिए एक बच्चा सिर्फ 4 साल का जिसकी जिंदगी एक डिजीज की वजह से रुक जाती है। डॉक्टर बोल देते हैं नीचे का हिस्सा जिंदगी भर काम नहीं करेगा। बचपन से ही बैसाखियों का सहारा, लोगों की सिंपैथी और सोसाइटी का एक फिक्स लेवल, ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है सपने देखने की, हिम्मत करने की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो कभी फोटोकॉपी मशीन के सामने बैठकर दिन गिन रहे थे और आज जिनका बिजनेस हजारों करोड़ के आसपास घूम चुका है। आज जब एक रिटेल ब्रांड सिक्योरिटी गार्ड की जॉब एड की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, मीम्स बन रहे हैं, तब शायद हमें ये भी पूछना चाहिए इस ब्रांड के पीछे का दर्द क्या था, इस सफलता के पीछे का गिरना कितना गहरा था। पर अभी मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ, गाने के बाद फिर से लौटूंगी और बताऊंगी इनकी कहानी आपको, जिनका नाम जानते ही आप तो कहने वाले हैं ओह ये इनकी कहानी है। तो वक्त है गाने का, गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

वेलकम अगेन टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत और अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपसे एक कहानी की बात की थी। एक बच्चा, एक डिसेबिलिटी और एक सपना जिसका एंड किसी को नहीं पता था। अब वक्त आ गया है उस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर से आपको मिलाने का। नाम है रामचंद्र अग्रवाल और शायद आप ये नाम पहले ना जानते हो, लेकिन जो ब्रांड इन्होंने बनाया उसे आपने जरूर देखा होगा। मोहल्ले के पास, बस स्टैंड के सामने या हाईवे के कॉर्नर पर विशाल

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

Once again, welcome back. You are listening to Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हटके शो है Business Unplugged और मैं आपके साथ गीत हूँ. कभी कभी कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा सक्सेस वाला नहीं होता, वो होता है बचपन. रामचंद्र अग्रवाल जो कि विशाल मेगा मार्ट के फाउंडर थे. रामचंद्र अग्रवाल का बचपन नॉर्मल नहीं था. 4 साल की उम्र में पोलियो ने इनकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दी थी. डॉक्टर ने साफ कहा, नीचे का हिस्सा काम नहीं करेगा. और इस एक सेंटेंस का मतलब था ना दौड़, ना खेल, ना नॉर्मल स्कूल लाइफ. बैसाखियों के साथ चलना, लोगों की नजरों का बोझ उठाना और हर रोज खुद को समझाना, मैं कम नहीं हूँ. फैमिली सिंपल थी, मिडिल क्लास, ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन एक चीज थी, इज्जत. इनके पेरेंट्स ने कभी इन्हें ये फील नहीं होने दिया कि वो किसी से कम है. एक्सपेक्टेशंस क्लियर थी, पढ़ना है, समझना है और अपनी जगह खुद बनानी है. स्कूल के दिन इनके लिए मेंटल ट्रेनिंग जैसे थे. हर छोटी चीज मेहनत मांगती थी. बेंच तक पहुंचना, स्टेयर्स चढ़ना, असेंबली अटेंड करना. और इसी स्ट्रगल ने इनके अंदर एक चीज डेवलप की, पेशेंस. एडुकेशन पूरी की, डिग्री ली, फिर जॉब. पर ऑफिस के हर दिन के साथ इनके अंदर एक सवाल ग्रो होता गया, क्या मैं जिंदगी भर किसी और के अंडर काम कर पाऊंगा. और इस प्रॉब्लम के साथ जॉब मिलना बहुत मुश्किल था और जॉब छोड़ देना लोगों को बेवकूफी लगता था. पर रामचंद्र अग्रवाल को अंदर से पता था, मुझे अपना काम करना है. और फिर आया उनका पहला कदम, छोटा सा, रिस्की सा, और एक फोटोकॉपी मशीन के साथ शुरू हुआ ये सफर. और ये सफर क्या था ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इस गाने के बाद. गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड.

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

एंड वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम. कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड. मैं बात कर रही हूँ विशाल मेगा मार्ट के फाउंडर रामचंद्र अग्रवाल की, जिन्होंने एक छोटे से फोटोकॉपी शॉप उधार के पैसे से ली. कोई गारंटी नहीं. रोज सुबह दुकान खोलना, मशीन का शोर और शाम को गिनती, कितना कमाया कितना बचाया. एक साल तक ये सिलसिला चला, पैसे आ रहे थे लेकिन दिल नहीं लग रहा था. रामचंद्र अग्रवाल को समझ आ गया था सिर्फ काम चलाना मेरा गोल नहीं है. फिर इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस ट्राई किया. डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, मार्जिन सब समझना, लेकिन नतीजा लॉस. यहाँ बहुत लोग रुक जाते हैं, कह देते हैं बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है. लेकिन उन्होंने एक चीज सीख ली थी, फेलियर फीडबैक होता है. उसके बाद फैब्रिक बिजनेस, कपड़ों का काम, रिटेल की रियल अंडरस्टैंडिंग यहीं से आई. कस्टमर का बिहेवियर, प्राइस सेंसिटिविटी और स्टॉक मैनेजमेंट. 15 साल कलकत्ता में ग्राइंड, दिन रात का काम, और फिर भी अंदर एक आवाज थी, अगर इतना कर लिया है तो कुछ बड़ा क्यों ना करे. और फिर लिया गया एक सबसे डेयरिंग डिसीजन, सब छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना, एक नया शहर, जीरो सपोर्ट. और अभी उसी सपोर्ट के बारे में बात करूंगी, लेकिन गाना सुन लेते हैं. गाने के बाद फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड.

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जिंदगी में बस यही काम डाउन रहना बहुत जरूरी है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ विशाल मेगा मार्ट के फाउंडर रामचंद्र अग्रवाल की। दिल्ली में इन्होंने देखा मिडिल क्लास को ऑप्शंस चाहिए पर अफोर्डेबल, मॉल कल्चर एलीट के लिए था। इन्होंने सोचा व्हाई नॉट मास रिटेल। यहीं से विशाल मेगा मार्ट का आइडिया निकला, स्टोर खुला, रिस्पॉन्स मिला और फिर एक के बाद एक स्टोर। टीम बनाना इजी नहीं था, लोग डाउट करते थे पर रामचंद्र अग्रवाल का विजन क्लियर था। सिटीज जुड़ती गईं, स्टोर्स बनते गए, 414 सिटीज, 2007 आईपीओ, 2000 करोड़ वैल्यूएशन, मीडिया कवरेज, सक्सेस का नशा और यहीं से कहानी का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। फास्ट एक्सपेंशन, गलत फाइनेंशियल डिसीजन और फिर 2008 का मार्केट क्रैश, लोन का प्रेशर 750 करोड़, सिस्टम हिल गया, कंपनी गिरने लगी। 2011 में वो मोमेंट आया जब इन्होंने अपनी ही बनाई हुई कंपनी को 70 करोड़ में बेच दिया। सोचिए ये बिजनेस लॉस नहीं था, ये आइडेंटिटी का लॉस था। यहीं पर ज्यादा कहानियां खत्म हो जाती हैं लेकिन रामचंद्र अग्रवाल की नहीं। और कैसे इन्होंने कमबैक किया ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: केवाईसी अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड, मैं गीत हूँ। और कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ ले जाकर खड़ा कर देती है जहाँ से सिर्फ दो रास्ते दिखते हैं, या तो चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया जाए या फिर खुद को दोबारा डिफाइन किया जाए। रामचंद्र अग्रवाल के लिए विशाल मेगामार्ट को बचाना सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, वो एक इमोशनल सर्जरी थी। सोचिए, जिस ब्रांड को आपने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से, अपनी पहचान से बनाया हो, उसे खुद अपने हाथों से छोड़ देना, 70 करोड़ में कंपनी बेचना। नंबर्स के हिसाब से लॉस था, लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस था वो था आइडेंटिटी का। लोग जो कल तक आपको रिटेल किंग कह रहे थे, आज चुप थे। फोन कम बजने लगे, मीटिंग्स खत्म होने लगी। यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को खत्म मान लेते हैं। लेकिन रामचंद्र अग्रवाल ने खुद से एक सवाल पूछा, मेरे पास क्या नहीं बचा? जवाब आया, पैसे नहीं बचे, ब्रांड नहीं बचा, पर एक्सपीरियंस जिंदा है, और एक्सपीरियंस सबसे महंगा एसेट होता है। इन्होंने रियलाइज किया कि विशाल का डाउनफॉल का रीजन आइडिया नहीं था, एग्जीक्यूशन का ओवर कॉन्फिडेंस था। इस बार अप्रोच बदली, इस बार ग्रोथ स्लो रखी, इस बार नंबर से पहले डिसिप्लिन आया, और वहीं से शुरू हुआ V2 रिटेल। नया नाम, नया स्ट्रक्चर, पर वही कोर अंडरस्टैंडिंग, इंडियन मिडिल क्लास। नो फ्लैशी ड्रीम्स, सिर्फ सस्टेनेबल बिजनेस, स्टोर बाय स्टोर, सिटी बाय सिटी, कंट्रोल ग्रोथ। आज V2 रिटेल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और आज उसकी मार्केट वैल्यू 6,500 करोड़ से ज्यादा। पर इस कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट ये नंबर नहीं है, पावरफुल पार्ट ये है कि एक आदमी जो बचपन से बैसाखियों के साथ चला, जो जिंदगी भर लोगों के डाउट्स उठाता रहा, जो एक बार सब कुछ खो चुका था, उसने फिर से खुद को खड़ा किया। और यहीं से नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन निकलता है, फेलियर आपको

डिफाइन नहीं करता। आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हो वो आपको डिफाइन करता है। अगर आप अपना स्टार्टअप ब्रांड करने के बारे में सोच रहे हो और अगर आप लोन प्रेशर सेल्फ डाउट से घिरे हो तो रामचंद्र अग्रवाल की कहानी आपको एक बात याद दिलाती है, एंड तब होता है जब आप खुद मान लेते हो। डिसेबिलिटी एक्सक्यूज नहीं होती, बैकग्राउंड लिमिटेशन नहीं होती और एज कभी बैरियर नहीं होती। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं होता, बिजनेस पेशेंस सेल्फ बिलीव और लॉन्ग विजन का टेस्ट होता है। आज विशाल मेगा मार्ट का नाम शायद नए लोग चला रहे हैं लेकिन उसके पीछे की सोच अभी भी जिंदा है। और V2 रिटेल सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एक स्टेटमेंट है। मैं गिरा था पर खत्म नहीं हुआ था। और इसी थॉट के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड, और जहाँ कहानियां सिर्फ सक्सेस की नहीं होती, दोबारा खड़े होने की होती है। याद रखिए, अगर आप जिंदा हैं तो आपका बिजनेस ड्रीम भी जिंदा है। और मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: और झुमका
1: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी किसी ऐसी जगह को देखा है जो दूर से सच कम और ख्वाब ज्यादा लगे, जहाँ पानी के बीच एक महल चुपचाप खड़ा हो, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। दिन में सूरज की रोशनी उसे सोना बना देती है और रात में वो चांद का अक्स लगता है। वो कहा है कि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, वो आंखों में उतर जाती है। और इसी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ आपकी दोस्त आरजी अंजली और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम चल रहे हैं पिंक सिटी, जयपुर के दिल में बसी एक मिस्टीरियस और खूबसूरत जगह की तरफ, जिसका नाम है जल महल। अब सवाल ये है कि पानी के बीचों बीच आखिर ये महल क्यों आया? तो सोचिए जरा, एक महल और वो भी झील के बिल्कुल बीच में।

अब बात जल महल की करे तो ये महल बना था 18th सेंचुरी में महाराजा माधव सिंह के दौर में। ये महल असल में रॉयल डक हंटिंग लॉज के रूप में यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे ये जयपुर की पहचान बन गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जल महल के 5 फ्लोर हैं, पर जब आप इसे देखते हैं तो सिर्फ 1 फ्लोर नजर आता है। अब बात आई बाकी, मतलब बाकी के फ्लोर पानी के अंदर। कुछ खूबसूरतियां पूरी दिखाई नहीं देती, शायद इसलिए और भी खूबसूरत हो जाती है। जब बात हो ही रही है इस जादुई महल की, तो वापस आकर जानेंगे आर्किटेक्चर का जादू क्या है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे इंचली आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम पहुँच गए हैं पिंक सिटी यानी जयपुर के जल महल। और अगर इस महल की बात करें तो आइए चलिए जानते हैं इस महल का आर्किटेक्चर का जादू। जल महल राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का ब्यूटीफुल मिक्स है। लाल सैंडस्टोन से बना ये महल अपनी सिमेट्री और सिंप्लिसिटी का मास है। फिर बात करें छतरियां, मेहराब और उनका पानी में रिफ्लेक्शन, जैसे आर्किटेक्चर और नेचर एक साथ पेंटिंग बना रही हो। और जब मॉनसून में लेक बाहर जाती है तो महल लिटरली पानी पर तैरता हुआ लगता है। वो कहा है कि पत्थर भी कभी कभी इतने खूबसूरत लगते हैं कि वक्त उन्हें तोड़ने की बजाय संभाल कर रखते हैं। अब बात कर रहे हैं इस लेक की, तो आइए जानते हैं मानसागर लेक की कहानी। जिस लेक में जल महल बसा है उसे कहते हैं मानसागर लेक। ये आर्टिफिशियल लेक थी जो पानी स्टोर करने के लिए बनाई गई थी, पर धीरे धीरे ये महल और लेक जयपुर का पोस्ट कार्ड बन गए। सुबह के वक्त जब सूरज का रिफ्लेक्शन पानी पर पड़ता है तो पूरा सीन सिनेमैटिक लगता है, जैसे कोई ओल्ड रॉयल फिल्म चल रही हो। लेकिन ये महल सिर्फ अपने आर्किटेक्चर की वजह से नहीं जाना जाता, ये महल अपने अंदर बहुत सारी मिस्ट्री एंड साइलेंस छुपाए बैठा है, जिनके बारे में बातें करेंगे वापस आकर। तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी जी आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं जल महल के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है सबसे मिस्टीरियस बात क्या है? आज भी लोग जल महल के अंदर फ्रीली नहीं जा सकते, दूर से सब उसे देखते हैं, पर अंदर की दुनिया अब भी काफी हद तक हिडन है। और शायद इसी मिस्ट्री की वजह से जल महल और भी मैजिकल लगता है। वो कहा है कि हर खूबसूरत चीज का थोड़ा मिस्टीरियस होना जरूरी है। अब बात करें राजस्थान की शाम, तो शाम के वक्त जल महल के आसपास की हवा ही अलग लगती है। रोड साइड चाय, राजस्थानी म्यूजिक, ठंडी हवा और सामने लेक में चमकता महल। एक मोमेंट के लिए लगता है जैसे वक्त भी धीरे धीरे चलने लगा हो। वो कहा है कि कुछ शामें आवाज नहीं करती, बस याद बनकर रह जाती है। इसलिए शायद इस जगह को माना जाता है फोटोग्राफी का पैराडाइज। इस बारे में भी वापस आकर बातें करेंगे, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: टियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजली और आज हम पहुंच गए हैं पिंक सिटी यानी जयपुर के जल में है। तो बाद हमने बहुत सारी की आज इस महल के बारे में और आपको ये भी बताया कि इस महल को कहा जाता है फोटोग्राफी का पैराडाइज यानी फोटोग्राफर्स के लिए जल महल हेवन माना जाता है। सनराइज सनसेट रिफ्लेक्शन शॉट्स हर एंगल से ये महल अलग मूड क्रिएट करता है, कभी रॉयल कभी लूनली कभी ड्रीमी, जैसे एक महल नहीं एक इमोशन हो। और शायद यही रीजन है कि अपने साथ ये महल कल्चर एंड आइडेंटिटी लेकर चलता है। जल महल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये राजस्थान की रॉयल एलिगेंस का सिंबल है। एक रिमाइंडर कि इंडिया में आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, कहानियां होती है। और हर कहानी में पानी हवा रोशनी और वक्त अपना रोल प्ले करते हैं। और शायद यही वजह है कि जल महल हमें खूबसूरत बात सिखाता है कि हर चीज को पास जाकर समझना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें दूर से ही दिल में उतर जाती हैं। वो कहा है कि हर महल में शान नहीं होती, कुछ में सुकून भी होता है। और जल महल भी उन्हीं जगहों में से एक है जहाँ पानी भी कहानी सुनाता है। अगर कभी आप जयपुर जाओ तो जल महल के पास थोड़ी देर जरूर रुकना, हो सकता है वहाँ की हवा आपके अंदर के शोर को थोड़ा कम कर दे। इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। कल फिर मिलेंगे एक और जगह एक और कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजली साइनिंग ऑफ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

शाम के 6 बज चुके हैं और बाहर गर्मी अभी भी कम नहीं हुई और ट्रैफिक अपनी स्पीड में है और इसी बिजी सी इवनिंग में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है एक अच्छा मूड। और मूड को इंस्टेंटली एनर्जेटिक बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मैंने ले ली है। मैं हूं आज पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर, जहां हर वीकेंड मैं बात करती हूं बॉलीवुड के उन गानों और फिल्म्स की जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करते बल्कि अपने पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी छोड़ जाते हैं। और आज का एपिसोड है फुल ऑन एंटरटेनिंग, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं उस सुपरस्टार को जिसके फिल्म में एक्शन भी होता है, कॉमेडी भी, स्टाइल भी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट भी। जी हाँ, आज का एपिसोड डेडिकेटेड है अक्षय कुमार स्पेशल।

0: तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए और शुरू करते हैं एक ऐसी फिल्म से जिसका नाम सुनते ही एटीट्यूड ऑटोमेटिकली आ जाता है, और वो मूवी है बॉस।
1: आयुष्मान, याद रखियो, बॉस का खून बोलता नहीं, खोलता है, और जब ये खोलता है तो ये बॉस एक एक को फोड़ता है।

और अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये फिल्म जितनी स्टाइलिश थी उतनी ही इंटरेस्टिंग उसकी मेकिंग भी थी। सबसे पहले तो काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये फिल्म मलयालम मूवी पोकिरी राजा का ऑफिशियल रीमेक थी और फिल्म के गाने भी उस टाइम काफी पॉपुलर हुए थे, स्पेशली पारे लाइट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गाने को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लिरिक्स के एक वर्ड पर ऑब्जेक्शन हुआ और बाद में उसे म्यूट करना पड़ा था। और अगर आपको लगता है कि फिल्म सिर्फ स्क्रीन पर ही लार्जर देन लाइफ थी तो बता देती हूँ कि बॉस ने जीनस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपनी जगह बनाई थी, क्योंकि फिल्म का जायंट पोस्टर दुनिया के सबसे बड़े पोस्टर्स में इंक्लूड हुआ था। और वैसे क्लाइमेक्स शूट करना भी इजी नहीं था इस मूवी में, क्योंकि थाईलैंड की एक्सट्रीम हीट में एक्शन सीन्स को शूट किया गया था, मतलब कैमरा के पीछे वे फुल स्ट्रगल चल रहा था। और डायरेक्टर एंथनी डिसूजा ने खुद रिवील किया था कि उनकी प्रीवियस फिल्म फेल होने के बाद अक्षय कुमार ने उन्हें सपोर्ट किया और बॉस बनाने में हेल्प की। तो दोस्तों, बॉस मूवी की इतनी बातें हो ही गई हैं कि अब टाइम है थोड़ा दिल को भी एंटरटेन करने का, क्योंकि फिल्मों की बातें बिना गानों के बिल्कुल अधूरी लगती हैं। तो चलिए सुनते हैं बॉस मूवी का वो रोमांटिक ट्रैक, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। और अगर इस गाने के बाद आपको भी प्यार वाली फीलिंग आने लगे तो प्लीज मुझे मत ब्लेम करिएगा। और हाँ, इस मूवी के बाद बात होगी ऐसी फिल्म की जहाँ एक्शन के साथ कॉमेडी का तड़का भी था और एक नंबर ने फिल्म को हेडलाइंस में ला दिया था। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, तब तक के लिए ये गाना आपके लिए।

0: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, इस लू भरी गर्मी से लगता है।
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
3: कामयाब हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।

0: 786।
1: नाम बहत्तर, जिला मलकानपुर, गांव तासी, सर पे हाथ रबदा, हाथ में 786।
0: जी हाँ, अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये फिल्म फैंस के लिए स्पेशल इसलिए भी थी क्योंकि काफी सालों बाद अक्षय कुमार एक बार फिर खिलाड़ी टाइटल के साथ वापस आए थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अक्षय ने ये फिल्म मेनली इसलिए साइन की क्योंकि उनके बेटे को उन्हें एक्शन रोल्स में देखना बहुत पसंद था। और अगर आपने नोटिस किया हो तो 72 सिंह और 71 सिंह के नेम्स भी एक फनी नंबर पैटर्न क्रिएट करते हैं। फिल्म के एक्शन सीन्स को और रियलिस्टिक बनाने के लिए अक्षय ने स्पेशली कॉम्बैट कराटे भी सीखा था। और क्लाइमेक्स की शूटिंग हुई थी मुकेश मिल्स में, जो काफी टाइम से मिस्टीरियस जगह के नाम से फेमस रहा है। अब इस फिल्म की इतनी बातें हो ही गई है तो चलिए सुनते हैं इस मूवी से हुक्काबाद गाना। और गाने के बाद बताऊंगी आपको ऐसी फिल्म के बारे में जहां रोमांस के साथ पावर और मैनिपुलेशन का एंगल भी देखने को मिला। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ।

0: फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
1: सही कह रहा है तुरिंदर, कितना भी कर ले, घर का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।
2: ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ, जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, होड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आप सभी को हिंट दिया था कि एक ऐसी मूवी के बारे में बताऊंगी जहाँ रोमांस के साथ पावर और मैनिपुलेशन का एंगल भी देखने को मिला, और वो मूवी है एतराज़।

एतराज उस वक्त बॉलीवुड के लिए काफी डिफरेंट कंसेप्ट लेकर आई थी और ऑडियंस ने भी फिल्म को काफी सीरियसली लिया था। वैसे काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि फिल्म हॉलीवुड मूवी डिस्क्लोजर से इंस्पायर्ड मानी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर को लेकर। और ऑनेस्टली उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ नेगेटिव रोल प्ले किया उसने सबको सरप्राइज कर दिया था। इस रोल के लिए प्रियंका को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और वो ऐसा अवार्ड जीतने वाली सिर्फ दूसरी फीमेल एक्ट्रेस बनी। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप सभी को बताऊंगी कि प्रियंका चोपड़ा अपने कैरेक्टर में इतना इन्वॉल्व हो गई थी कि रियल लाइफ में भी वैसे ही रिएक्ट करने लगी थी और बाद में उनकी मदर ने ये चीज उन्हें रियलाइज करवाई। फिल्म का टाइटल भी काफी यूनिक था। मेकर्स के अकॉर्डिंग एतराज वर्ड ही स्टोरी का मेन इमोशन परफेक्टली एक्सप्लेन करता था। अब इस फिल्म की हमने इतनी बात कर ही ली है तो चलिए सुनते हैं इस मूवी का वो वाला गाना जिस पे काफी सारी मीम्स वायरल हुई थी। जी हाँ, गेला गेला। और इस गाने के बाद बताऊंगी आपको ऐसी मूवी के बारे में जो सिर्फ एक्शन एंटरटेनर नहीं थी बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी कैरी करती थी। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। तब तक के लिए

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।
3: हम आप तक पहुँचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं पलक आप सभी के साथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आप सभी को बताया था कि एक ऐसी मूवी के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो सिर्फ एक्शन एंटरटेनर नहीं थी बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी कैरी करती थी। और इस मूवी का नाम है गब्बर इज बैक।

और इस मूवी की अगर हम बात करें तो ये फिल्म करप्शन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बनकर सामने आई थी। और अक्षय कुमार ने खुद कहा था कि फिल्म के कई इंसिडेंट्स रियल लाइफ करप्शन केसेस से इंस्पायर्ड थे। करेक्टर के लुक के लिए अक्षय ने वेट गेन भी किया और बियर्ड ग्रो की। हालांकि उनकी छोटी डॉटर को वो बियर्ड बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बियर्ड चुभती थी। वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज है इस फिल्म में, जो पुलिस ऑफिसर्स नजर आए इस मूवी में, उनमें से कई एक्टर्स एक्चुअली क्राइम पेट्रोल का पार्ट रह चुके थे। और फैंस ने एक और कनेक्शन इंस्टेंटली नोटिस किया था, वो ये था कि फिल्म में कई जगह लेजेंडरी शोले के गब्बर को ट्रिब्यूट दिया गया, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके डायलॉग्स तक। मतलब ये फिल्म एक तरह से ओल्ड स्कूल बॉलीवुड विलन को मॉडर्न स्टाइल में सैल्यूट भी करती है। अब इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है तो चलिए सुनते हैं तेरी मेरी कहानी गाना। और इसी खूबसूरत गाने के साथ वक्त हो चला है मेरा आपसे इजाजत लेने का। आज की इस म्यूजिकल जर्नी में कहीं एक्शन था, कहीं कॉमेडी, कहीं एंटरटेनिंग स्टोरीज, तो कहीं फिल्मों के पीछे छुपे वो अनसुने किस्से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.67 पर। मैं फिर लौटूंगी नेक्स्ट वीकेंड बॉलीवुड के कुछ और हिडन स्टोरीज और अनफॉरगेटेबल गानों के साथ। तब तक अपनी प्लेलिस्ट को लाउड रखिए और म्यूजिक को एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: एक बार जो मैंने सनस्क्रीन लगा ली उसके बाद तो मैं धूप की भी नहीं सुनती।
1: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो, जीब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर सेफ्टी सबसे ऊपर।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
4: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ है।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
1: कामयाब हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी। धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
2: अरे आगे भी बोलना।
1: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

चीरते हुए पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 एफएम की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा
0: हूँ। समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: कभी कभी लगता है हम जो बोल नहीं पाते वो सबसे ज्यादा लिखा जाता है, और शायद इसीलिए हर दौर की अपनी एक शायरी होती है. एक दौर था जब प्रेमचंद जैसे लेखक समाज को अपनी कहानियां सुना रहे थे. फिर एक ऐसा दौर आया जहां जॉन एलिया जैसे शायरों ने सच्चाई को बिना किसी पर्दे के लिख दिया, और आज वही शायरी रील्स, ओपन माइक्स और स्टेज पर जिंदा है. तो सवाल सिंपल है, क्या बदला है, सिर्फ तरीका या एहसास भी? हे, आप सुन रहे हैं आज दिल शायराना. मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट गीत, और बहुत सारी बातें होंगी क्योंकि फिर से मेरे साथ यहाँ पर कवि और कवित्रियों की महफिल लग चुकी है जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे. तो वक्त को जाया ना करते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी.
5: थैंक यू सो मच जी.
4: ईशा जी आपका स्वागत है, ज्योति जी आपका स्वागत है, अभिनव जी आपका स्वागत है, ज्योति जी आपका स्वागत है. तो सबसे पहला जो सवाल है वो सभी से है, जो भी पहले जवाब देना चाहे वो आ सकता है माइक के आगे. मेरा सवाल यही है कि आप लिखते क्यों हैं, और अगर शायरी नहीं होती तो आप अपने इमोशंस को कहाँ रखते?
5: बिल्कुल, देखो सबसे बड़ी बात ये है
4: जी
5: कि जो भी हमारे अंदर चल रहा है, जो भी हम सोचते हैं, वो हम एक पन्ने पर उकेर देते हैं.
4: जी
5: और ये एहसास बहुत खास होता है. कभी हम रोते हैं वो लिखते हुए, कभी हम हंसते हैं, कभी गुदगुदाते हैं.
4: जी,
5: तो इस एहसास को वैसे तो एक्सप्लेन करना, हिंदी में कहेंगे व्याख्या करना, बहुत ही मुश्किल है. लेकिन जब आपने पूछा है तो फिर एहसास की बात ऐसी है कि जो भी मन में आया, जो भी दिल ने कहा, वो सब लिख दिया. चाहे वो अपने इष्ट के लिए हो, चाहे वो अपने प्रेमी के लिए हो, चाहे वो समाज को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो.
4: जी,
5: और कहें कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो ये नहीं होता तो शायद हम कभी नहीं होते.
4: क्या खूबसूरत जवाब दिया है आपने, सीरियसली.
5: तो हम लिखते हैं इसलिए हम कवि हैं, हम शायरा हैं.
4: जी,
5: और बस इतना ही कहूंगी, लिखना जिंदगी है और लिखते ही रहेंगे और जिंदगी यूं ही चलती रहेगी.
4: क्या बात है, बहुत खूबसूरत. ज्योति जी आपसे भी ये सवाल है, अगर पोइट्री नहीं होती तो ये इमोशन कहाँ जाते?
6: सबसे पहले मैं अपनी लिखी दो लाइनें.
4: बिल्कुल बिल्कुल.
6: कोई बात जब जबान से कहीं नहीं जाती, और कोई पीर जो हृदय से सही नहीं जाती, तो अपने लफ्जों से उन्हें कागज पर उकेर लेती हूँ, और सुनने वाले कहते हैं क्या खूब कविता कहते.
4: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. तो
6: बस यही है कि जब मन में कोई भाव भर आता है और आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं. कई लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होकर भी कहते हैं कि बाहर आप लोगों को कुछ कहने जाएंगे तो आपकी बात का तमाशा बनाया जाएगा. उसको जब हम अपनी कविता में ढाल लेते हैं, हमें जो कुछ भी कहना है उसको अपने भाव को कविता के रूप में निकाल देते हैं
4: जी,
6: तो वो एक अलग ही रचना बन जाती है,
4: और वाह वाह भी मिल जाती है.
6: हमने अपना दुख कह भी दिया और किसी को पता भी नहीं चला.
4: बिल्कुल बिल्कुल.
6: तो इस तरह से, और अगर कविता ना होती, अगर शायरी ना होती, तो बहुत सारे अनसुलझे सवालों का जवाब नहीं मिल पाता, लोगों के दिल तक दिल की बात नहीं पहुंच पाती. और हो सकता है क्योंकि गद्य भी है एक विधा लिखने की, गद्य में लिखा जाए, कहानियों में लिखा जाए, किस्सों में उपन्यास आते हैं, लेकिन गागर में सागर धंधा वो कविता और शायरी से.
4: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने. अभिनव जी आपके पास आते हैं, सवाल यही है आपसे.
7: देखिए, मैं इसको अपने एक अलग जाविये से देखता हूँ. जैसे फूल है तो फूल की जो खुशबू है, वो फूल की खुशबू फूल पे रहती तो है, बट अगर वो बाहर अगर आए ना तो फूल की कितनी सार्थकता, वो फूल भले जाने लोग ना जाने, है ना. तो जो हमारे इमोशंस हैं, चाहे वो प्रेम में हो, चाहे वो दुख तकलीफ की बात हो
4: जी,
7: ठीक है, उसको सबसे जो क्लोज, सबसे जो नजदीक पहुंचने तक का जो जरिया है वो पोएट्री है, वो गजल है
4: जी.
7: और इससे करने से, लिखने से हमें ये लगता है कि हम जिंदा हैं
4: जी,
7: जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए. बिकॉज ऐसा लगता है कि अगर जो पानी है, पानी भी अगर अपने रवानी पे ना हो तो वो भी सड़ जाता
4: जी.
7: तो इंसान अगर जो भी अपने जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो अगर पन्ने पर उकेरे ना जाए तो उसकी सार्थकता उतनी नहीं रह जाएगी जहाँ होनी चाहिए
4: जी।
7: और अगर मैं गजल नहीं कहता, मैं शायरी नहीं करता, तो मैं क्या होता, मैं दो मिसरे पढ़ता हूँ
4: जी।
7: एक मतलब और एक शेर इस पे है कि वहां आ जाएंगे लेकिन वहीं के ना रहेंगे हम, जमी के ना रहे फिर तो कहीं के ना रहेंगे हम।
4: क्या बात है।
7: और ये शेर कोट कर रहा हूं मैं, जिससे आपको एक वजह मिलेगी
4: जी
7: कि मैं क्यों शायरी करता हूँ कि अलम आंसू अजियत इसलिए भी पाल रखे हैं, अलम आंसू अजियत इसलिए भी पाल रखे हैं, अगर इसके नहीं फिर शायरी के ना रहेंगे।
4: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आपकी इस शेर ने सब सारी बात कह दी है, पूरी बात का निचोड़ बता दिया है। ज्योति जी आपके पास आते हैं, आपसे भी ये सवाल पूछूंगी, अगर पोइट्री नहीं होती तो आप अपने इमोशंस को कहाँ रखती?
0: मेरे लिए एक शायरी एक थेरेपी की तरह है, क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनका इलाज कुछ दिख रहा होता है, लेकिन मेडिकल में हर चीज का इलाज तो नहीं है। तो उसके लिए मैंने काउंसलिंग का अलग से किया कि लोगों को, शायद दुखी जो लोग हैं, डिप्रेस लोग हैं, उनके मैं किसी तरह से हेल्प कर पाऊं। लेकिन जो समाज है, मैंने देखा कि जल्दी से काउंसलर के पास जाना या ये कहना कि हमें दिक्कत है, वो मुश्किल होता है। लेकिन शायरी एक ऐसा फील्ड है कि हर कोई अपनी बात लिख भी देता है, और वो एक थेरेपी की तरह है मेरे लिए। तो ये थेरेपी ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को दे रही हूँ, अगर शायरी हम समाज के मुद्दों पर लिख रहे हैं या दूसरा किसी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को वो थेरेपी दी भी जा रही है, क्योंकि उससे कोई ना कोई मोटिवेट हो रहा है, किसी ना किसी का डिप्रेशन कम हो रहा है, किसी को हम अचानक खुश कर रहे हैं, वही है
4: जी। क्या बढ़िया।

0: आपके क्वेश्चन से मुझे एक और बात याद आई है ज्योति जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी। आजकल कविताओं को, शायरी जो है वो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत पे लिख रहे हैं, लेकिन एक जमाना हुआ करता था जहां मुंशी प्रेमचंद जी जैसे जो कवि रहे हैं समाज को आईना दिखाते थे। तो आपको क्या लगता है आज के वक्त में कविताओं में कितनी रियल सोसाइटी दिख रही है, क्या महसूस करती हैं आप इस बात से?
1: सब लोगों के लिखने का ना एक अपना ढंग होता है
0: जी,
1: और सब के शब्दों का जो जाल वो बुनते हैं वो उनके मन के भावों को उजागर करते हैं
0: जी।
1: मेरा ये मानना है कि जब हम एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, स्पेशली एक लेखक जो है
0: जी,
1: वो समाज को उसका आईना दिखाने का काम तो करता है, लेकिन उसको उसकी कॉपी नहीं बनना
0: जी,
1: उसको समाज को एक बेहतर भविष्य की तरफ, एक बेहतर वर्तमान की तरफ लेकर जाना, ये हमारा फर्ज बन जाता है। और प्यार के ऊपर तो बहुत सदियों से लिखा आ रहा है
0: जी,
1: बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ये बात और है कि मैं नहीं लिख पाई ज्यादा उसके ऊपर
0: जी,
1: मैं भावों की कवित्री हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ भाव के ऊपर लिखती हूँ जिसमें संभव पता नहीं मेरी जिंदगी के जो नौ रस हैं उनमें मैं श्रृंगार के ऊपर ज्यादा नहीं लिख पाई।
0: ओके,
1: तो इसके लिए मैं कई बार कहती भी हूँ, एक गुरुदत्त जी का गाना है कि हम गमजदा हैं लाए कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम
0: जी।
1: तो प्यार पर लिखना मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन ये जरूर है कि हमारा फर्ज है, जब हमने कलम हाथ में उठाई, हम कलम के सिपाही बने हैं, तो हमें सही और गलत इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करके और हर उस टॉपिक पर लिखना चाहिए जो समाज को एक सही राह की तरफ लेकर के
0: जी, और कुछ बदला जा सके
1: जी। बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। अभिनव जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आजकल शायरी बहुत ज्यादा विजिबल हो गई है, रील्स, ओपन माइक्स, तो आपको क्या लगता है, क्या फील करते हैं आप कि आजकल लोग फील कम और परफॉर्म ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा फील होता है आपको?
2: देखिए, अभी आज के जो दौर में एक्चुअली जो शायरी है वो शायरी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि शायरी नहीं हो रही है, हो रही है शायरी
0: जी,
2: बट आम तौर पे चूंकि जो दौर जो चल रहा है लोगों में ना, वो जो शॉर्टकट मेथड को अपना, कि हम मतलब किस तरह से शॉर्टकट वे से कितने जल्दी लोग मतलब फेमस होना, फेम पाना चाहते हैं, तो उस कारण से जो वो उसका जो रंग है वो शायरी पे भी आपको महफिलों में भी दिखेगा, और उससे प्रभावित है काफी शायर, मैं नाम नहीं लूंगा, बट काफी शायरी प्रभावित है उससे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जब आप शायरी करते हैं, जब आप पोएट्री करते हैं, तो आप एक जिम्मेदार, समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं
0: जी।
2: तो समाज में जो गलतियां हो रही हैं, समाज में जो सुधार होना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने कलम को उस तरफ मोड़ें
0: जी,
2: और लोगों को प्रोत्साहित करें, लोगों को इंस्पायर करें
0: जी,
2: ये जरूरी है। और लेकिन जो अधिकांश भाग है इसमें भी, उसमें थोड़ा नुमाइश वाली बात है, इससे मैं बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता
0: जी, फील कम किया जा रहा है जी।

0: अच्छा जी, आपके पास आते हैं जॉनी लिया साहब के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है लोग बहुत ज्यादा जानते भी नहीं होंगे, इनफैक्ट उनके बारे में पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन कुछ एक आध दो उनके शेर पढ़ लिए हैं और उनको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं जॉनी लिया साहब के बारे में बात करूं तो बहुत ऑनेस्ट लिखते थे जॉनी लिया साहब, तो आज के टाइम में क्या उतनी ऑनेस्टी जो है वो पॉसिबल है या फिल्टर आ गए हैं अब पोएट्री में?
1: बात करें तो जहां तक है कि जो शायरी हुई कविताएं हुई, देखो लिखी तो दिल से जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल AI भी आ गया है तो उसका भी बहुत उपयोग हो रहा है। लेकिन जो मैंने अभी तक महसूस किया है, AI वो काम नहीं कर सकता जो दिल करता है।
0: जी जी,
1: है ना, वो भावनाएं नहीं इकट्ठी कर सकता। कई बार मैंने भी कोशिश की कि शायद मैं कुछ कर पाऊं, लेकिन वो भावनाएं, अब मैं जैसे कि ब्रज भाषा का बहुत उपयोग करती हूँ,
0: जी जी जी,
1: तो वो तो कैच ही नहीं कर सकता। हाँ। उसको पता ही नहीं है कि ब्रज क्या है,
0: जी,
1: राधा रानी क्या है,
0: जी,
1: वो ज्यादा से ज्यादा जो थोड़ा बहुत राधा रानी का कृष्ण से कनेक्ट करके वो बोल देंगे, लेकिन वो चीज नहीं बोल पाएंगे जो मुझे चाहिए,
0: जी,
1: क्योंकि वो सिर्फ मेरी भावनाएं हैं, वो मेरे आंखों में आया हुआ पानी है जिसको मैं स्याही की तरह उपयोग करके एक बहुत खूबसूरत सा भजन लिख सकती हूँ, गीत लिख सकती हूँ,
0: जी,
1: कविता लिख सकती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सनली मेरे अपने विचार है कि जो AI है वो कुछ नया ऐसा कर दे। होते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि अब हम वो पकड़ लेते हैं कि ये बनावटी है। भावनाएं भावना होती है, क्योंकि AI भी तो वही रिपीट करता है जो किसी ने लिखा हुआ है,
0: जी,
1: फिर वो अपना ही क्या जो खुद से ना लिखा गया,
0: जी,
1: तो अपना तो वही है जो खुद से लिखा जाए, जो मन के भाव से आए, जो एकदम तारों को झनकृत कर दे, जो लोगों के दिलों तक सीधी पहुंच जाए, तो वो बात मुझे लगता है कि वो बनावटी चीजों से तो नहीं आ सकती। और जो लोग करते हैं बनावटी चीजें, देखो वो पता लग जाता है, बहुत क्लियर पता लगता है, और जो दिल से है वो दिल तक सीधे पहुँचता है।
0: क्या बात है। ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप ओपन माइक भी करती हैं, तो ये पर्सनल सवाल है मेरा आपसे, क्या ज्यादा पसंद है, ओपन माइक की तालियां या अकेले कमरे में बैठी हुई एक सच्ची लाइन?
2: ओपन माइक की तालियां।
0: बट क्यों?
2: एक्चुअली अकेले कमरे में जो हम लिखते हैं तो उसमें हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि हमारा लिखा हुआ एक मतलब जो शायरी है हमारे लिए अपनी औलाद की तरह होती है। कि हर को अपना बच्चा अच्छा लगता है, वैसे ही सबको अपना लिखा हुआ अच्छा लगता है, तो वो हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन वहाँ जो सामने ऑडियंस का रिस्पॉन्स होता है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस हिसाब से लिख रहे हैं, आपको कितने इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसमें से ही कोई ना कोई उस्ताद बैठा होगा तो आपको वो चीज अभी बताएगा, तो आगे बढ़ने के हिसाब से मुझे वो अच्छा लगता है।
0: जी, तो ऐसी कौन सी आपकी रचना थी जिस पर आपको बहुत ज्यादा तालियां मिली हो, वो आज आप हमारे लिसनर्स के सामने यहाँ पर रख सकती हैं?
2: जी बिल्कुल, मैं मतलब रियल लाइफ पर ज्यादा लिखती हूँ और खासकर लड़कियों पर। एक ये मैंने रचना लिखी थी किसी लड़के के ऊपर कि लड़कियों की क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो काफी उन्हें कनेक्ट किया और काफी अच्छी वो गई कि हुस्न की तारीफ करके पहले बहलाया गया, फिर मोहब्बत का यकीन भी हमको दिलवाया गया, और जिसकी खातिर छोड़ दी हमने सभी आसाइशें, उस मोहब्बत के लिए फिर रोज तरसाया गया।
0: क्या बात है।
2: आधुनिक कपड़ों की पहले की गई फरमाइशें, फिर हमें पर्दे में रहना खूब सिखलाया गया। रूह तो जख्मी पड़ी है सुन के उसकी गालियां, जेवरों से यार केवल जिस्म चमकाया
0: क्या
2: गया।
0: क्या बात है।
2: मार भी फटकार भी देखो मिली बेइज्जती, चुटकी भर सिंदूर से क्या क्या ही करवाया गया, किस तरह अपनों से कहते जुल्म की ये दास्तां, अर्थी उठने पर ही आना ये ही समझाया गया।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
2: मानकर जिसको खुदा कर ली इबादत उम्र भर, एक उसी दर से फकत ज्योति को ठुकराया गया।
0: क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। तो अब तो मैं भी मान गई हूँ इस बात को, ओपन माइक की तालियां।

0: जी अभिनव जी आपके पास आते हैं। पहले लिटरेचर जो था बहुत ही स्लो प्रोसेस था, किताबें इंतजार समझ कुछ ऐसी बातें हुआ करती थी, आजकल 30 सेकंड की शायरी में सब कुछ सिमट जाता है। तो क्या आपको लगता है ये जो स्पीड है ये लिटरेचर को कितना आगे ले जा रही है या कितना पीछे ले जा रही है?
1: ये एक्चुअली मैं कोट करना चाहूंगा कैफी आजमी साहब का एक शेर है कि इंसान के ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, दो गज जमी भी चाहिए दो गज कफन के बाद। इंसान मतलब यहाँ तक है कि मरने के बाद भी, वहाँ शहर का एक्चुअली वो कहने का मतलब मकसद ये है कि इंसान की जो तलब है वो इतनी शिद्दत इतनी ज्यादा है कि मतलब मरने के बाद भी जो है कफन से वो मुतमईन नहीं होता, कफन से वो संतुष्ट नहीं होता, उसे जमी भी चाहिए।
0: जी।
1: तो शायरी जो आज हो रही है, दरअसल हम जो फेम पाने के, या जो हम एक फ्रेज कहते हैं ना कि बहुत कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ छूटना, बस समझिए वो हो रहा है कि बहुत कुछ ये फेम पाने के चक्कर में हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। एक्चुअली हम जब पोएट्री लिटरेचर से जब हम जुड़ते हैं
0: जी।
1: तो जुड़कर केवल तालियां बटोरना और जो भी परोस देना, ये पोएट्री है नहीं। आपको अगर पोएट्री जीना है तो लिटरेचर को के नजदीक जाना होगा और लिटरेचर को अपना महबूब बनाना होगा, तब जो है तब उस पे वो रंग चढ़ेगा। और वो जब रंग चढ़ेगा तो फिर वही है कि फिर वो छूटेगा नहीं, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया।
0: जी, कैफी आजमी साहब के बारे में तो आपने बात कर ली है, उनका शेर आपने सुना दिया है। आपकी कोई रचना जो आज आप हमारे लिसनर्स के सामने रखना चाहते हो तो वो जरूर मैं आपसे पूछूंगी।
1: जी, मैं एक गजल अभी काफी लोगों ने सराहा है
0: जी,
1: तो वो गजल उसका कुछ उसका मतलब और चंद अशआर मैं रखता हूँ। देखिए कि मतलब है कि बस यही दुख है कि वो जी से उतर जाएंगे, बस यही दुख है कि वो जी से उतर जाएंगे, वरना ये जख्म तो भर जाते हैं, भर जाएंगे।
0: क्या बात है।
1: हमको खा जाएगी तन्हाई ये धीरे धीरे, आप मजबूत हैं इस गम से उबर जाएंगे। पेड़ के काटने वालों ने ये सोचा ही नहीं, पेड़ के काटने वालों ने ये सोचा ही नहीं, घर से बेघर हुए ये लोग किधर जाएंगे।
0: क्या बात है।
1: और इसका ये जो शेर बड़ा वायरल हुआ था कि हम कोई तिफल नहीं आप कोई तोप नहीं, हम कोई तिफल नहीं आप कोई तोप नहीं, आप क्या सोचते हैं आपसे डर जाएंगे।
0: क्या बात है।
1: शहर आए थे यही सोच के जब आए थे, हम लोग सब गांव से एक ख्वाब लेकर आते हैं शहर, उसके बाद दिक्कतें ये होती है कि हम फिर शहर के हो जाते हैं, चाहे वो मजबूरी हो या फिर और।
0: जी।
1: उस पर मैंने शेर कहा था कि शहर आए थे यही सोच के जब आए थे, हम अगर नाम कमा लेंगे तो घर जाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: इस गजल का जो मेरा पसंदीदा शेर है वो ये है कि इनको मर जाने दो ये लोग अभी जिंदा हैं, इनको मर जाने दो ये लोग अभी जिंदा हैं, और जिंदा रहे ये लोग तो मर जाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत।

0: ज्योति जी आपके पास हम आते हैं। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ बहुत पर्सनल कुछ लिखा हो और जब शेयर करने की बारी आई हो तो रुक गए हो? बेसिकली मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ये चीज कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या अपने पास रखना है बचाकर और क्या दुनिया तक पहुँचाना है।
1: ये पर्सनल चॉइस के ऊपर साथ साथ, जैसा कि अभी हमने बात की सामाजिक जिम्मेदारी, जैसे जब मेरे बच्चे टीनेज में थे तो उस वक्त मैंने उनको बहुत कुछ समझाया दुनियादारी के बारे में कि ये सही है ये गलत है।
0: जी जी।
1: उसके बाद जब वो घर से निकले हैं और उनके सामने जमीन पर कूड़े का ढेर पड़ा है
0: जी,
1: तो अब ये उनको डिसाइड करना है कि उसके साइड से निकल कर जाना है या उसमें पैर मारते हुए जाना
0: जी।
1: है। तो इसी तरह जब लिख रहे होते हैं हम लोग, कई बार भाव भावातिरेक हो जाता है, आप कुछ अपने मन के बहुत दुखी या कुछ इस तरह की चीजें आप लिख जाते हैं या कुछ कड़वा भी लिख जाते हैं, लेकिन वो कुछ क्षण का आवेग होता है। और थैंक्स टू सोशल मीडिया कि अब वो ऑप्शन भी आ गया है कि आप डिलीट कर सकते हैं या आप एडिट कर सकते हैं।
0: जी जी जी।
1: तो टचवुड आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कुछ ऐसा पोस्ट किया
0: जी।
1: तो कहीं ना कहीं शायद मैं अपने दिमाग की ज्यादा सुन लेती हूँ पोस्ट करते हुए।
0: जी, क्या
1: लिखते
0: बात है?
1: हुए दिल की सुन के।
0: तो जो लिखते हुए दिल की सुनी है आपने, तो आज भी हम आपके दिल की ही सुनना चाहेंगे कोई आपकी रचना जो आज पहुँचाना चाहे हमारे लिसनर्स तक।
1: बहुत कुछ है, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया था तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मेरी माँ का अचानक चले जाना था
0: जी।
1: तो उन्हीं को समर्पित एक छोटी सी रचना
0: जी।
1: स्वागत है। कि हर बात की शिकायत लेकर दौड़ कर आती थी तुम्हारे पास, हर बात की शिकायत लेकर दौड़ कर आती थी तुम्हारे पास, और मेरी हर उलझन का जवाब हंस कर दे देती थी तुम। तुम्हारे होते जाना ही नहीं क्या है दुनियादारी, तुम्हारे होते जाना ही नहीं क्या है दुनियादारी, कैसे निभाने हैं रिश्ते और किस तरह बांधना है मन को। बस बच्चों की तरह लिपट जाती थी तुमसे लड़कर, तुम्हारी ही शिकायत करती थी तुमसे, और तुम मुस्कुराकर रख देती थी हाथ अपना मेरे सर पे। उस छांव में बच्ची ही बनी रही और एक दिन अचानक तुम कर गई बड़ा मुझको। यूं चल दी मुंह मोड़कर और ये भी ना सोचा कि किसको सुनाऊंगी अब मन अपना, कौन सुलझाएगा मेरे मन की गांठें और किसके आंचल में मिलेगी छांव मुझे। बस चली गई तुम मेरा बचपन लेकर और मैं बड़ी हो गई।
0: क्या बात है,
2: बहुत सुंदर।
1: बेटी से अचानक बस माँ बनकर रह गई, और देखो माँ आज मैं 15 साल की हो गई।
0: क्या बात, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत हार्ट टचिंग है जो आपने अपनी मदर के लिए लिखा है और आज हमारे लिसनर्स तक पहुँचाया है।

0: शहर में।
1: जी अभिनव जी आपके पास आते हैं। पहले लिटरेचर जो था बहुत ही स्लो प्रोसेस था, किताबें इंतजार समझ कुछ ऐसी बातें हुआ करती थी। आजकल 30 सेकंड की शायरी में सब कुछ सिमट जाता है, तो क्या आपको लगता है ये जो स्पीड है ये लिटरेचर को कितना आगे ले जा रही है या कितना पीछे ले जा रही है?
2: ये एक्चुअली मैं कोट करना चाहूंगा कैफी आजमी साहब का एक शेर है कि इंसान के ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, दो गज जमी भी चाहिए दो गज कफन के बाद। इंसान मतलब यहाँ तक है कि मरने के बाद भी, वहाँ शायर का एक्चुअली वो कहने का मतलब मकसद ये है कि इंसान की जो तलब है वो इतनी शिद्दत इतनी ज्यादा है कि मतलब मरने के बाद भी जो है कफन से वो मुतमईन नहीं होता, कफन से वो संतुष्ट नहीं होता, उसे जमी भी चाहिए।
1: जी।
2: तो शायरी जो आज हो रही है, दरअसल हम जो फेम पाने के या जो हम एक फ्रेज कहते हैं ना कि बहुत कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ छूटना, बस समझिए वो हो रहा है कि बहुत कुछ ये फेम पाने के चक्कर में हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। एक्चुअली हम जब पोएट्री लिटरेचर से जब हम जुड़ते हैं
1: जी।
2: तो जुड़कर केवल तालियां बटोरना और जो भी परोस देना ये पोएट्री है नहीं। आपको अगर पोएट्री जीना है तो लिटरेचर को के नजदीक जाना होगा और लिटरेचर को अपना महबूब बनाना होगा, तब जो है तब उस पे वो रंग चढ़ेगा और वो जब रंग चढ़ेगा तो फिर वही है कि फिर वो छूटेगा नहीं, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया।
1: जी कैफी आजमी साहब के बारे में तो आपने बात कर ली है, उनका शेर आपने सुना दिया है। आपकी कोई रचना जो आज आप हमारे लिसनर्स के सामने रखना चाहते हो तो वो जरूर मैं आपसे पूछूंगी।
2: जी मैं एक गजल, अभी काफी लोगों ने सराहा है
1: जी,
2: तो वो गजल उसका कुछ उसका मतलब और चंद अशआर मैं रखता हूँ। देखिए कि मतलब है कि बस यही दुख है कि वो जी से उतर जाएंगे, बस यही दुख है कि वो जी से उतर जाएंगे, वरना ये जख्म तो भर जाते हैं, भर जाएंगे।
1: क्या बात है।
2: हमको खा जाएगी तन्हाई ये धीरे धीरे, आप मजबूत हैं इस गम से उबर जाएंगे। पेड़ के काटने वालों ने ये सोचा ही नहीं, पेड़ के काटने वालों ने ये सोचा ही नहीं, घर से बेघर हुए ये लोग किधर जाएंगे।
1: क्या बात है।
2: और इसका ये जो शेर बड़ा वायरल हुआ था है कि हम कोई तिफल नहीं आप कोई तोप नहीं, हम कोई तिफल नहीं आप कोई तोप नहीं, आप क्या सोचते हैं आपसे डर जाएंगे।
1: क्या बात है।
2: शहर आए थे यही सोच के जब आए थे, हम लोग सब गांव से एक ख्वाब लेकर आते हैं शहर, उसके बाद दिक्कतें ये होती है कि हम फिर शहर के हो जाते हैं, चाहे वो मजबूरी हो या फिर और।
1: जी।
2: उस पर मैंने शेर कहा था कि शहर आए थे यही सोच के जब आए थे, हम अगर नाम कमा लेंगे तो घर जाएंगे।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
2: इस गजल का जो मेरा पसंदीदा शेर है वो ये है कि इनको मर जाने दो ये लोग अभी जिंदा हैं, इनको मर जाने दो ये लोग अभी जिंदा हैं, और जिंदा रहे ये लोग तो मर जाएंगे।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत।

0: ईशा जी आपसे एक सवाल है। सवाल ये है, आजकल शायरी और कंटेंट के बीच की जो लाइन है वो एकदम ब्लर हो गई है। हर जो शायरी होती है वो वायरल हो ही जाती है, बिकॉज जैसे पहले भी बात हुई है कि फेम के चक्कर में भी बहुत लोग लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आजकल बहुत सारा कंटेंट जो है वो सिर्फ एल्गोरिदम के लिए लिखा जा रहा है?
1: देखिए, इसमें सबके अपने अपने विचार होते होंगे, वैसे मोस्टली यही सुनने में आता है। लेकिन अगर मेरी बात करें तो मेरे साथ में थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि एल्गोरिदम को ठीक करो, ये है वो है, लेकिन मैं टिकी रही कि नहीं, जो मेरा मन कर रहा है, जो मेरे मन में चल रहा है, जो मेरे जीवन में चल रहा है, मैं अपने हिसाब से करूंगी, मुझे एल्गोरिदम की जरूरत नहीं है। और टचवुड, मेरे काफी अच्छे फॉलोवर्स भी हैं, अगर आप चेक करेंगे।
0: क्या बात है।
1: और मुझे नहीं लगता कि एल्गोरिदम से, देखो बहुत ही ज्यादा अगर आप बिल्कुल ऐसे चलें कि तरीके से चलें तो वही वाली बात है कि वो भी फेमस हो रहे हैं और हम भी फेमस हो रहे हैं। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं थोड़ा कम ट्रस्ट करती हूँ इस चीज पे, और मुझे मेरे जैसे रहना बहुत पसंद है क्योंकि मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, तो शायद मैं काफी रूल्स को पीछे भी छोड़ देती हूँ। और मेरा मैसेज सीधा सीधा लोगों को यही जाता है कि जो आपका मन करे ना आप वो करें। और अगर टेक्निकली आप बात कर रहे हो तो ये चीज भी बहुत सारी जगह पे होती है, और एक कहते हैं ना कि कमाई का एक जरिया भी है उन लोगों के लिए, तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो ये एल्गोरिदम का जो शोर है ये बस मचाया जा रहा है। फेमस होना भी थोड़ा सा, देखो लक की भी बात होती है और आपके अंदर क्या टैलेंट है उसकी भी बात होती है। और हालांकि देखने में ये भी मिलता है कि कोई कुछ भी कर रहा है और वो फेमस हुए जा रहा है, बट वो भी तो देखिए ना, अचानक से ही हुआ है, उन्होंने कौन सा एल्गोरिदम का फॉलो किया होगा। तो ऐसा तो मैं नहीं सोचती पर्सनली, ये मेरे अपने विचार है।
0: कोई आपकी रचना जो आज आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहें, और आपने खुद भी बताया कि आप ब्रिज भाषा में लिखती हैं, तो उसमें भी तो हम जरूर सुनेंगे आपसे।
1: बिल्कुल, देखिए मैं बरसाने की बहू के नाम से जानी जाती हूं।
0: अरे वाह,
1: अब नए इस मंच पे आई हूँ तो मैं अपना परिचय इसी तरह से देना चाहूंगी कि

0: तो ये तो मेरा कहते हैं ब्रज वाला मैंने आपको बताया
1: जी।
0: और इसके अलावा देखिए अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैंने आपको बताया मैं एल्गोरिदम का यूज नहीं करती मैं अपनी शर्तों पे चलती हूँ। तो वहीं से मैंने कुछ लिखा है कि धीरे धीरे सही

अपने मन की हुई। मैंने खुद को संभाला था सबके लिए, मैंने खुद को संभाला था सबके लिए, अब संभल के संभाला।

रखे हुए, ये जरूरी नहीं मुझको चाहे सभी, ये जरूरी नहीं मुझको चाहे।

हूँ इश्क खुद से करो कि मैं हूँ ईशा कहूँ इश्क खुद से करो इश्क की।

0: रे सही अपने मन की हुई।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और जो आपने गाया है वो बहुत कमाल है, सीरियसली। आप पे जाते हैं, मुझे लगता है टैगलाइन मैं अपनी फेवरेट हूँ।
0: अरे आपको ये बड़ी अच्छी आपने बात बोली
1: जी।
0: ये मैं हमेशा से ही बोलती आ रही हूँ। और जब वो मूवी आई थी जब वी मेट करीना कपूर, और जब उन्होंने ये यूज किया, आप बिलीव नहीं करेंगे उसका यूज मैंने कहाँ किया। उसका यूज मैंने फिलहाल व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो थर्ड एपिसोड है अक्षय कुमार के साथ,
1: जी,
0: तो करीना कपूर की मैंने अक्षय कुमार से शिकायत की है।
1: ओके।
0: मेरी जो ये फेवरेट लाइन है वो करीना जी ने चुराया है, तो कृपया करके आप उनसे बोले कि मेरी लाइन का जो आपने उपयोग किया है उसका कुछ मुझे मिल जाए। तो व्हील ऑफ अक्षय कुमार के साथ
1: जी जी।
0: जो मेरा,
1: अरे वाह,
0: मैंने इसका उपयोग,
1: क्या बात है।
0: तो ये बिल्कुल सही है, ये मेरी ही टैगलाइन है।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।

0: अब हम क्लोजिंग पर आ चुके हैं अपने प्रोग्राम की, क्योंकि समय सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जाते जाते एक सवाल फिर सबसे है, ये सवाल, अगर आपको एक लाइन में बताना हो आपके लिए पोइट्री क्या है तो वो क्या होगा, और इसी के साथ साथ आपकी कोई एक और खूबसूरत रचना जो हम फिर से सुनेंगे, हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएंगे। ज्योति जी, आपसे हम
1: शायरी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया तो मैं थेरेपी अभी भी यही बोल रही हूं कि शायरी मेरे लिए थेरेपी।
0: जी जी जी।
1: यूं कदमों में अपने झुकाना है मुश्किल, इशारों पे मुझको नचाना है मुश्किल, तुम्हें मेरे रास्ते से हटना पड़ेगा, मुझे रास्ते से हटाना है मुश्किल, बनानी पड़ेगी मुझे फिल्म पूरी, गजल में तो सब कुछ बताना है मुश्किल, मोहब्बत से बेशक हरा दो मुझे तुम, अना से तो मुझको हराना है मुश्किल।
0: बहुत बढ़िया।
1: मयस्सर है दौलत से सब कुछ जहां में, मगर यार ज्योति को पाना है मुश्किल। एक शेर और मैं सुनाना
0: चाहूंगी। बिल्कुल
1: बिल्कुल। मैं सब कहते हैं कि मैं खेलों पर लिखती हूँ, लेकिन मैं जिंदगी पर लिखती हूँ, जिंदगी भी खेल से कुछ ज्यादा कम नहीं है। तो ये अच्छा मेरा शेर काफी वायरल हुआ है कि पल में बुलंदी से गिरा डाला मुझे, बर्बादियों ने इस कदर चाहा मुझे, मैं जीतने वाली थी खेले जिंदगी, 99 पे सांप ने काटा।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ज्योति जी जब यहाँ पर आई थी तो सबसे पहले आते मुझसे बोला था कि मैं आज पहली बार इंटरव्यू कर रही हूँ तो थोड़ा सा आप मुझे गाइड कीजिएगा, लेकिन वो छुपा रुस्तम जो शब्द सुना है ना, बिल्कुल ठीक बैठता है आप पर, एकदम फिट। अभिनव जी, आपसे भी सवाल यही है, कविता क्या है आपके लिए?
2: अगर मैं जिस्म हूँ तो कविता मेरे लिए सांस है।
0: जी, और कोई आपकी रचना जो फिर से आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहें, कोई एक और खूबसूरत रचना?
2: एक गजल।
0: बिल्कुल
2: आपके।
0: जी।
2: इस बार जो फल फूल शजर पर नहीं आए, इस वास्ते घर में मेरे पत्थर नहीं आए, जो डूबने उतरे उन्हें दरिया ने उछाला, तैराक थे जो बन रहे बाहर नहीं आए।
0: क्या बात है।
2: आते जो अगर दौड़ में अव्वल ही तो आते, गिरते हुए को छोड़ के हम पर नहीं आए।
0: क्या बात है।
2: वरना तो उबर ही गए होते तेरे गम से, हम तुझ में मुकम्मल तुझे रख कर नहीं आए।
3: क्या?
2: कुछ देर में बस खेल के आते हैं जरा माँ। ये जो किडनैपिंग बच्चों वाली जो है उस पर एक शेर से हुआ
0: जी।
2: वो देखिए आप। कुछ देर में बस खेल के आते हैं जरा माँ, निकले तो थे बच्चे यही कहकर नहीं आए। और जो आज का दौर है, जो फैशन का दौर चल रहा है, वहाँ बच्चे थोड़ा अपने संस्कार से भी अलग हो रहे हैं
0: जी।
2: उस पे एक शेर आप कनेक्ट कर पाएंगे, देखिए कि निकले हैं फलक छूने को बच्चे तो ये घर से, निकले हैं फलक छूने को बच्चे तो ये घर से, माँ बाप के पर पांव भी छूकर नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ज्योति जी, आपसे भी सवाल है, पोएट्री क्या है आपके लिए?
3: पोएट्री के लिए मैंने पहले चार लाइनें जो बोली थी उसी को आगे लेकर चलती हूँ कि कविता से मिलती है मेरे मौन को सुबह, और कविता देती है मेरे निस्पंद हृदय को प्राण, और मुझे जीने का एहसास कराती है कविता, मेरे हर पल को खास बनाती है कविता, मेरे शब्द मेरे आंसू मेरी मुस्कान की बहती है जब भाव सरिता, तब अंतस में कहीं जन्म लेती है कविता।
0: क्या बात है।
3: और जहाँ सांसें बोझिल और पाँव में थकन होती है, वहाँ शब्द करते हैं नर्तन और एक कविता जन्म लेती है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। ये तो थी कविता की बात जो आपने कंप्लीट की, लेकिन एक और कोई रचना जो आपके दिल के करीब हो वो आप यहाँ?
3: दिल के करीब बहुत है, लेकिन मेरी एक गजल काफी फेमस हुई थी।
0: बिल्कुल।
3: थोड़ा सा उसी
0: जी जी जी।

0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: जिंदगानी को कभी मेरी सवारा होता।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।

0: ईशा जी आपके पास आते हैं, आपके लिए कविता क्या है और कोई एक और खूबसूरत आपकी रचना जो आप हमें यहाँ सुनाना चाहते हो?
1: बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला है कि जो मेरी टैगलाइन है मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, मैं ही कविता हूँ। या तो कोई मुझ पे लिख देगा, तो
0: किसी पे लिख क्या बात है
1: तो बहुत खूबसूरत। मैं तो यही मानती हूँ कि जो मैं हूँ वो ही मैं लिख रही हूँ, या फिर अगर कोई और लिखेगा तो अगर मेरे लिए तो वो भी मेरे लिए कविता है, वही गजल है, वही मेरे लिए शायरी है।
0: जी,
1: तो मैं भी पहले यही सोच रही हूँ कि एक छोटा सा शेर बोल के और फिर उसके बाद मैं अपनी रचना बोलूंगी। आपके बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया तो कि गजल लिखना नहीं आया, गीत लिखना नहीं आया, गजल लिखना नहीं आया, गीत लिखना नहीं आया, मगर जो भी लिखा मैंने वहाँ खुद को बहुत पाया।
0: क्या बात है,
1: मगर जो भी लिखा मैंने वहाँ खुद को बहुत पाया।
0: बहुत बढ़िया।
1: और आप जैसे कह रही हैं कि अपनी रचना, और आपने जैसे ब्रज की बोला था कि आप सुनोगे, तो मैं आपको वही सुना
0: देती हूं। जी,
1: मेरी राधा रानी के चरणों में समर्पित। और रात के 1:30 बजे ये कविता, ये सवेरा लिखा गया था और मैं फपक फपक के रोई थी। तो राधा रानी के चरणों में समर्पित, और ये भाव आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि

0: कत आई तुम्हारी शरण में,
1: बहुत खूबसूरत,
0: भाग चमकत आई तुम्हारी शरण में,
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
2: राधा रानी की जय।
1: थैंक यू। ये जो समा बांधा है आपने, बहुत अच्छा लगा, और आप सबसे बातें करके, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा।
3: मैं वही कहना चाह रहा था कि हम सबको भी आपसे बात करके बढ़िया महसूस हुआ, जी शाद हो गया।
4: प्रश्न जो है वो सच में बहुत ही सही प्रश्न थे, जिनके उत्तर बहुत लोग भी जानना चाहते हैं, और आज आपने हमारे अपने अपने विचारों के हिसाब से आपने उनके उत्तर हमसे लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके।
1: थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैंने ऐसे सवाल किया है, कविता क्या है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत लिखती हूँ। मैं अपने आप को ये कहूंगी कि मैं पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना पसंद है। तो मैंने लिखा था, कह दूं तुझसे सदियों की कहानी या चंद लम्हों का इंतजार लिखूं, ए कोरे कागज तू ही बता आज क्या खास लिखा। तो ऐसे ही मैं पन्नों से बात कर लिया करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इतनी सारी बातें लिसनर्स तक पहुँचाई। कहते हैं कि वक्त बदलता है, प्लेटफॉर्म बदलते हैं, लेकिन जो सच्चा होता है वो हमेशा कनेक्ट करता है। आप सुन रहे थे आज दिल शायराना, मैं आपकी होस्ट गीत आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, और अब आपसे इजाजत चाहूंगी। आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए। देखो

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: भी काफी।
1: अब अगर कोई इतने प्यार से पुकारे तो कोई दूर कैसे रह सकता है। तो लो जी, आपने दिल से पुकारा और हम हो गए हाजिर। हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके और मैं हूँ आप सभी की
2: रेट्रो वाली सपना, रेट्रो वाली सपना।
1: और मैं ले आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप, मैं और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। वैसे इतना खूबसूरत गाना था कि आना तो मेरा बनता ही था, लेकिन इस बार जो मैं आई हूँ ना तो बहुत जोश से आई हूँ, क्योंकि ऐसे जोशीले गाने आपके अंदर जो एनर्जी और जो पॉजिटिव वाइब भर देते हैं, बस वही तो चाहिए, उसी की तो कमी है। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार की जिन्होंने मराठी परिवार में जन्म तो लिया लेकिन पढ़ाई के लिए पहुंच गए पुणे, लेकिन यहाँ आकर रंगमंच का इनके ऊपर कुछ ऐसा रंग चढ़ा कि इन्हें एक्टिंग का भूत सवार हो गया और उसके बाद तो इन्होंने ठान ही लिया कि भाई साहब हम तो बड़े मंच पर आकर रहेंगे। बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और फाइनली इन्होंने अपने टैलेंट का जलवा बड़े स्क्रीन पर दिखा ही दिया। किसकी बात कर रही हूँ और कैसी हुई इनकी एंट्री बॉलीवुड में, बॉलीवुड तक पहुँचने के लिए कितनी स्ट्रगल इन्हें करनी पड़ी और बॉलीवुड में आने के बाद कितनी स्ट्रगल इन्हें करनी पड़ी, इन सब पर आज बात करेंगे। पर ये जो पॉजिटिव वाइब मेरे आने से पहले बनी हुई थी, इसी पॉजिटिव वाइब को थोड़ा सा और इंजॉय कर लेते हैं इन खूब

0: जा रहा हूँ। सवाल है पानी की एक बूंद भी दिखी हो। चल मिठू, बस थोड़ी देर और।
1: गाय हमारी माता है तो बोलते हैं, तो फिर इस मम्मी को पानी भी तो पिला ही सकते हैं। उफ, देख क्यों नहीं रहा ये पानी।
2: ओ नो, ये प्लेट में तो पानी ही नहीं है। अले, दूसरा भी खाली है। बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूँ।
3: गर्मी सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि उन बेजुबानों को भी सताती है जो बिन घर और खाने के रोज भटकते हैं। तो ये समझते हुए क्या आप उनके लिए थोड़ा सा पानी रखेंगे? सड़क किनारे, बालकनी, छत या घर के बाहर, जगह नहीं इंटेंशन ढूंढो। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से और मरते हैं शान से। खैर, अब तो ये बहुत ही पुरानी और पिछड़ी हुई बातें लगने लगी हैं, क्योंकि आजकल अगर इस गाने को लिखा जाता तो कुछ ऐसा लिखा जाता, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, सुबह से शाम तक। क्योंकि ये जो प्यार का कॉन्सेप्ट है, आजकल की जनरेशन को थोड़ा सा कम समझ में आता है। बुखार की तरह ये प्यार होता है और एक गोली के अंदर जाते ही, यानी कि एक लड़ाई के होते ही, ये प्यार खत्म भी हो जाता है। फिलहाल चलिए इस प्यार को थोड़ा सा साइड करते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे कलाकार का, जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मराठी थिएटर आर्टिस्ट एंड टीवी

और जब तक इनकी पढ़ाई पूरी होती और ये बंधते शादी के बंधन में, इन्होंने अराउंड 60-62 थिएटर ड्रामास ऑलरेडी कर लिए थे। पर जैसे कि उस वक्त की मिडिल क्लास फैमिली की मेंटेलिटी हुआ करती थी, जैसे ही बच्चे की पढ़ाई पूरी हुई इमीडिएटली उसको जॉब मिल जाती थी और साथ ही उसकी शादी कर दी जाती थी। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही इन्हें एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिली, जो कि ये नहीं चाहते थे करना, पर फैमिली प्रेशर में इन्हें इस जॉब को एक्सेप्ट करना पड़ा, वैसे ही इनकी शादी भी कर दी गई। पर वो कहते हैं ना कि एक एक्टर अगर अंदर बैठा हो तो वो आपको बैठने दे ही नहीं सकता, वो तो आपको भगाता है। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। और जब इन्हें ये रियलाइज हुआ कि इन्हें कंपनी में क्लर्क की नौकरी नहीं करनी, ऐसी बंधी हुई लाइफ इन्हें एक्सेप्टेबल नहीं थी, उसी वक्त इन्होंने रिजाइन किया और उस नौकरी से बाहर आ गए। पर नौकरी छोड़ते ही घर में तो जंग छिड़ गई, क्योंकि अब पेरेंट्स को लगने लगा था कि ये बच्चा क्या करेगा। एक तो शादी हो गई है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार की आ चुकी है, अब ये अपना ही गुजारा नहीं कर पाएगा तो अपने परिवार को कैसे पालेगा। उसके बाद इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके लिए काफी हिम्मत की जरूरत थी। वो कौन सा कदम था ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल एंजॉय कीजिए देवानंद और मुमताज जी पर पिक्चराइज एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: मम्मा मम्मा आपको गर्मी लगती है क्या?
1: बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुबह से 3 बार नहा चुकी हूँ फिर भी वही हाल है मेरा।
0: तो फिर मम्मा बाहर जो डॉगी है और जो छत पे जो बर्ड्स आते हैं उन्हें भी तो लगती होगी ना मम्मा?
1: शायद मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे?
0: मम्मा जब आप इतनी गर्मी से परेशान हो तो सोचो वो बेजुबान तो बता भी नहीं पाते, उन्हें कितनी गर्मी से दिक्कत होती है, तो मम्मा हम उनके लिए पानी तो रख सकते हैं ना?
2: कभी कभी इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात हमें किसी किताब से नहीं एक छोटे बच्चे की मासूमियत से सीखने को मिलती है। इस तपती गर्मी में एक छोटा सा बोल पानी का किसी बेजुबान की प्यास ही नहीं उसकी जान भी बचा सकता है। तो इस गर्मी घर के बाहर जानवरों के लिए और बेल्कनी या टेरिस में बर्ड्स के लिए थोड़ा सा पानी जरूर रखिए।
3: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं रात बाकी बाद बाकी विद सपना।

चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। वैसे तैयार हैं तभी तो इस चांदनी रात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6। सपना हूँ मैं आपके साथ। और आज रात बाकी बात बाकी में हम मोहन जोशी जी की बात कर रहे थे, पर इससे पहले कि मैं उनकी और बात करूँ बता दूँ मैं आपको कि ये जो गाना अभी आप एंजॉय कर रहे थे इसे राजकुमार साहब और मीना कुमारी जी पर पिक्चराइज किया गया था। एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म का ये गीत है जिसका नाम है पाकीज़ा। तो इसी पाकीज़ा के साथ वापस चलते हैं हमारे आज के स्टार की ओर जो कि हैं मोहन जोशी जी। और ये जोशी जी जिन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की और इसी के साथ इन्हें एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही इनकी शादी भी कर दी गई, लेकिन जब इन्हें लगा कि नहीं बाबा मैं तो एक 9 to 5 की जॉब में फंस कर अपने अंदर के आर्टिस्ट को मार रहा हूँ, तो इन्होंने तुरंत रिजाइन किया और वापस चले गए अपने थिएटर की ओर। अब पेरेंट्स थोड़े से नाराज होने लगे थे इनसे क्योंकि उनके लिए तो बेटा सेटल हो चुका था लेकिन वो तो अपनी जॉब छोड़कर घर आ गया। ऑफ कोर्स टेंशन तो किसी को भी होती है, इनके पेरेंट्स को भी हुई, पर इन्हें कॉन्फिडेंस था कि ये थिएटर से इतना तो कमा ही लेंगे कि अपना परिवार चला लें। पर पेरेंट्स को कौन समझाए बाबा, उन्होंने इनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया और इसी प्रेशर का ये नतीजा था कि इन्होंने अपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टार्ट की। एक ट्रक से इन्होंने स्टार्ट किया और टू बिगिन विद इन्होंने ड्राइवरी भी की। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया इन्होंने अपनी कंपनी में ट्रक और ड्राइवर्स दोनों बढ़ा दिए। पर 8 साल बाद एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ इनके ट्रक से जिसने इन्हें बुरी तरह से हिला दिया एंड ही वेंट इनटू डीप डिप्रेशन। और इसी डिप्रेशन के चलते इन्होंने अपनी उस कंपनी को भी बंद कर दिया। पर वो कहते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाजा आपके लिए खोल देता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जोशी जी ने अपनी कंपनी तो बंद कर दी लेकिन तभी इन्हें एक मराठी थिएटर के लिए इन्विटेशन आया। ये बात बहुत ही शॉकिंग थी इनके लिए क्योंकि ये पिछले 8 सालों से जब से अपना बिजनेस कर रहे थे तब से इन्होंने थिएटर की ओर मुड़कर भी नहीं देखा था। पर फिर भी इन्हें एक ड्रामा थैंक यू मिस्टर ग्लार के लिए इनविटेशन आया जिसे ज्वाइन करने के लिए ये तुरंत पहुंच गए मुंबई। पर यहाँ पर तो कुछ बड़ा इनका इंतजार कर रहा था। इसी थिएटर को करते करते इन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसने मराठी फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे इनके लिए खोल दिए जो कि सिर्फ एक चाबी थी बॉलीवुड की। कौन सी थी ये फिल्म, कैसे मिली इन्हें ये फिल्म और किस तरह से इनकी एंट्री हुई बॉलीवुड में, ये सारी बातें करते रहेंगे। पर इतनी जल्दी नहीं क्योंकि रात हसीन है और इसी हसीन रात को एंजॉय करते हैं कुछ हसीन गानों के साथ।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
3: अगर वो बोल सकते तो शायद कहते थोड़ा पानी मिलेगा, मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

अब जैसा कि कहते हैं कि मुंबई तो सपनों की नगरी है और यहाँ आकर हर किसी के सपने पूरे हो जाते, और ऐसे ही सपनों की एक पोटली लेकर मोहन जोशी जी भी मुंबई आ चुके थे। थिएटर में अपने किरदार को निभाने के साथ साथ इन्होंने कई अलग अलग फिल्मों के लिए ऑडिशंस देना भी स्टार्ट कर दिया था। तभी इनकी एक बार फिर से मुलाकात हुई अपने कॉलेज फ्रेंड रवि से, जिनके फादर साहब मराठी फिल्मों के डायरेक्टर थे, जिन्होंने इन्हें ऑफर किया अपनी अपकमिंग फिल्म एक दाव भुताचा में विलन का किरदार। पर जैसे ही ये वहाँ शूटिंग सेट पर पहुंचे, इनका मेकअप हुआ, सब कुछ डन हो गया, तो इनके शौक के लिए इन्हें एक न्यूज मिली कि इनका किरदार ऑन द स्पॉट छोटा कर दिया गया है और अब ये विलन का किरदार नहीं निभा रहे थे बल्कि एक बहुत ही छोटा सा रोल प्ले कर रहे थे। तो इन्होंने बहुत ही बुझे मन से उस रोल को भी निभाया, अच्छे से निभाया, और इसी के साथ साथ ऑडिशंस भी इनके चल रहे थे। और इसी साल 1983 में डीडी नेशनल पर श्वेतांबरा नाम का एक टीवी सीरियल भी इन्हें मिल चुका था, और साथ ही इन्हें कुछ और टीवी सीरियल्स में भी काम करने का मौका मिला, जिसमें हद, संघर्ष और डिटेक्टिव धनंजय का नाम शामिल है। ये हिंदी सीरियल्स थे जिनकी शूटिंग के दौरान इन पर नजर पड़ी एक बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर की, जिन्हें इनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई, और तुरंत ही उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म भूकंप में एक छोटा सा रोल इन्हें ऑफर किया। पर जैसे ही ये पहुंचे शूटिंग सेट पर, इनके साथ कुछ पहले एक्सपीरियंस से बिल्कुल उल्टा हुआ, जहां एक दाव भुताचा में इनके बड़े किरदार को काट कर बिल्कुल छोटा सा कर दिया गया, वहीं बिल्कुल ऑपोजिट भूकंप फिल्म में इनके छोटे से किरदार को बढ़ाकर मेन विलन का किरदार कर दिया गया, और इन्होंने खुश होकर उस किरदार को इतनी बखूबी निभाया कि उसके बाद तो इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब तक ये फिल्म रिलीज होती, इनके पास 5-6 बड़ी फिल्में भी आ चुकी थी, और अब ये टीवी सीरियल्स के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी पहुंच चुके थे। और ये ऐसे पहले एक्टर नहीं थे, SRK, सुशांत, विद्या बालन, इरफान खान और ना जाने कितने ऐसे स्टार्स का नाम शामिल है जिन्होंने छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत की, और उसके बाद जब वो बड़े पर्दे पर आए तो वहां पर भी लोगों ने उन्हें भर भर के प्यार दिया। इससे पहले कि मैं आगे इनकी फिल्मों की बात करूं, फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। आप एंजॉय कीजिए इन ट्रैक्स को, वापस आकर जोशी साहब की बातें जारी रखेंगे।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: आज मेरे पास पसीना है, डिहाइड्रेशन है, हीट वेव्स है, तुम्हारे पास क्या है?
1: मेरे पास नींबू पानी है।
2: बात करो।

0: और इसी खूबसूरत गीत के साथ आप सभी का स्वागत है ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, और मैं हूँ आप सभी की
1: रेट्रो वाली सपना।
0: और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपना फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, जिसमें आज हम बातें कर रहे हैं मोहन जोशी साहब की, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में तो कदम रख लिया और एक के बाद एक इन्हें फिल्में भी मिलने लगी। पर उस वक्त के जो विलन्स थे वो फिल्म इंडस्ट्री में इतनी मजबूत पकड़ बनाए बैठे थे कि उनके सामने मोहन जी का टिकना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। अब अगर मैं उस टाइम के विलन्स की बात करूं तो इतनी लंबी लिस्ट हम सबके सामने थी, जिसमें गुलशन ग्रोवर, सदाशिव, अमरीश पुरी, ओम पुरी, परेश रावल, शक्ति कपूर, डैनी एंड सो ऑन। और इन सभी धुरंधरों के बीच में अपनी जगह बनाना मोहन जोशी के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो था, पर इनकी बेसी वॉइस और इनकी अपीयरेंस ने बड़े पर्दे पर हर किसी को इम्प्रेस करना शुरू कर दिया था। 1994 में आई फिल्म ऐलान में इन्होंने बाबा का कैरेक्टर प्ले किया था।
2: गांधी जी चले गए, इन चेलों को छोड़ गए, लेकिन इन चेलों को पता नहीं है कि इस आजाद भारत पर गुंडों का राज चलता है।
0: ये बाबा एक माफिया डॉन था और इसी कैरेक्टर से इन्होंने लोगों को बता दिया कि भाई इतनी लंबी लिस्ट जो विलन्स की है उस लिस्ट में एक नंबर मेरा भी हो सकता है। और सून आफ्टर दिस फिल्म इनकी एक और बड़ी फिल्म आई जिसका नाम था मृत्युदंड, और ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में इनका तिरुपत सिंह का कैरेक्टर सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया, तभी तो इन्हें बेस्ट विलन अवार्ड से भी नवाजा गया था। पर वो कहते हैं कि आप जितना भी अच्छा काम करें अपने आप से आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती जाती हैं। ऐसा ही कुछ मोहन जोशी जी के साथ भी हो रहा था। जैसे जैसे ये अच्छी अच्छी फिल्मों में काम कर रहे थे वैसे ही अपने आप से इनकी उम्मीदें और बढ़ती जा रही थी। और क्योंकि ये ऑन स्क्रीन एक विलन थे पर दिल से तो बहुत ही देसी बॉय, बहुत ही डिवोशनल और बहुत ही ग्राउंडेड इंसान थे, और मैनिफेस्टेशन में ये बहुत ही ज्यादा बिलीव किया करते थे। इतने अच्छे लोगों के साथ, इतने अच्छे स्टार्स के साथ काम करने के बावजूद भी इनके दिल में कुछ इच्छाएं थी, और इन्होंने कुछ ऐसे स्टार्स जिनको ये हमेशा से आइडियलाइज करते थे उनके साथ काम करने के लिए मैनिफेस्ट किया। अब इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई या नहीं ये मैं इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी, फिलहाल आपको बता देती हूँ कि कुछ खूबसूरत से गीत आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। एंजॉय दीज ट्रैक्स एंड आई विल बी राइट बैक।

0: रानी तुझे पता है कल पड़ोस वाले भैया का एक्सीडेंट हो गया।
1: अरे एक्सीडेंट पर कैसे हुआ?
0: बस क्या बताऊं, इस तपती धूप में बाइक लेके दोस्त के घर जा रहे थे, ना साथ में वाटर बॉटल और ऊपर से इतनी गर्मी कि उन्हें चक्कर आ गए और बैलेंस बिगड़ गया।
2: इस गर्मी टू व्हीलर चलाते वक्त अपना खास ध्यान रखिए। पीक हीट आवर्स में अननेसेसरी ट्रेवल अवॉइड करिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए और सेफ राइड करिए, क्योंकि घर पहुंचना जरूरी है।

जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक विलन कैरेक्टर को अपनाया और यहाँ पर उन्हें एज अ विलन बहुत ज्यादा प्यार भी मिला। इसी का एक सबूत है कि 1997 में रिलीज हुई फिल्म मृत्युदंड में इनका एक अलग ही कैरेक्टर था और ये इतने ज्यादा खूंखार लग रहे थे उस रोल में कि माधुरी दीक्षित जब भी इन्हें देखती थी वो डर जाती थी। पर जब इस फिल्म का आया क्लाइमैक्स तब माधुरी जी ने कुछ ऐसा किया कि हमारे विलन साहब ही डर गए। दरअसल पूरी फिल्म में तो वो इनसे डरती रही पर फाइनली जब उन्हें मौका मिला इस विलन को क्लाइमैक्स सीन में डराने का तो वो खुद इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और इस रोल को इतना ज्यादा अंदर उतार चुकी थी कि क्लाइमैक्स में जब वो मोहन जोशी को मारने आई तो मोहन जी खुद ही डर गए और इतना ज्यादा डर गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि ये बताता है कि किरदार चाहे कोई भी हो वो अपना रोल प्ले करते टाइम उसे सिर्फ निभाता नहीं बल्कि उस किरदार को जीता है। ऐसा ही एक किरदार इन्होंने निभाया था 2003 में आई फिल्म गंगा जल में और ये फिल्म दरअसल बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। जब इस फिल्म के डायरेक्टर विलन की तलाश कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो कि विलन तो हो पर लाउड ना हो या फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सैल और डेंजरस दिखाई ना दे, बहुत ही हम्बल सा हो, बिल्कुल लो टोन में बात करे, बेसी वॉइस हो और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। तो उनकी तलाश जाकर खत्म हुई हमारे जोशी साहब पर और उन्हें ये इतने पसंद आ गए कि उन्होंने तुरंत ही इन्हें एज अ विलन फॉर दिस मूवी साइन कर लिया। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो पब्लिक के लिए इट वाज अ सरप्राइज एलिमेंट एंड दे एक्चुअली वेंट क्रेजी। एक अलग ही ट्रेंड मार्केट में बन गया था और इस फिल्म के चार मेन कैरेक्टर्स जिसमें मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, अजय देवगन और जोशी साहब का नाम शामिल है, ये सभी कैरेक्टर्स इतने आउटशाइन हुए इस पर्टिकुलर फिल्म से कि फिल्म के हिट होने के बाद इनके घरों के बाहर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन लग गई और अच्छी खासी बजट की फिल्मों के रोल्स ऑफर हो रहे थे। जहां सब बहुत खुश थे, अजय देवगन फ्लरिश करने लगे थे अपने करियर में, लेकिन वहीं पर जोशी साहब ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल ही हिला दिया। इट वाज 2004 जब इन्होंने बॉलीवुड में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और एक साल पहले इतनी हिट फिल्म के बाद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जोशी साहब इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लेंगे। पर उनके इस डिसीजन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण क्या था बताऊंगी आपको। फिलहाल वक्त है कुछ म्यूजिक का।

जैसे पन्ना को तमन्ना थी कि हीरा उसे मिल जाए, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री को भी ये तमन्ना थी कि उन्हें एक ऐसा विलन मिले जिसकी पर्सनालिटी डिफरेंट हो लेकिन जिसकी आवाज में गहराई हो, ना कि वो आवाज डराने वाली हो। तो उन्हें मोहन जोशी के रूप में ऐसा ही एक विलन मिल चुका था और उन्होंने 2003 में आई फिल्म गंगा जल से इस बात को प्रूव भी किया। तभी तो इस फिल्म के जो मेन कैरेक्टर्स थे उन सभी के पास फिल्म के हिट होने के बाद एक के बाद एक इतनी ज्यादा फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे। सब बहुत खुश थे एक्सेप्ट वन, एंड ही वाज नन अदर देन आर जोशी साहब, जो कि थोड़े से उदास हो गए थे क्योंकि जिस तरीके के कैरेक्टर्स ये इतने सालों से करते आ रहे थे और आगे इन्हें जिस तरीके के रोल्स ऑफर हो रहे थे वो सारे नेगेटिव थे। अब इनका मन भर चुका था इन नेगेटिव कैरेक्टर्स थे, इसीलिए इन्होंने 2004 में पूरे बॉलीवुड को शॉक करते हुए अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। This was a big shock for the whole industry and for the audience as well. तो अब इन्हें ऐसा लगा कि बस मैं इससे ज्यादा नेगेटिव किरदार नहीं कर सकता, इसलिए इन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री की ओर अपना रुख किया और वहां पर भी इनका स्वागत बहुत ही अच्छे से किया गया क्योंकि जिस तरीके के रोल्स ये चाहते थे वैसे ही रोल्स निभाने का मौका इन्हें मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने दिया। वही की एक फिल्म जो कि 2015 में रिलीज हुई थी उसकी मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। फिल्म का नाम था देओल बंद और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रवीण तरडे जी ने। जब वो इस फिल्म में एक कैरेक्टर ढूंढ रहे थे, वो कैरेक्टर था स्वामी समर्थ जी का, तो उन्हें एक ऐसी पर्सनालिटी चाहिए थी जिनकी आंखों में तेज चमक हो लेकिन साथ ही उनकी आवाज में अथॉरिटी हो, डेप्थ हो काफी ज्यादा। तो उन्हें किसी और की नहीं सिर्फ मोहन जी की याद आई और डायरेक्टर साहब ने जोशी साहब को इनवाइट किया कि आप आइए और इस कैरेक्टर को प्ले कीजिए। ये अलग बात है कि इस रोल के लिए भी उन्हें ऑडिशन देना पड़ा था, पर स्टार्टिंग में जोशी जी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। एक इतना अच्छा करियर होते हुए भी ये जो नर्वसनेस थी ये सक्सेस की निशानी थी। दरअसल ये एक स्वामी जी का कैरेक्टर था जो कि अपने एक भक्त के पास आते हैं और उसे जिंदगी का असली मतलब समझाते हैं। और जब जोशी जी इस फिल्म के लिए ऑडिशन देने आए तो उन्होंने जो गेटअप लिया उस गेटअप को देखकर ना सिर्फ प्रवीण जी बल्कि उस वक्त स्टूडियो में मौजूद हर शख्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और उन्होंने नमस्कार करते हुए अपने स्वामी जी को एक्सेप्ट कर लिया। और जोशी साहब के इस रूप को देखकर किसी और ऑडिशन की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। फिल्म बनी, फिल्म बहुत ज्यादा हिट रही, हर रिकॉर्ड इस फिल्म ने तोड़ दिए। लोग चाहते थे कि इसका सीक्वल भी बने पर जोशी जी की हेल्थ कंडीशंस देखते हुए डायरेक्टर प्रवीण जी ने उनसे कहा कि आप जब ठीक हो जाएंगे सीक्वल हम तभी बनाएंगे, लेकिन आपको हम इस सीक्वल में रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या बात है, काम करे इंसान तो ऐसा करे कि उसके बगैर कोई काम हो ही ना पाए। फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का, आप एंजॉय कीजिए ट्रैक्स को, वापस आकर अपने बातों के सिलसिले को जारी रखेंगे।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? नहीं, मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देखकर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।

कोई मिल गया, बिल्कुल जी, हमें आप मिल गए और आपको हम मिल गए और फिल्म इंडस्ट्री को मोहन जोशी जी मिल गए। और इसी के साथ स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। रात बाकी बात बाकी में आज हम मोहन जोशी जी की बातें कर रहे हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एज अ विलन अपनी एक अलग पहचान बनाई। पर जब वो इस पहचान से पक चुके थे, उन्हें लगा कि मेरे अंदर और भी बहुत सारा टैलेंट है जो कि दुनिया के सामने नहीं आ पा रहा, तो उन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया और यहाँ आकर उन्हें कई खूबसूरत फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें से उनके करियर की बेस्ट फिल्म रही देउल बंद। और इसी फिल्म के साथ उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बता दिया कि भाई अभी मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। खैर, ऐसे ही करते करते इन्होंने काफी अच्छा काम किया। जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आए तो इन्होंने मैनिफेस्ट किया कि उस वक्त के सुपरस्टार्स धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जी के साथ कभी काम करूंगा। और ये दोनों ही इतने हम्बल इंसान हैं जिनके साथ इन्होंने काम भी किया। जहां इन्होंने धर्मेंद्र साहब के साथ पूरी 19 फिल्में की, वहीं बिग बी अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करने का इनका पहला एक्सपीरियंस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ रहा। वो भी बहुत ही खूबसूरत सी थी, जो कि इन्हें हुई थी टीनू आनंद डायरेक्टेड फिल्म मेजर साहब में। जब ये उस फिल्म की शूटिंग के दौरान पहली बार अमिताभ बच्चन जी से मिले तो उन्हें देखकर ही ये उनके कायल हो गए और इन्होंने उनके असिस्टेंट से रिक्वेस्ट किया कि मैं भी इस फिल्म में काम कर रहा हूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन बिग बी से करवाइए। और जब बिग बी इनसे मिले तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो अब हम आपके साथ काम करेंगे। अब ये बोलने का अंदाज कुछ अलग था, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इस बात को एक्सेप्ट किया वो कुछ अलग था। इन्हें ऐसा लगा कि बच्चन साहब इनकी इंसल्ट कर रहे हैं, वो शायद इन्हें ठीक से जानते नहीं है कि ये कितना अच्छा काम कर चुके हैं, इसलिए इन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने इन्हें नीचे दिखाया और इसी बात को इन्होंने दिल में रख लिया। पर बाद में जब बिग बी को पता चला तो उन्होंने क्लेरिफिकेशन देते हुए ये बात भी क्लियर की कि मेरा ऐसा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, लोग कहना कुछ चाहते हैं पर हम उसे किसी और ही तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, और क्योंकि हम पॉइंट्स को क्लेरिफाई नहीं करते इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे रिश्तों में भी दरार आ जाती है। फिलहाल वापस चलते हैं हमारे जोशी साहब की और, जिनकी दो और मैनिफेस्टेशंस पूरी हुई थी। ये हमेशा से ही माधुरी दीक्षित और राजेश खन्ना साहब के साथ भी काम करना चाहते थे और इन दोनों के साथ काम करने का मौका भी इन्हें मिला। ना सिर्फ ये चार कलाकार बल्कि इन्होंने गोविंदा, सैफ, अक्षय, अजय देवगन, हर दौर के कलाकार के साथ इन्होंने काम किया, जिसके लिए फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें नेशनल अवार्ड, नाटक अकेडमी अवार्ड, स्क्रीन प्ले अवार्ड, विष्णुदास भव अवार्ड, ऐसे ना जाने कितने अवार्ड से नवाजा गया। अगर बॉलीवुड की बात करूं तो पूरे 250 से ज्यादा फिल्मों में हमने इन्हें देखा। सिर्फ बॉलीवुड ही क्यों, बल्कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी ये 70+ फिल्मों में हमें नजर आए। साथ साथ ये हिंदी और मराठी टीवी सीरियल्स में भी अपनी प्रेजेंस बनाए हुए थे, और क्योंकि ये थिएटर को काफी ज्यादा पसंद करते थे तो अब तक ये पूरे 8,000 से ज्यादा थिएटर प्लेज में भी अपनी प्रेजेंस मार्क करवा चुके हैं। अपने इस करियर से जोशी साहब ने ये साबित कर दिया कि अगर आपकी नीयत सही है और आप हार्ड वर्कर हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेसफुल होने से रोक ही नहीं सकती। और आज इस एपिसोड से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम जोशी साहब को एक बार फिर से याद करें, उनके इतने शानदार करियर के लिए उन्हें सैल्यूट करें। आपको ये शो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और 2 घंटे आप सभी से बात करते करते कहाँ चले जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता, और ऐसे ही हंसते खेलते मेरा आपसे विदा लेने का वक्त आ जाता है। तो चलिए आज भी मुझे दे दीजिए विदा, फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे कहाँ, यही जहाँ मुझे सुनने आते हैं। क्या बात है, कितना बेसुरा गाया मैंने, लेकिन अब जो गाना मैं सुनाऊंगी वो बेसुरा नहीं होगा, वो पूरे सुर में होगा। तो आप एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। तो जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और हाँ, प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। सो टाटा, बाय बाय, सायोनारा।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: कुड़ी मैनू कहती
1: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
2: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
3: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: बजा दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
4: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
4: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
5: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
6: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
2: सुनो सुनो, हेलो,

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं,
3: कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
0: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो। मुंह उठा के आगे बढ़ना था। अब मैं चली तुम बोलते रहो।

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
2: है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ।
1: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहाँ हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
3: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: Walls, पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मेरे सब दिखाई दे रहे हैं।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो। स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: इरादा है
1: शादी
0: का इरादा है
1: शादी ना पापा ना
0: मगर क्यों
1: शादी तो बर्बादी है
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय
0: सुनो तो सुनो तो

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गुमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े गुमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: बात यही है।
1: भाई क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो
0: तौबा तुम्हें एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: दिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे,
1: पर्वत भी हो खड़े दिल मिल के टाल दे।
0: मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े दिल मिल के टाल दे।
1: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
2: है जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम।
1: बाजू

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा है, अच्छा।

0: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

है।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: जाता है, ज्ञान भूल जाता है। भक्ति का पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: समस्त भागवत धर्मन ऊपर निकुंज माधुरी श्री युगल चंद जो विलास करत हैं, जिन यह समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही, जो कहे ते आप ते जाई अंतर परे निसंदेह। अब यहाँ रस के उपासक को, रसोपासक को, साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि सभी से ये चर्चा करनी उचित नहीं है। देवदास जी कह रहे हैं कि जिन यह रस समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही, जो कहे तो आपते जाए। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके हृदय में जो रसानुभूति है वही समाप्त हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अंतर परे निस्संदेह, और समाप्त नहीं होगी तो कह रहे शिथिल तो अवश्य पड़ जाएगी। पूर्व भी आपसे चर्चा हुई इस विषय पर, भजन को छिपाना ही भजन, भजन का गोपन, और अनधिकारी के सामने तो बिल्कुल भी ना कहा जाए। अच्छा, बहुत लोग मैंने ऐसे देखा वो खींच तान कर सबको लगाने का यहां प्रयास करते हैं, पर ऐसा संभव होता नहीं है भाई। जीव का कल्याण केवल केवल केवल ईश्वर के अनुग्रह से होता है। आप और मैं यहां बैठे हैं, ये आपका मेरा प्रयास नहीं है, ये आप पर और मुझ पर प्रभु की कृपा है। ये प्रभु की कृपा के प्रसाद से आप और मैं यहां पर बैठे। ताते मौन होए रहनो बहुत भलो है, सब जगह प्रवचन उपदेश की आवश्यकता नहीं है, है ना। दुर्दास जी कह रहे आवश्यकता से भी कम बोलने वाला वस्तुतः साधक है। डोंगरे जी महाराज तो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है, आवश्यकता पड़ने पर भी आवश्यकता से कम, कहते हैं जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है वो सदा मौन रहता है। समझिए, वो सदा मौन में ही है, वो वाणी का तप कर रहा है। ये वाणी का तप है, आपको खबर भी नहीं है आप अपनी कितनी शक्ति अनर्गल बोल कर गंवाते हैं। तो फिर कहते हैं विजाति सुमिल वो भलो नाही, विजाति माने जो आपके रस के अनुकूल ना हो। अच्छा, एक और बात यहां मैं छोटी सी है पर कहना चाहूंगा, ये अच्छा है या बुरा इस वाद और विवाद में भी मत पड़िए। किसी किसी के लिए ये घोषणा भी मत करिए कि अच्छा है या बुरा, हमारे अनुकूल नहीं है, बस इतना पर्याप्त है। अच्छे और बुरे के प्रपंच में पढ़ना भी ठीक नहीं है, जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा होगा, होगा निश्चित रूप से होगा भाई। ऐसा ही रचा है रचने वाले ने संसार, जो आपके लिए बुरा है ना वो किसी के लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए अच्छा है वो किसी के लिए अरुचिकर होगा। तो मैं कहता हूं अच्छे और बुरे के इस वाद में भी मत पड़िए, दूरम उपाय है, जो आपके अनुकूल ना हो बस मौन होकर वहां से दूर हो जाइए, वो आपके लिए नहीं है, बस वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। और अनुपयोगी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौन रहकर उससे दूरी बना लेना ये बुद्धिमानी है। मौन हो जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। बिन सजाती सुमिल बात ना चलावे, जब तक कोई अपने भाव के अनुकूल हृदय ना मिले तब तक चर्चा ना की जाए, इस रस की तो कदापि ना की जाए। सेवक जी महाराज कहते रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिक हृदय के सन्मुख अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, जैसे जिसकी भावना है। कबीर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। राम झरोखे बैठ के